ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख माह की तिथि 29, तदनुसार 19 मई सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:48 हुए हैं। आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

0: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, प्रस्तुत है चिंतन।
1: सौंदर्य शाश्वत चेतना का स्रोत है, चित्त की इच्छा ही इसका मुख्य हेतु है। सुंदर और असुंदर की धारणा प्राण तत्व के अनुसार होती है। सौंदर्य उच्च कोटि के आनंद और सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। सौंदर्य बोध हमें निस्वार्थ आनंद देता है। अनंत का शांत रूप में प्रकट होना ही सौंदर्य है। भगवान अत्यंत मंगल है, सत्य है, सुंदरता की खान है। सौंदर्य का संबंध आत्मा की उदात्त वृत्ति से है। हमारी सांस्कृतिक चेतना जितनी उदात्त होती है, सौंदर्य चेतना उतनी ही महत्वपूर्ण बन जाती है। सौंदर्य में रोचकता उसका प्राण है। सौंदर्य की तृप्ति से ही जीवन का विकास, हृदय में उदात्त वेदना का संचार, प्राणों में स्फूर्ति का संचार और कल्पना के लिए नवीन प्रकाश का सृजन और शांति का संचार होता है। बुद्धि को नई चेतना मिलती है, कल्पना को सजीवता मिलती है। आनंददायक गुण है सौंदर्य। सौंदर्य से जो रस उत्पन्न होता है वही आनंद है। जब हम किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं तो हमारे हृदय में उसकी अनुभूति होती है, उससे आनंद मिलता है। सत्य से जो आनंद उत्पन्न होता है वो प्रसन्नता और शिवानुभूति का साधन है। सत्य वो है जिसमें हमें विश्वास हो, और विश्वास वही होता है जहां अनुभव का विरोध न हो। सौंदर्य आनंद का ही दूसरा नाम है। जो सुंदर वस्तु है उसका गुण है, उसका धर्म है सौंदर्य। हीरे के गुण की परख के लिए जौहरी की आंख चाहिए, रिझाने वाले रूप के लिए रिझाने वाली आंखें चाहिए। उपनिषदों में सत्य और शिव की सुंदर अभिव्यक्ति है। सौंदर्य मनोज्ञ रहता है, प्राण ही अंगों का रस है। रस को राग कहा गया है, प्रीति और वेग का पर्याय कहा गया है। सृष्टि में चारों ओर दिख रहा है एक चिर सौंदर्य, एक चिरंतन सत्य का आभास हमें चतुर्दिक हो रहा है। सौंदर्य सात्विक, निर्दोष और प्रकाश की तरह है। वेदों में सौंदर्य को स्वास्थ्य कहा गया है। सौंदर्य देखकर सभी की दृष्टि बार बार उधर ही जाती है। यह एक जादू है, जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ती है वो उधर आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। इसीलिए ये सार्वभौम है। पाप और सौंदर्य दोनों का आपसी मेल नहीं होता। सुंदर आकृति से असुंदर कार्य उत्पन्न नहीं होते। तन का सौंदर्य तो देश और काल की सीमा में ही सीमित है, लेकिन जो सद्गुण है उनका सौंदर्य चारों ओर फैलता है। ये फूल की खुशबू की तरह है जो किसी देश की सीमाओं में बंधा नहीं रहता, फैलता है और एक समान पूजनीय होता है। जब हम सौंदर्य की उपासना की बात करते हैं तो हम सद्गुणों के सौंदर्य को देखें, उसे महसूस करें, उसे तलाशें, उसे उभरने का मौका दें। और सद्गुणों का सौंदर्य वहीं रह सकता है जहां प्रकृति से साहचर्य है, जहां ईश्वर की अनुभूति है। आइए इन विचारों को हम फलीभूत होने दें।
0: अभी आप चिंतन सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। कृषि चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है शंकर कुमार चौधरी की वार्ता, फसल में कीट नियंत्रण कैसे करें।
1: लोकन आजुक कृषि चर्चा आब शंकर कुमार चौधरी से सुनल जा। हमरा लोकन फसलक जो मनोनुकूल उपजा चाहै छी तो फसल में कीड़ा मकोड़ा पर नियंत्रण करे पड़त, जाहि लेल हमरा लोकन कतेको प्रकारक उपाय अपनाबै छी। फसल के कीड़ा मकोड़ा से मुक्त रखबाक लेल हमरा लोकन के एकीकृत कीट प्रबंधन के अपनेबाक चाही। अहिमे जैविक, रासायनिक और यांत्रिक पद्धत के संतुलित व्यवहार कह के कीड़ा पर नियंत्रण कैल जात। फसल में कीड़ा पर नियंत्रण करबाक लेल हमरा लोकन कतेको प्रकारक से विधि के अपनाबैत छी। जेना एकटा विधि अछि जैविक और प्राकृतिक विधि। एहि विधि में हमरा लोकन मित्र कीट के बढ़बैत छी, जेना लेडी बर्ड बीटल। ई कीड़ा माहू और अन्य हानिकारी कीड़ा के खा जात अछि, तैं एकरा खेत में रह देबाक चाही। हमरा लोकन के खेत में किछ मित्र पक्षी होइत अछि, जेना मैना, बगरा, एकरा सबके सेहो रह देबाक चाही। नीम के तेल के हमरा लोकन व्यवहार कऽ के सेहो प्राकृतिक रूपे कीड़ा पर नियंत्रण कऽ सकैत छी। 5% नीम के तेल के छिड़काव शुरुआती अवस्था में कयला सँ कतेको प्रकारक रस के चूसय वाला कीड़ा सँ बचाओल जा सकैत अछि। जैविक कीटनाशक दवाई के व्यवहार कऽ के सेहो हमरा लोकनि कीड़ा पर नियंत्रण कऽ सकैत छी, जेना बीवे वरिया बेसियाना या बेसिलस थोरिजिनिसिस। ई मित्र फफूदी अछि और जीवाणु के उपयोग इल्ली आ अन्य कीड़ा के नष्ट करबाक लेल करैत अछि। दोसर विधि सँ हमरा लोकनि कीड़ा पर नियंत्रण करैत छी, ओ अछि यांत्रिक अथवा भौतिक विधि। एहि विधि में हमरा लोकनि लाइट ट्रैप, फेरोमेन ट्रैप आ हाथ सँ चुनि कऽ सेहो कीड़ा के अथवा सोलर लाइट सेहो लगा सकैत छी। ओकर नीचा पानि हमरा लोकनि राखि दैत छी आ पानि के कोनो बर्तन में राखी। एहिसँ हानिकारक कीड़ा प्रकाश पर आकर्षित भऽ कऽ नीचा खसैत अछि आ नष्ट भऽ जाइत अछि। फेरोमेन ट्रैप के व्यवहार कऽ के सेहो हमरा लोकनि कीड़ा पर नियंत्रण कऽ सकैत छी। खेत में फेरोमेन ट्रैप लगेला सँ नर पतंग आकर्षित भऽ कऽ जाल में फंसि जाइत अछि, जाहिसँ ओकर प्रजनन रुकि जाइत अछि आ एहि प्रकारे कीड़ा पर हमरा लोकनि नियंत्रण कऽ पबैत छी। एकर अतिरिक्त खेत के कोला जो छोट रहैत अछि आ कीड़ा जो पत्ती पर देखबा में अबैत अछि, अंडा के गुच्छी और इल्ली के हमरा लोकनि तोड़ि कऽ नष्ट कऽ दैत छी। तऽ ई छल फसल में कीड़ा पर कोना नियंत्रण कयल जाय। एकर अतिरिक्त हमरा लोकनि परंपरागत ढंग सँ सेहो कीड़ा पर नियंत्रण कऽ सकैत छी, जेना फसल चक्र के अपना कऽ। फसल चक्र के अपना कऽ हमरा लोकनि सेहो कीड़ा पर नियंत्रण कऽ सकैत छी। गहीर जोत कऽ कऽ खेत के साफ सुथरा कऽ कऽ सेहो कीड़ा पर नियंत्रण कऽ सकैत छी। एहि सबके अतिरिक्त रासायनिक विधि सँ सेहो कीड़ा पर नियंत्रण कऽ सकैत छी। तऽ एहि सब प्रकारे हमरा लोकनि ध्यान दऽ कऽ जँ कीड़ा पर नियंत्रण करब तऽ अवश्य लाभ होयत। एहिक संग आब आजुक कृषि चर्चा सम्पन्न भेल। नमस्कार।
0: कृषि चर्चा के कार्यक्रम में शंकर कुमार चौधरी की वार्ता, फसल में कीट नियंत्रण कैसे करें, सुन रहे थे। कृषि चर्चा का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6

0: के बजने को हैं। अब कुछ ही क्षणों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर

0: पर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर एजाज आलम की भेंटवार्ता, ब्रेन ट्यूमर लक्षण और इलाज। भेंट करता है संजय कुमार।

0: आज की स्वास्थ्य चर्चा में विषय है ब्रेन ट्यूमर लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एजाज आलम, जो जाने माने न्यूरोसर्जन हैं। डॉक्टर एजाज आलम साहब, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: ये ब्रेन ट्यूमर है क्या?
1: ब्रेन ट्यूमर एबनॉर्मल टिश्यूज का एक कलेक्शन है, जो हमारे नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं शरीर में, उसके बिना जो कुछ एबनॉर्मल कलेक्शन बन के गांठ जैसा बन जाता है, उसी को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, आम भाषा में अगर हम बोले तो।
0: क्या ये शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकने वाली बीमारी है?
1: जी, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। जब ये मस्तिष्क के अंदर होता है तो उसको हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं।
0: इसके क्या कारण है?
1: इसका एग्जैक्ट कारण आज तक किसी को पता नहीं चला है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी, जिसको जेनेटिक भी कह सकते हैं, ऑक्यूपेशनल, जैसे केमिकल या रेडिएशन एक्सपोजर, जीन म्यूटेशन, प्लस जो आपका लाइफस्टाइल है, अगर किसी को तंबाकू का सेवन है या अल्कोहल का सेवन है, ये सब चीज़ें एक रिस्क फैक्टर होती है जिससे ब्रेन ट्यूमर बढ़ जाता है।
0: क्या ब्रेन ट्यूमर जो है वो मस्तिष्क के अलग अलग भाग में जब ये बढ़ाव होता है गांठ का, तो क्या इसके लक्षण अलग अलग होते हैं?
1: जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे ब्रेन का अलग अलग स्ट्रक्चर हमारे अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करता है। कुछ हिस्सा होता है जिससे हम बात करते हैं, कुछ हिस्सा होता है जिससे हमारा याददाश्त कंट्रोल होता है, हाथ पैर का अलग सेंटर है, देखने का अलग सेंटर है। तो जिस भी हिस्सा पे ब्रेन ट्यूमर अटैक करता है वहाँ का सिम्टम आता है, बट कुछ सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि सर में दर्द होना, मिर्गी का दौरा आना, आँख की रोशनी में थोड़ी कमी आना, ये सब एक कॉमन सिम्टम होते हैं जो ब्रेन में ट्यूमर होने का एक संकेत देता है।
0: क्या लकवे वाले लक्षण भी आते हैं?
1: जी बिल्कुल, अगर ट्यूमर ऐसी जगह पे है जहाँ से हाथ पैर का पावर कंट्रोल होता है तो उससे हमारे पैरालिसिस या लकवा भी हो सकता है।
0: क्या बहुत दिनों तक रहने वाला जो सर दर्द है, क्या उसकी जड़ में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है?
1: जी, बहुत सारे सरदर्द की बीमारी जो कई सालों से है, या फिर ऐसा सरदर्द जिसके साथ बहुत तेज दर्द, दर्द के साथ उल्टी, देखने में दिक्कत आता है, ये एक ब्रेन ट्यूमर का संकेत हो सकता है।
0: कौन से वैसे लक्षण हैं जिस पर आदमी को एकदम से सचेत हो जाना चाहिए?
1: मिर्गी का दौरा आना, अचानक से आँख की रोशनी का चला जाना, आवाज में लड़खड़ाहट आना, याददाश्त में कमी होना, या फिर खाने पीने निगलने में दिक्कत आना, ये सब चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं कि आपका जो ब्रेन का नर्व है वो सब इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसमें जल्दी सचेत हो जाना चाहिए।
0: आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर के प्रकार कितने होते हैं?
1: दो प्रकार हम जो नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, एक बिनाइन होते हैं जिसको हम लोग नॉन कैंसरस बोलते हैं, और एक मैलिग्नेंट जिसको आम भाषा में कैंसर भी बोलते हैं। ऐसे तो ब्रेन ट्यूमर बहुत तरह के होते हैं, 100 से ज़्यादा टाइप हैं, लेकिन आम भाषा में जानना ये ज़रूरी होता है कि ये बिना कैंसर वाला है या कैंसर वाला है।
0: बिना कैंसर वाला जो ब्रेन ट्यूमर है वो, और कैंसर वाला जो ब्रेन ट्यूमर है, क्या उनके लक्षण में भी फ़र्क होता है?
1: लक्षण में फ़र्क होता है, जो कैंसर वाला है उसमें जो लक्षण होता है वो बहुत तेज़ी से आते रहते हैं, बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है, और जो बिना कैंसर वाला बिनाइन ट्यूमर जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सालों से सर में दर्द होना, आँख की रोशनी कमजोर होना, तो उसमें जो सिम्टम का ड्यूरेशन होता है वो बहुत धीरे धीरे आता है, काफ़ी लंबा वक्त लेता है।
0: इसकी जांच कैसे की जाती है?
1: इसकी जांच, जैसे कोई मरीज हम लोगों के पास आता है तो उनसे बीमारी के लक्षण पूछने के बाद फिर हम लोग कुछ टेस्ट करते हैं मरीज के ऊपर कि हाथ पैर की ताकत कैसी है, आँख की रोशनी कैसी है, वो सब करने के बाद अगर हम लोग को डाउट होता है कि नहीं दिमाग में ट्यूमर के लक्षण सब आ रहे हैं, तो इमेजिंग मॉडलिटीज पे जाया जाता है, कॉमन आर, MRI, CT स्कैन, इन चीज़ों से पता चल जाता है कि दिमाग में गांठ है या नहीं है।
0: हर गांठ कैंसर नहीं होता है, लेकिन कैंसर हो भी सकता है।
1: जी, बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर ऐसे होते हैं जो कैंसर नहीं होते हैं, और जिसका अच्छे से इलाज किया जाए तो वो परमानेंटली ठीक हो जाते हैं। तो ब्रेन ट्यूमर का जो ये ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये कैंसर हो गया, अब इसका कोई इलाज नहीं है, ये गलत धारणा है।
0: इलाज के क्या तरीके हैं?
1: पहला इलाज होता है वो ऑपरेशन होता है।

0: 20% से ज़्यादा ट्यूमर्स होते हैं जिनको ऑपरेशन करके निकालना होता है। कुछ 1-2% ट्यूमर ऐसे होते हैं जैसे पिट्यूटरी या फंक्शनल ट्यूमर जो दवा से भी काम करते हैं। ऑपरेशन के बाद अगर मैलिग्नेंसी आती है जैसे कैंसर आते हैं तो फिर रेडिएशन दिया जाता है, रेडियोथेरेपी प्लस उसकी कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जिनको कीमोथेरेपी वगैरह कहते हैं।
1: ब्रेन ट्यूमर को लेकर के अगर सर्जरी की सलाह दी जाती है तो आम लोगों में एक भय व्याप्त हो जाता है, आप क्या कहेंगे?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अब आजकल न्यूरो सर्जरी बहुत एडवांस लेवल पर जा चुका है, अच्छी अच्छी मशीनें, माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोप आ चुके हैं, सर्जरी आसान हो गई है, रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और चूंकि इसका इलाज ही ऑपरेशन है, अगर हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो वो ब्रेन ट्यूमर वक्त के साथ बढ़ेगा और फिर वो एक लाइलाज बीमारी हो जाती है।
2: अभी आप डॉक्टर एजाज आलम की भेंटवार्ता ब्रेन ट्यूमर लक्षण और इलाज के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले सुनिए संवेद स्वर में ये देश वंदना।

समवेत स्वर में अभी आप देश वंदना सुन रहे थे। आइए आप सुनते हैं समवेत स्वर में ये गणपति वंदना।

0: अभी आप संवेद स्वर में गणपति वंदना सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं पंडित जसराज सुरेश वाडेकर और हरिहरन के स्वर में ये हनुमान स्तुति।
1: अतुलित बलधाम कृपा निधान श्री राम भक्त हनुमान मूर्तिमान भक्ति और सेवा मूर्ति है। भक्ति और सेवा का भाव उनके नाम में स्पष्ट दिखाई देता है। ह का अर्थ है शिव, आनंद, आकाश आदि। नु का अर्थ है पूजन, प्रशंसा। मां लक्ष्मी का द्योतक है। न बल, युद्ध, वीरता आदि का सूचक है। अहिल्या पुत्री अंजना के पुत्र हैं, इसलिए आंजने

मरुत के अंश हैं, इसलिए मारुति हैं। कपिगोत्र में श्रेष्ठ होने से कपीश हैं। पवन के क्षेत्रज पुत्र होने से पवन सुत हैं। इनके पिता का नाम केसरी था, इसलिए केसरी नंदन कहे जाते हैं। ऐसी विभूति के सामने इस जगत का कोई भी प्राणी श्रद्धा से नतमस्तक हुए बिना नहीं रह सकता।

वे आप हनुमान स्तुति सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं हरिहरन के स्वर में ये राम भजन।

अभी आप हनुमान स्तुति सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं हरिहरन के स्वर में ये राम भजन।

अभी आप हरिहरन के स्वर में ये राम भजन सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं नितिन मुकेश के स्वर में ये वंदना।

आलोक गांगुली के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

पक्षीराज गरुड़ को श्री राम की महिमा सुनाते हुए काक भुशुंडी वो प्रसंग छेड़ देते हैं जब स्वयं उनके अपने मन में संशय उत्पन्न हुआ था। प्रभु की ये बाण अर्थात अभिलक्षण है कि वे अपने भक्त के मन में अभिमान नहीं पनपने देते और यदि ऐसा होता देखते हैं तो वैसा ही उपचार करते हैं जैसे एक माता अपने शिशु की पीड़ा की परवाह न करते हुए उसका घाव चिरवा देती है। काक भुशुंडी को ये सौभाग्य प्राप्त है कि जब जब प्रभु मनुष्य रूप धारण करते हैं तब तब वे अवधपुरी जाते हैं। वहां श्री राम जन्मोत्सव देखते हैं और 5 वर्षों तक वहां निवास करके श्री राम की बाल लीलाएं देखने का आनंद प्राप्त करते हैं।

अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडेकर। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से थोड़ी देर बाद 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। इस सभा में सुबह 10 फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा और सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे बज्जी का कार्यक्रम अंगना। आलेख संकलन और वाचन विजेता सिन्हा का होगा और प्रस्तुतकर्ता होंगे मितेश कुमार मिश्रा। सुबह 11 आप सुनेंगे उप शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय है सुबह 11:30। दिन के 12 पुनः हम आपको फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनवाएंगे। 12:30 दोपहर में आप सुनेंगे पूर्व प्रसारित हमारा कार्यक्रम हेलो जिंदगी। समय याद रखें दिन के 12:30। दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। दोपहर 1:15 पर एक बार फिर से आप फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुन सकेंगे। पुनः फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दोपहर 2:30 पर और बज्जी का लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 3:00।

0: संध्या 5 बजे आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम तरुण कुसुम। इस कार्यक्रम में संध्या 5:40 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। संध्या 6:10 पर विद्यापति गीत आप सुनेंगे और संध्या 6:30 पर हम आपको सुनवाएंगे ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत कार्यक्रम नव ऊर्जा। किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुनते हैं संध्या 7 बजे। संध्या 7:52 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। मैथिली साहित्य की कार्यक्रम सिंगरहार का प्रसारण समय है रात्रि 8:15। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविधा कार्यक्रम का प्रसारण। रात्रि 9:45 पर देववाणी एक फनकार फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम होगा रात्रि 10 बजे। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। 6:55 होने को है। अब समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओस्लो नगरे भारत नॉर्वे व्यापार अनुसंधान शिखर सम्मेलने भागम अगृह्णात्। शिखर सम्मेलने युवराजः हकोन, नॉर्वे देशस्य प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे इत्येतावपि भागम अगृह्णताम्।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और

0: प्रधानमंत्री योनस गहरिस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमेरिका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 231.95 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला। नमस्कार मिथिला के आजुक अंक में हम छे मणिकांत झा।
1: मैं हूँ आप सबके साथ प्रतिभा प्रीति। स्वीकार करें मेरी ओर से भी स्नेह भरा नमस्कार। मणिकांत जी आपको भी नमस्कार।
0: नमस्कार प्रतिभा जी, कार्यक्रमक शुभारंभ हम सब करी छी सुविचार सा।
1: बिल्कुल, नीति श्लोक है, कहते हैं आदितस्य नमस्कारण्ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्ते शाम च जायते। अर्थात जो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु प्रज्ञा बल तथा तेज में वृद्धि होती है।
0: और जहन सुविचार सुन ली छी तकरा बाद उनटबे छी इतिहासक पन्ना। इतिहासक पन्ना में अजुका तिथि अर्थात 19 मई किया विशेष रूप से जानल जाइए, ताहि पर एक नजर घुरा ली छी।
1: आज के दिन यानी 19 मई 1848 में दुनिया का पहला डिपार्टमेंटल स्टोर खुला था। 19 मई 1930 को श्वेत महिलाओं को दक्षिण अफ्रीका में वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। 19 मई 1999 को भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी ने फिजी में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। भारत के छठे राष्ट्रपति, प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनेता नीलम संजीव रेड्डी का जन्म आज ही के दिन अर्थात 19 मई 1913 को हुआ था।
0: तो इछल आजुक इतिहास। इतिहास के बाद हम सब वर्तमान में आवी और वर्तमान युग जे से डिजिटल युग हो गया।
1: बिल्कुल
0: एकदम जे छै से चारू बगल सोशल मीडिया खास कर जे से तकर प्रभाव समाज पर में बहुत गहीर भ के जे छै से पड़ि रहल है। और सोशल मीडिया आई के डेट में राखू तो पत्रकारिता के काज सेहो कर रहल है।
1: बिल्कुल
0: बहुत रास तथ्य ओहि में भ्रामक सेहो भेटै छै, लेकिन तकरा बादो तुरंत अगर कोनो चीज के संज्ञान अहाँ के भेटे है तो ओहिमे सोशल मीडिया के भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भ गेल है।
1: हाँ, पर यह है कि जैसे कि आपने कहा कि बहुत कुछ उस पर भ्रामक भी रहता है, तो हम सभी को सोशल मीडिया हम सभी चलाते हैं, देखते हैं। अब तो कहते हैं कि हर हाथ मोबाइल है, कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली जो दौड़ है वो चल रहा है।
0: हाँ,
1: तो
0: हाँ।
1: दुनिया तो मुट्ठी में है क्योंकि जानकारी हमारे हाथ में मोबाइल में है, लेकिन ये नहीं कि हम सभी उस पे आंख मूंद कर जो अंधविश्वास है वो अंधविश्वास नहीं रखे, आंख मूंद कर विश्वास ना करें, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारा न्यूज ऐसा होता है कि भ्रामक होता है, जो बात कुछ और है और उसमें मिर्च मसाले लगा करके जो परोसने का जो एक कला है बहुत सारे लोग ये करते हैं। तो सोशल मीडिया का हम सभी उपयोग करते हैं तो उसे सकारात्मकता उसमें जो है वो हम सभी देखें, और कोई डेटा वगैरह जो तिथि वगैरह हम सभी जो उपयोग में लाते हैं उससे जानकारी प्राप्त करते हैं, तो ऐसा नहीं कि आंख मूंद कर एक ही साइड से हमें विश्वास कर लेनी है। हम और भी दूसरे साइड पे उसे क्रॉस चेकिंग जिसे कहते हैं तो वो कर लें, और फिर इस तरह से हम जो जानकारी हासिल करते हैं तो फिर सही जानकारी हमें मिल पाती है।
0: कुल मिलाकर कहो का मतलब ये छे जे अपन बुद्धि विवेक अहां के हर दम से उपयोग करहे पड़त। अपन बुद्धि विवेक के अगर उपयोग नहीं करी छी तो सोशल मीडिया के माध्यम से भ सकैए अहां जे छै से गलत संदेश प्राप्त कऽ सकै छी। और जे बात अहाँ कहलिए कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो से कर लो दुनिया मुट्ठी में के बदला दुनिया के मुट्ठी में अहाँ चलि जाएब इहो भ सकै छै। तें अपन बुद्धि विवेक और वेरिफिकेशन जे छै से आवश्यक छै। एकटा ठाम अगर अहाँ कोनो सूचना भेट रहल है तो कोनो जरूरी नहीं छै जे वह सूचना सत्य छै, अहाँ दोसरो ठाम से तेसरो ठाम से ओकर जे छै से सत्यापन कऽ लिय। बहुत रास एहनो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छै जत आई डी छै जत से अहाँ के विश्वस्त जकर मने ऑथेंटिसिटी छै तो ओत से अहाँ ओहि बात के सत्यापित कऽ कऽ तकरा बादे आश्वस्त हो जे ई बात सही छै। आ अहाँ अगर ओकरा शेयर करै छी या एक दोसरा के बीच में रखी

0: छी तऽ कोनो चीज अहूँके विश्वसनीयता परमे ओहि परमे प्रभाव
1: प्रश्न लगाता है बिल्कुल। और हमारी आदत क्या होती है कि हम जो फोटो वीडियो या कोई भी समाचार इस तरह के जो खबर प्राप्त करते हैं तो उसे तुरंत हम सर्कुलेट करते हैं, एक दूसरे तक भेज देते हैं कि हमारे जो अपने हैं खास करके जो हम सभी फ्रेंड लिस्ट बनाए होते हैं सोशल मीडिया के, जो हमारे दोस्त होते हैं मित्र होते हैं, तो उन तक ये जानकारी कैसे पहुँच जाए, तो ऐसा सोच के हम सभी उसे आगे बढ़ाते हैं।
0: हड़बड़ी में वो डेग नहीं उठेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि हड़बड़ी में वो कदम बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वो सही है कि नहीं सत्यापन जब तक हो न जाए, क्योंकि इससे हमारी बदनामी भी होगी और कहीं ना कहीं हम खुद के नज़र में भी ऐसा कभी अफसोस होता है कि हम ये क्या कर बैठे, ये तो था ही नहीं।
0: तो सोशल मीडिया का उपयोग सार्थक काज में करी और निरर्थक काज में नहीं करी। सकारात्मकता के जे चीज छै तै दिस अहाँ सोशल मीडिया के उपयोग करू। बहुत रास अहाँ देखबै जे नकारात्मक उपयोग सेहो एकर भऽ रहल है, जैसे समाज में एकर कुप्रभाव पड़ि रहल है, समाज में छवि खराब भऽ रहल है सोशल मीडिया के, तो से उपयोग नहीं करबाक चाहिए। हाँ ई जरूर छै जे अहाँ के व्यू बढ़ि जायत, अहाँ के ओहि पर में लाइक कमेंट बेसी हुअ लागत, लेकिन चीज एहन परसू क्रिएट करू एहन चीज जे समाज के सही दिशा में लौ जाए, और समाज में विकृति अगर पसारि रहल छी तो वो चीज क्रिएट क के अहाँ नीक नहीं कर रहल छी।
1: और इससे क्या होता है हमारे समाज पर कुप्रभाव पड़ता है, क्योंकि तत्काल देखने में वो वीडियो है, वो फोटो है, वो या फिर वो कुछ लिखा हुआ ऐसा कुछ स्क्रिप्ट है, वो पढ़ने वाले को देखने सुनने वाले को अच्छा लगता है। और देखिए ना, 5 मिनट के लिए हाथ में स्मार्टफोन लेते हैं पर वो घंटों निकल जाता है उनका। और आजकल तो ऐसा देखने को मिलता है समाज में भी, परिवार की ही बात करें यदि, तो लोग उठ के जैसे फ्रेश होके हम सभी चाय की आदत बनाए हुए हैं तो फोन की आदत हो गई है, सब कोई हाथ में फोन लेते हैं और 2 मिनट देख लेते हैं, 5 मिनट देख लेते हैं, ऐसा करते करते आधे घंटे एक
0: बहुत लोग तो घंटा दो घंटा 4 घंटा केना बीत जाए छन से उनका पता नहीं चली छन। और एकर बहुत बेसी देखला के बाद आंख पर में जे छै से एकटा अलग दुष्प्रभाव पड़ी छे, किया तो ओ जे किरण ओहिसँ निकलै छे तैसँ आँखिके जे छै से हानि पहुँचै छै। कोनो चीजके सीमा छै, 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा अगर अहाँ देखै छी तहन अहाँके आँखि ओकरा बर्दाश्त करत, ओकरा क्षमता छै बर्दाश्त करबाक। लेकिन अगर अहाँ 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 8 घंटा मोबाइल परमे लागल रहब, मोबाइल देखैत रहब, तऽ अहाँके आँखि परमे सेहो ओकर प्रभाव पड़त, प्रभाव की दुष्प्रभाव पड़त, और ओहिसँ अहाँके आँखिमे गड़बड़ी हैत, तऽ अति सर्वत्र वर्जयत।
1: जी बिल्कुल,
0: एहि बातके ध्यान हरदम रखबाक चाही।
1: आओर आपके साथ साथ मानसिक जो हमारी जो स्थिति है, क्योंकि वो कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, तो जो हम देखते हैं, जो जैसे कि धार्मिक पुस्तक आप पढ़िए उसमें, और जो एक फिल्म कहानी होता है इस तरह के, जो कोई और भी कहानी होते हैं जो रोचक, तो उसमें इसी तरह से वीडियो जो हम देखते हैं, तो कोई धार्मिक भजन है या धार्मिक कोई भागवत है या फिर कोई ऐसा टॉपिक है, प्रसंग है, वो हम देखते हैं तो उसका प्रभाव उस तरह का पड़ता है, या फिर रील्स वगैरह जो देखते हैं तो बहुत अधिक समय तक वो जो हमारे घर के बच्चे या समाज के लोग या हम सभी देख रहे होते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता ही है।
0: धियापुता तो नकल करब में बहादुर होइ छै, तुरंत कोनो चीज के नकल कर लै छै, जे चीज अहाँ देखबै या बजबै करबै सह बच्चों करै छै। तो अगर अहाँ सोशल मीडिया के उपयोग गलत संदेश के प्राप्त करब में कर रहल छी तो बच्चा सेहो वह चीज सीखत और बच्चों अहाँ के जे से वही दिस प्रवृत्ति
1: गेम वगैरह बच्चे लग जाते हैं, वीडियो गेम खेलने में बहुत तरह का गेम होता है जो बच्चे उसमें एकदम रत हो जाते हैं, लग जाते हैं उसमें, तो उन्हें हम माता पिता जो है वो डांट रहे होते हैं। बहुत बार देखने को मिलता है कि मोबाइल का इसको लत लग गई है, मोबाइल हमेशा ही रखेगा, ये मोबाइल के बिना खाएगा नहीं, मोबाइल के बिना चैन नहीं रहेगा, तो उसके लिए तो हम सभी ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल,
0: लत ओकरा लगबै छी अहाँ ओकरा लगै नहीं छै, तो ई बात पर ध्यान दी। गप सब तो अपना सब करते रहब, लेकिन आओ सुनी सुंदर सनक ई मैथिली सुगम संगीत संवेद स्वर में।

0: मैथिली सुगम संगीत के चर्चा हमरा लोकन केलहुँ हैं और मैथिली सुगम संगीत
1: और देखिए ना सुविचार में हमने कहा कि जो सूर्य नमस्कार करते हैं तो उनकी जो आयु है बल है शक्ति है और तेज वो उसमें वृद्धि आती है। तो सूर्य नमस्कार तो हम सभी जानते हैं कि व्यायाम प्राणायाम का भी एक भाग है, तो वो हमारे यहाँ के लोग पहले से ही बहुत पहले से करते आ रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है यह एक आसन है जो हाँ, तो इसके विषय में हम सभी जानते हैं और इसे बस मानने की और अपनाने की आवश्यकता है। तो ये हर तरह से हमारे लिए फायदेमंद ही है यदि हम इसे अपनाते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो
0: ऐसा पर चर्चा करब, लेकिन हमरा लगे जे गीत अपना सबक जे इसे बजबा के लिए तैयार है, तो आओ सुनी सुंदर सनक ई मैथिली सुगम संगीत।

0: हे भवानी दुख रुमा, समेत स्वर में अभी हम सभी ने सुना ये भगवती गीत। और देखिए ना, हम सभी तो हर दिन जो उठते हैं तो यही कामना करके हुए आगे बढ़ते हैं अपने दैनिक जीवन में कि जो भी हमारी दुख है, क्लेश है, वो माँ भवानी दूर करें। और हमारी ही नहीं, हमारे जो इस पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, कहते हैं ना कि वसुधैव कुटुंबकम, हमारे देशवासी तो यही भावना रखते हैं मन में कि इस धरती पे जितने भी जीव हैं, जंतु हैं, सभी हमारे अपने हैं। तो हम सब की भलाई के लिए जो कामना करते हैं, यही सोच के माँ से हम प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो भी हमारे जीवन की बाधा है, जो
1: प्रतिभाजी होम अब मैं, ये दोनों तो अपने आप में जैसे से साबित करी है, जखने होम सब होम के लिए सोचे छे तो होम मतलब सब गोटा भए छे, हम सब गोटा के लिए जैसे से ई चीज हेबाक चाहिए।
0: और इसी भावना को देखते हुए देखिए ना, हमारे यहाँ एक कोई पर्व त्यौहार भी होता है, हर दिन तो ऐसे कहते हैं कि पर्व त्यौहार मनते ही रहता है लगभग, तो कभी हम सभी वृक्षों की भी पूजा करते हैं, नदियों को हम सभी पवित्र मानते हैं, चांद तारे सूर्य की पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमारे मन में यही भावना है कि ये जो प्रकृति है इसी से हम हैं, और इसीलिए इस प्रकृति का सम्मान करना भी, संरक्षण करना, संवर्धन करना,
1: प्रकृति प्रेम जे छे से अपना सबको तो सनातनी आबि रही है, हमार पूर्वज सेहो करित रहला है, हमहूँ लोकन करी छी, आगू धियापुता करित रहत, ई बात छै, प्रकृति के संग हम हमरा सब चलित रहलूँ है और चलित रहब।
0: और इसका उदाहरण देखने को मिलेगा समय समय पर, अभी कुछ दिन पहले हम सभी वट सावित्री व्रत किए हैं, उसमें वट वृक्ष का पूजन किया गया है, वहीं पे जितनी भी सुहागन महिलाएं हैं वो सब पूजा की हैं, अर्चना की हैं। तो यह दर्शाता है कि हम बस अपने ही आप को नहीं देखते हैं, अपने बस मानव को ही नहीं सर्वोपरि समझते हैं, हमारी नज़र में सब बराबर है, चाहे वृक्ष को ले लें, चाहे नदियों को ले लें, नदियों में गंगा को हम सभी माँ कहते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो सद्भावना है हर किसी के प्रति, वो दर्शाता है कि हमारे मन की भावना, हमारे यहाँ के लोग, हमारे खास करके हमारे भारत देशवासी कैसे हैं, कितने निर्मल और निश्चल स्वभाव के हैं। तो ये सब बातें हैं, तो इन सब चीज़ को हम सभी ध्यान में रखते हुए प्रकृति प्रेम बस कहने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए नहीं, या फिर पढ़ने के लिए नहीं रखें, बिल्कुल इसे व्यवहार में अपनाएं। और इसके लिए सबसे बड़ा काम हम सभी कर सकते हैं वृक्षारोपण करके। तो बातचीत करेंगे आगे और भी, अब जानते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को, जिसे हालचाल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं मणिकांत झा। आइए सुनते हैं मणिकांत झा से हालचाल।
1: नमस्कार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सब विभाग के विकास कार्य के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI के अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करवाक निर्देश दिलन है। सरकारी विभाग

एआई सँ जाँच कराओल करौने बगैर कोनो एस्टिमेट प्राकलन के स्वीकृति प्रदान नहीं करत। मुख्यमंत्री कहलनि जे यदि कोनो विकास कार्य के प्राकलन 1 लाख रुपया होइत अछि आ ओहि मे एआई के मदद लेल जाइत अछि तो ओ 5 सँ 6% तक खर्च में कमी भऽ जाइए। बिहार अग्निशमन सेवा मे सेहो एकर इस्तेमाल करबाक आवश्यकता है, ओकर शुरुआत भेलै। मुख्यमंत्री काल्हि गांधी मैदान में 80 टा नव अत्याधुनिक अग्निशमन वाहन के हरियर झंडा देखा कर रवाना कलन आ एआई आधारित अग्निशमन नियंत्रण कक्ष के रिमोट के माध्यम से उद्घाटन कलन। मुख्यमंत्री कहलन जे अपराधी के हुनका वही भाषा में पुलिस जवाब द रहल है, हम पुलिस के हाथ खोल दलो है, बिहार में हर हाल में सुशासन कायम रखबाक है। ओ आश्वस्त कलन जे बिहार अग्निशमन सेवा से जुड़ल जवान के जे कोनो जरूरत हैत हुनका सरकार पूरा करत। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी अपन बात सेहो रखलनि। मुख्यमंत्री के समक्ष अग्निशमन सेवा के जाबाज कमांडो प्रदर्शन क आ वाटर सेल्टिंग शो के माध्यम से अपन अनुसार

खोलि देलहुँ हेँ बिहारमे हर हालमे सुशासन कायम रखबाक अइ। ओ आश्वस्त कयलनि जे बिहार अग्निशमन सेवासँ जुड़ल जवानके जे कोनो जरूरत हैत हुनका सरकार पूरा करत। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी अपन बात सेहो रखलनि। मुख्यमंत्रीके समक्ष अग्निशमन सेवाके जाबाज कमांडो प्रदर्शन कऽ आ वाटर सेल्टिंग शोके माध्यमसँ अपन अनुशासन साहस शक्ति आ राष्ट्र सेवाके परिचय देलनि। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर पंचायती राज विभाग राजकीय नलकूप में रख रखाव और संचालन के जिम्मेदारी लघु जल संसाधन विभाग के देल गेल। पदाधिकारी सुनिश्चित करता कि नलकूप ठीक ढंग से काज करे जाहिसँ मानसून के अनिश्चितता के स्थिति में सिंचाई में कोनो समस्या नहीं आवे। बिहार में राष्ट्रीय कला विश्वविद्यालय स्थापित करवाक तैयारी सरकार के स्तर पर चल रहा है। संगहि भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर के नाम से संग्रहालय सेहो बनेबाक तैयारी जारी है। कला संस्कृति विभाग दुनू प्रस्ताव के जमीन पर उतारबाक मौन बना लेलक है। 21 मई के श्रावणी मेला के तैयारी के समीक्षा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करता। बैसार में मेला के स्थानीय स्तर पर कैल जा रहा तैयारी व्यवस्था आ आवश्यकता के समीक्षा होयत। सीतामढ़ी में बन रहा सीता मंदिर में माँ सीता से जुड़ल सब स्थल जोड़ल जाएत। राज्य सरकार एकरा लेल विशेष कार्ययोजना बना रहा है। एकरा अंतर्गत नमहर आ प्रमुख शहर से सीतामढ़ी के सीधे सड़क संपर्क हैत। कतौ से सीतामढ़ी आवे में कोनो परेशानी नहीं हैत। एहि योजना के मूर्त रूप देवाक लेल सर्किट के विस्तार कैल जेबाक अइ। 13,186 करोड़ से पुनौराधाम के अयोध्या से जोड़ के राम जानकी मार्ग बन रहा है। सीता सर्किट विस्तार योजना में पुनौराधाम के अयोध्या से जुड़बाक लेल राम जानकी मार्ग के निर्माण प्रगति पर अछि। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा कहलन है कि फार्मर रजिस्ट्री के दोसर मिशन मोड में एखन तक 74,434 किसान के निबंधन भ चुकल है। काल्हि ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित कृषि पर क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेबाक लेल रवाना हुआ से पहिने ओ कहलन जे कृषि आ भूमि आ राजस्व विभाग के अधिकारी समन्वय बनाकर फार्मर रजिस्ट्री अभियान के गति दे रहा है। हालचाल अपने आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहा छी। मौसम पूर्वानुमान में कहल गया जे दरभंगा आ लग पास में आई अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहबाक संभावना है, जहन की न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहत। आसमान में बादल रहत आ हल्लुक वर्षा के सेहो संभावना व्यक्त कयल गेल। दरभंगा नगर निगम के महापौर अंजुम आरा के अध्यक्षता में कल नगर निगम सामान्य बोर्ड के बैसार आहूत भेल। बैसार में कुल 9 एजेंडा पर चर्चा कयल गेल। एहिमे से एक एजेंडा के छोड़ कर सब एजेंडा के सदस्य सर्वसम्मति से पास कर दलन। नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पर पार्षद द्वारा कड़गर बहस कयल गेल। कहल गेल जे कागज पर शहर के सफाई होइत अछि, हकीकत में हर सड़क गली मोहल्ला में गंदगी के अंबार लागल अछि। दरभंगा से रक्सौल जाय वाला गाड़ी संख्या 63, 73, 74 मेमू के परिचालन विस्तार नरकटियागंज तक काल्हि से कऽ देल गेल। जारी सूचना के अनुसार गाड़ी संख्या 63, 73 दरभंगा रक्सौल नरकटियागंज मेमू दरभंगा से अपन निर्धारित समय सायंकाल 6:45 में खुज कर रात के 11:40 रक्सौल पहुँचत। रक्सौल रेलवे स्टेशन से 11:55 खुज कर अदरतिया में रात 12:06 भेलवा से होत ई रक्सौल से नरकटियागंज तक पहुँचत। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में मानवाधिकार और लैंगिक न्याय समकालीन विमर्श आ चुनौती विषय पर काल्हि व्याख्यान के आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम के उद्देश्य छात्रा लोकनिक के मानवाधिकार लैंगिक समानता एवं समकालीन सामाजिक चुनौती के प्रति जागरूक करब छल। ओम्हर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग में इको एंजाइटी आ समाज विषय पर सेमिनार के आयोजन विभाग अध्यक्ष सह संकायाध्यक्ष प्रोफेसर ध्रुव कुमार के अध्यक्षता में कयल गेल। मुख्य वक्ता दर्शन शास्त्र विभाग सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर

0: प्रियंका राय पर्यावरण चिंता आ समाज पर चर्चा कलन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में कायल कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सिंडिकेट के बैसार कुलपति के आवासीय कार्यालय के सभाकक्ष में ऑनलाइन आयोजित कल गल। कुलपति सदस्य लोकन के स्वागत करहित बैसार में मुद्दा के जानकारी दलन। बैसार में सदस्य के संग गहन विमर्श के बाद कैटा महत्वपूर्ण निर्णय लेल गेल। पीजी बॉटनी विभाग में सुटेबल इको क्लाइमेट फॉर सक्सेसफुल कल्टीवेशन ऑफ मैनेज इकोनॉमिक एक्टाविक क्रॉप्स विषय पर व्याख्यान के आयोजन कैल गेल। मुख्य वक्ता मखान अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर इंदुशेखर सिंह उच्च मूल्य वाला जलीय फसल के उत्पादन बढ़ेबा के लेल आवश्यक सटीक पर्यावरणीय जलीय मापदंड के जानकारी दलन। एक संग आजुक हालचाल संपन्न भेल।
1: और यदि मणिकांत जी हम बात करें लोकल अपडेट की, जिसमें कि डीएमसीएच के मेडिसिन ओपीडी में जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी रहेगी तो डॉक्टर वी एन झा पीओसी में डॉक्टर यूके सहनी, डॉक्टर सुरुचि, डॉक्टर शुभम की ड्यूटी रहेगी। वहीं न्यूरो ओपीडी में डॉक्टर स्नेह कुमार झा उपस्थित रहेंगे। तो जानकारी हम सभी ने बहुत तरह के हासिल किए, जो हालचाल के माध्यम से आपने सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बताया। अब जानकारी के साथ हम मनोरंजन आगे बढ़े, मनोरंजन की तरफ। तो सुनवाते हैं एक प्यारा सा फिल्म संगीत अपने श्रोताओं को।

0: कोयल बोली दुनिया डोली, वास्तव में कोयल तऽ बाजि कऽ जे छै से रातिएसँ अधरातिएसँ जे छै से मोनके उद्वेग बढ़बैत रहै छै, आ एखुनका जे स्थिति छै ताहिमे तऽ आओर बेसी जहन मोह तुबैत रहै छै, आम जे छै से डभाइत रहै छै,
1: आम लीची का जो अभी का
0: लगाइत रहै छै,
1: बागीचे में जो कोयल की जो मीठी आवाज है घर तक पहुंचती है और कितना सुंदर सा लगता है, प्यारा सा लगता है, उसमें हम सभी कहीं खो से जाते हैं। जी बिल्कुल,
0: बहुत सुंदर।
1: और खोने की जो बात है तो कोयल की भी मीठी आवाज से अधिक आज के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर खो रहे हैं। समाज पर इसका जो प्रभाव है वो ऐसा देखने को मिलता है कि लगता है कि सभी के पास इसके अलावा और जो अपने काम के अलावे अपने काम जो जिनके पास है वो तो करते ही हैं, और साथ ही जो समय बचता है तो वो सोशल मीडिया पे ही अपना समय बिताते हैं। हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, क्या गतिविधियां हैं, हमारे आस पड़ोस में कोई ऐसे तो बीमार नहीं हो गए हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनके पास ऐसा तो नहीं है कि कोई बीमार है और दवा लाने वाला उनके पास नहीं है।
0: आस पड़ोस तो भेल दूर के गप, घर में की भ रहा ऐसे लोग के नहीं पता चले छे। अगर अहाँ कोनो एक घर में चल जाए और हुनका ड्रॉइंग रूम में बैस जाए तो चार गोटा अगर परिवार के सदस्य छे तो चारू के हाथ में अपन अपन मोबाइल सेट रहे छे, स्मार्टफोन रहे छे, चारू अपना अपना काज में लागल रहे है। वो कोनो काज ऑफिस के नहीं रहै छै, ओ बस सोशल मीडिया के सर्च करे के रहै छै, केओ रील देखैत रहै छथि, केओ जैसे कोनो स्टोरी पढ़ैत रहै छथि, केओ कतौ सिनेमा देखैत रहै छथि, केओ कोनो वीडियो देखैत रहै छथि, तऽ सब अपना अपना में मगन रहै छथि और ककरो एक दूसरा से कोनो मतलब नहीं रह जा रहल है।
1: सोशल मीडिया सुनते ही लगता है कि जानकारियों का पिटारा, और कहीं ना कहीं सही भी है कि घर बैठे हमारे समाज में देश में दुनिया में क्या कुछ हो रहा है उन क्रियाकलापों को हम जान पाते हैं, पर इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू है। एक तरफ सोशल मीडिया जहां लोगों के बीच संचार और जानकारी जो है प्रसार के को आसान बनाता है, वहीं दूसरी तरफ मानसिक स्वास्थ्य, जैसा कि हमने चर्च अभी कुछ देर पहले हम सभी ने चर्च की थी कि मानसिक समस्याएं या फिर जो शारीरिक है जिसमें कि खास करके आँख को अधिक प्रभावित करता है, तो ये सब बहुत अधिक समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। पर जो विज्ञान का जो आविष्कार है इसको यदि हम देखें तो यह जो स्मार्टफोन है, यह स्मार्टफोन एक बहुत जो बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं किया है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले हम जाते हैं हम सभी हमेशा बातचीत करते हैं कि कोरोना काल में हमारे बहुत सारे लोग हम सबके बीच से चले भी गए, पर जो पढ़ाई लिखाई बाधित ना हो, क्योंकि 2-3 वर्षों तक हम सभी को ये झेलना पड़ा, तो घर बैठे ही हमारे बच्चे पढ़ाई कर पाए या फिर बहुत सारे लोग ऑफिस के वर्क कर पाए, उनके कार्यालय का कार्य घर बैठे ही हो रहा था, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि हम घर बैठे बहुत से काम कर पाते हैं। लेकिन बात वही है कि जो इसका नुकसान है उसको हम समझे कि इसमें नुकसान क्या है, सकारात्मकता क्या है, ये चीज समझते ही हाँ, इसका उपयोग करें।
0: सकारात्मकता अगर अगर वहाँ बुझ जेबे जे सकारात्मक चीज के खाली हमरा ग्रहण करवा के तहन फिर कोनो गड़बड़ी नहीं छे, लेकिन होई की छे तो नकारात्मक चीज दिस लोग के ध्यान कने बेसी आकर्षित हुआ लगे छे, और चूंकि जे चीज अश्लील छे ओहो अहाँ के पसरा लगे छे बहुत तेजी से, तो ओकरा पर में कंट्रोल आत्म संयम राखब जे छे से बहुत आवश्यक छे।
1: अगर सकारात्मकता

0: बात करें तो रोजगार और बिजनेस के लिए सोशल मीडिया बहुत ही
1: कारगर है,
0: बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से घरेलू और कुटीर उद्योगों को भी एक नई पहचान और लोकप्रियता मिलती है। बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वीडियो बनाकर लाखों कमा रहे हैं, तो ये गलत नहीं है। पर हमें, आपने पहले ही कहा कि ध्यान ये रखनी होती है कि कहीं भी किसी भी तरह से अशिष्टता अपने व्यवहार में या अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। हमारे किसी भी कंटेंट में वो शब्द का चयन ऐसा होना चाहिए कि जिसे सुनकर लोग पसंद करें, उसे प्रशंसा करें उसकी, ये नहीं कि ये क्या हम बोल दिए या फिर कैसा हमारा अभिनय हो गया। तो ये सब बात ध्यान देने योग्य है।
1: समाज पर जकर दुष्प्रभाव पड़ते से चीज अहाँ के कखनो क्रिएट नहीं करवाक चाहिए, वही के हरदम रोक कर रखवाक चाहिए। और जैसा समाज पर में नीक प्रभाव पड़ते से चीज अगर अहाँ समाज में दऽ रहल छियै, कोनो नव अन्वेषण कऽ कऽ दऽ रहल छियै, कोनो नव प्रयोग कऽ कऽ दऽ रहल छियै, कोनो नव बात अहाँ राखि रहल छियै जाहिसँ समाज के लाभ भऽ रहल यऽ, तऽ ओ हितकारक छै। लेकिन से नहि कऽ कऽ अगर कोनो अहाँ एहन उलूल जुलूल चीज जे छै से परसि रहल छी जाहिसँ लोक तत्कालिक तऽ देख रहल यऽ, अहाँके बढ़ि रहल यऽ, अहाँके व्यू बढ़ि रहल यऽ, लेकिन समाज पर ओकर दुष्प्रभाव पड़ि रहल यऽ,
0: गंदा असर पड़ रहा है। हाँ, तो ये सब चीज हमें ही ध्यान देनी होती है, हमारे समाज के लोगों को ही ध्यान,
1: खासकर नव पीढ़ी पर में जे छै से, चूंकि ओ कांच करची रहै छै, नव पीढ़ी जे छै से कांच करची छै और एकदम सादा कागज छै, ओहि पर में जे लिखा जाइ छै से लिखा जाइ छै, तऽ ओ बात के ध्यान सब गोटा के राखा पड़त। किया तऽ खाली हमर धियापुता सुरिया जेतै तैसे नहि हेतै, समाज के सुरिया पड़तै, पूरा समाज अगर आगा बढ़ै छै तखने अहूँ आगा बढ़ै छी, एकमात्र हाँ एकमात्र अहाँ आगा बढ़ रहल छी, और अहाँ के लग पासक लोग अगर नीचा जा रहल छै तो ओ नहीं भले आगा बढ़ने।
0: हाँ, इस तरह से देखिए ना, घर में हम स्वस्थ हैं और बाकी लोग बीमार हो जाए,
1: हाँ,
0: तो फिर तो मेरा स्वस्थ रहना भी किसी काम का नहीं, क्योंकि सब अस्त व्यस्त हो जाता है। इसी तरह से समाज में हमारे बच्चे अच्छे हो गए इससे नहीं होता है, समाज के सारे बच्चों पर बुरा असर ना पड़े किसी तरह के वीडियो से, किसी तरह के लेख को पढ़ के। इस तरह से देखिए ना, सोशल मीडिया का प्रयोग तो बहुत अधिकतर लोग कर रहे हैं, वो फोन के माध्यम से हो, लैपटॉप के माध्यम से हो, पर इसके द्वारा स्किल सीखने में मदद मिलती है। सकारात्मकता यदि हम देखते हैं तो बहुत कुछ है इसमें, सोशल मीडिया में, जैसे कोडिंग हो, बहुत सारे लोग घर बैठे कोडिंग सीखते हैं, खाना बनाना, जो कुछ नहीं जानती है आज की जो ऐसी भी कोई लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, कि विशिष्टता उनमें नहीं है खाना बनाने के लिए, तो वो भी देखते हैं कि निकाल लेती हैं सोशल मीडिया से उसे, और वो चीज़ कैसे बनेगा। घर बैठे बहुत सारे लोग मिठाइयाँ बनाने लगे हैं, केक बनाने लगे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो उस पर देख के, मोबाइल से हम लोग देख के और सीख लेते हैं।
1: पर्यटन के क्षेत्र में सेहो बहुत रास नव जानकारी जे छै से हमरा अहाँके मोबाइल से भेटैए, जतय जै जगह के नाम हम नहीं सुनने रहै छियै, जतय के महत्व नहीं बुझने रहै छियै, जकर गुणवत्ता नहीं पता रहैए हमरा, ओ सब चीज जे छै से सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त भऽ जाइए और घर बैसल जे छै से ओकर जानकारी हम हासिल कऽ लै छी।
0: और जानकारी ही हासिल नहीं करते हैं, वहां जाने के लिए प्लानिंग भी कर लेते हैं, बुकिंग भी कर लेते हैं, और बड़े आराम से वहां पहुंचते हैं और घूम के वहां की जो वहां की क्या कुछ विशिष्टता है उसका एकदम आनंद उठा के हम सभी वापस लौटते हैं। तो ये सब बहुत ही फायदा है सोशल मीडिया का, जिसमें और खास करके जो हमने कहा कि सिलाई कढ़ाई सीखना, इंग्लिश सीखना, पेंटिंग सीखनी हो, सब कुछ स्मार्टफोन या फिर आपके लैपटॉप में उपलब्ध है, पर जरूरत है कि इसकी सही जो इस्तेमाल है वो करना, फिर यह बहुत ही नुकसानदायक साबित नहीं होता। हम सभी कहते हैं कि फोन में लगे हुए हो, फोन में यदि लगे हुए हो और यदि सकारात्मकता देख रहे हैं हम, तो फिर वो खराब नहीं है। लेकिन इसके लिए भी समय निर्धारण डॉक्टर्स बताते हैं,
1: भटवाक चाहिए। अगर हम फोन में लागल छी तो इसे की प्राप्त केलौं, एकरो जे छै से हिसाब बाड़ी अहाँ के साँस तक कम से कम कॉल लेबाक चाहिए, जे आइ अगर हम दू घंटा फोन देखलौं हैं तो दू घंटा में हमरा फोन से की हासिल भेल आ की गमेलौं, ये दुनू चीज अगर अहाँ देख लेबे, एते कैलकुलेट अगर कह लेब तो तहन बहुत बेसी दिक्कत नहीं छे।
0: और सबसे बड़ी बात है कि दिखावा में पड़ना, बहुत सारे लोग फोन के, स्मार्टफोन के माध्यम से दिखावा में भी पड़ जाते हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं मेरे पास तो ये, और हीन भावना भी आ जाती है कि उनके पास ऐसा है, वो ऐसा कर रहे हैं, या दुनिया इतने आगे तेजी से बढ़ रही है और मैं तो इतने पीछे रह गया हूँ या रह गई हूँ। तो ये सब चीज है कि विचार करने लायक है।

0: करके हम सभी को।
1: तो ओहि सब पर में बहुत बेसी ध्यान नहीं दी और सोशल मीडिया के उपयोग जे छै से मूल मंत्र या राखू जे सकारात्मक सोच के संग ओकर उपयोग करू और ओकर दुरुपयोग नहीं हुए एहि बात के हरदम ध्यान राखी और तकरा बाद जे छै से जे जना बुझात अहाँ के से करब। लेकिन बीच बीच में हमरा तो लगे जे गीत संगीत से हो होइत रहक चाही और गीत संगीत के संग अगर हम सब कोनो गप सप पढ़ैत रहब तो हमरा श्रोता के सेहो निक लगैत रहतन। तो आब बहुत गप सप नहीं कह कर आओ सुंदर सनक एक फिल्म संगीत सुनी फिर चलत चलत जे छै से समसामयिक जे हमर सबक गतिविधि अहू से अपना श्रोता के अवगत करेबन। आओ सुनी सुंदर सनक ई फिल्म संगीत।

0: जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। ऐ गीत के संग हम लोग आगा बढ़े छी और सुनी छी समसामयिक
1: चलते हैं समसामयिकी की तरफ।
0: हाँ।
1: तो 20 नवंबर तक 5,00,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य, बाहर से रह रहे बिहारी लौट रहे हैं। सीएम ने 80 अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड वाहनों को दिखाई हरी झंडी। वहीं सीएम आज सारण के डुमरी बुजुर्ग से करेंगे सहयोग शिविर का शुभारंभ। एक और समसामयिक की, तप रहे राज्य के 24 जिले, गया में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। पीएम मोदी को नार्वे का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को नार्वे के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। यदि बढ़ते हैं खेल की तरफ, तो फिर खेल में ये कि राजस्थान के लिए करो या मरो लखनऊ बिगाड़ सकता है गणित। लिएंडर पेस की माँ ओलंपियन जो जेनिफर पेस का निधन।
0: तो एक संग आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रमक समय संपन्न भ चुकल है। आप मणिकांत के
1: और प्रतिभा प्रीति को दीजिए विदा।
0: नमस्कार मिथिला।

नमस्कार मिथिला, अभी आप हमारा यह कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझू अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
6: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
5: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
7: तुम नाचो रस बरसी,
5: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग, बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराय लगैत अछि, ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, सुबह के 8 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
6: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को रिपोर्ट सौंपी। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी

0: समझौते के अंतर्गत 100 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करने के लिए प्रयास करने चाहिए। प्रधानमंत्री कल ओस्लो में आयोजित भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। क्राउन प्रिंस हकॉन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनिस गहरस्तुर भी इस शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA के लागू होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंडी कस्बे से आते हैं जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का

0: मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
1: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
5: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रोक रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को 1 महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमरीका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं

0: विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सके। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत। सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें। जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था। स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में CBI ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। CBI का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में RGKR मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 billion इन्वेस्टमेंट एंड 1 million जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RGKR Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit.

0: Andaman Islands, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Thunderstorms and lightning are likely today over Bihar, Gangetic, West Bengal, Odisha, Jharkhand, Telangana, Jammu and Kashmir and some parts of Northeast India. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
1: Thank you, Abhishek. Modi, the first Indian Prime Minister to visit Norway in more than four decades, is covered prominently by the dailies. Prime Minister urges peace in Ukraine, West Asia leads the pioneer. While the statesman leads with Prime Minister Modi pushes tech, green ties in Norway. The Indian Express carries the picture of PM Modi receiving Norway's highest honour. The caption under the picture reads, PM Narendra Modi with King Harald V as he is conferred the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit in Oslo on Monday. The Economic Times in its editorial, Bringing It All Back Home, writes that the repatriation of 1,000-year-old Chola copper plates from Leiden University during Narendra Modi's visit to the Netherlands last weekend is a welcome assertion of India's proprietorial sovereignty. Excavated between 1687 and 1700 during the Dutch redevelopment of Nagapattinam, the two sets reveal a legacy of royal succession and maritime diplomacy. The return of Chola plates mirrors that of Piprava, Buddha relic gems and restitution of 657 stolen antiquities from the United States. UPSC to release prelims provisional answers, reports Hindustan Times about the UPSC to release the answer key soon after prelims exams to enhance transparency and uphold the highest standards of, to conduct the examination. Aaron Rye runs over away with PGA Championship, first English-born winner in more than a century, states a pioneer. And finally, India's bullet train dream inches closer to reality. The Financial Express says project is being executed with assistance from the government of Japan. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for $100 billion investment and 1 million jobs under India EFTA agreement at Business and Research Summit in Oslo, Norway. Prime Minister Modi to meet leaders of all five Nordic nations at the third India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Kaur Medical College, Sandeep Ghosh, for financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत ईएफटीए मुआहदे के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजिमतों की बात कही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत पुरएतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से शिकस्त देकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के शहर ओस्लो में भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वलीअहद शहजादा हाकोन और नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म जोनास गहर स्टोर ने भी सरबराह मीटिंग में शिरकत की। कारोबारी और तहकीकी बिरादरी से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तिजारत और इक्तसादी शराकतदारी समझौते के नफाज के बाद दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में इजाफे की सताइश की। उन्होंने इस बात को उजागर

0: जिक्र किया कि दोनों मुल्कों के शराकत दारों को चाहिए कि वो भारत में 10 लाख रोजगार पैदा करने के नतीजे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी के हदफ को हासिल करने की कोशिश करें।
1: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: जनाब मोदी ने मुल्क के पैमाने, बढ़ती हुई तवानाई की जरूरतों, आबोहवा में तब्दीली के तय अज़्म और काबिले तजदीद तवानाई में तेजी से उसत, ग्रिड बुनियादी ढांचे, ग्रीन हाइड्रोजन और साफ तवानाई पर जोर देते हुए भारत के उमंगों से भरे माहौल दोस्त तरीकेकार की जानिब मुंतकली के एजेंडे का भी जिक्र किया।
1: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
0: सरबराह मीटिंग में नॉर्वे और भारतीय कारोबारियों के अलावा तहकीकी बिरादरियों के 250 से ज्यादा शुरका और 50 से ज्यादा कंपनियों के सीईओज ने भी शिरकत की। इससे पहले करीबी ताल्लुकात के तहत खैर सगाली के तौर पर नॉर्वे के इज्जत मआब शाह हेराल्ड वी की तरफ से वजीर आजम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द नॉर्वियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के एजाज से नवाजा गया। वजारत खारजा में मगरबी मुल्कों के उमूर के शोबे के सेक्रेटरी सीबी जॉर्ज ने वजीर आजम के नॉर्वे दौरे पर कहा कि भारत नॉर्वे के भारत बहरुलकाहिल समुद्री पहल में शामिल होने का खैर मकदम करता है क्योंकि दोनों मुल्क बहरी मुल्कों की सरबराही कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ओस्लो में आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे जिसका मकसद टेक्नोलॉजी, काबिले तजदीद तवानाई, दिफा, पायदारी और तजारत जैसे शोबों में शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के साथ भारत की क्लीदी शराकत दारी को मजबूत करना है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुमाली यूरोप के सभी 5 मुल्कों के अपने हम मनसबों के साथ आज भारत और नॉर्डिक के दरमियान तीसरी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस भारत और शुमाली यूरोप के मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई शोभा जाती ताउन में मददगार साबित होगी। साबिका सरबराह कॉन्फ्रेंस सन 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुई थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में जिन शोबों पर तवज्जो दी जाएगी उनमें तकनीक और इख्तिरा, पायदारी, काबिल तजदीद तवानाई और डिजिटाइजेशन शामिल हैं। तिजारत और माशी शराकत दारी समझौते के निफाज के साथ सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात की कोशिश की जाएगी कि तिजारत और सरमायाकारी के रबतों को मजीद बढ़ाया जाए। फिलहाल इस ब्लॉक में भारत की दो तरफा तिजारत 19 अरब डॉलर है। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस खित्ते के साथ कसीर रुखी ताउन में भी मददगार साबित होगी और ये आपसी मफाद के आलमी और इलाकाई उमूर पर ख्यालात का तबादला करने का एक मौका फराहम करेगी। वज़ीर आज़म मोदी तीसरी भारत नॉर्डिक समिट के मौके पर डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के वज़ीर आज़म के साथ भी बाहमी मीटिंगें करेंगे। ओस्लो नॉर्वे से संगीता गोड़बोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: 5 मुल्कों के अपने दौरे के आखिरी मरहले के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी की दावत पर आज 2 रोजा सरकारी दौरे के सिलसिले में इटली के शहर रोम पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी इटली की वजीर आजम मेलोनी के साथ 2 तरफा बातचीत करेंगे। वो इटली के सदर सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। जनाब मोदी कारोबारी सरबराहों के साथ भी गुफ्तगू करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फरोग दिया जा सके। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत को एक मजबूत, पुरेतमाद और बासलाहियत मुल्क में बदलने की अलामत करार दिया है। कल हनोई में गैर मुकीम भारतीयों से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देते हुए कहा कि भारत न्यूक्लियाई हथियारों के पहले इस्तेमाल न करने की अपनी पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। वो किसी भी तरह से न्यूक्लियाई ब्लैक मेलिंग में नहीं आएगा और दुश्मन की किसी भी मुहिमजुई का सख्ती से जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हासिल की गई बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन अलाक्वामी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर

0: जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के अपने हममनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें कीं। ये मीटिंग कल जिनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत, दवासाजी, रेजिलियंट पब्लिक सेहत निज़ाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: लोकसभा स्पीकर की जानिब से हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जाँच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रेसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गाँव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी, माशी और सकाफती नुकसानात की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीजन में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में अवामी खिदमत के मराकज में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाबतगियों और काले धन को जायज़ बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की जांच को रोके रखा। जनाब अधिकारी ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर आर एन रवि मजाज अथॉरिटी के तौर पर एफआईआर, केस रिकॉर्ड और हकाइक की जांच से मुतमईन हैं और इस बात के हक में हैं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज का मुल्क के 18 शहरों में वाटर मेट्रो खिदमात शुरू करने का मंसूबा है जिसमें गुवाहाटी को मरहला एक के तहत नामजद किया गया है। इसके अलावा श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर भी मरहला एक में शामिल हैं, जबकि आसाम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट के मरहला दो में शामिल करने की तजवीज़ है। वजारत ने साथ ही साथ कौमी वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का मसौदा बैन वजारती मशावरत के लिए तकसीम किया है, जिसमें शहरी आबी ट्रांसपोर्ट को हतमी शक्ल देने के कौमी फ्रेमवर्क को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। भारत के रिजर्व बैंक ने कमर्शियल बैंकों की जानिब से

0: सेंटिमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आईएफआर बरकरार रखने की जरूरत खत्म कर दी है। आईएफआर इजाफी बफर होता है जो सरमायाकारी की कदर में गिरावट से तहफ्फुज के लिए कायम किया जाता है। हुकूमत ने ऑनलाइन गर्दिश कर रहे उन दावों को मुस्तरद किया है जिनमें कहा गया था कि हुकूमत मंदिरों में रखे सोने के बदले मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड्स जारी करने जा रही है। हकाइक की जांच करने वाली प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने कहा कि यह दावा फर्जी है। पीआईबी ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो फर्जी दावों से दूर रहें और मुस्तनद मालूमात के लिए हमेशा सरकारी ज़राए का इस्तेमाल करें। भारतीय महकमे मौसमियात ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज शदीद गर्मी के हालात की पेशगोई की है। आज दिन में साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो कतर, सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात के रहनुमाओं की दरख्वास्तों के बाद ईरान के खिलाफ मनसूबाबंद फौजी कार्रवाई करने से रुक गए हैं, जबकि मुतल्लिका फरीकों के दरमियान संजीदा मुजाकरात जारी हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने मुकर्रर 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने 19 ओवर में 5 विकेट खोकर जीत का अपना निशाना हासिल कर लिया। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं जमीर रजवी।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाये होने वाले ज्यादातर उर्दू अखबार ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया जगह दी है। रोजनामा इनकलाब ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नॉर्वे के दौरे के दौरान उन्हें नॉर्वे के आला तरीन एजाज से सरफराज किए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। वजीर आजम ने कहा कि आलमी अदम इस्तेहकाम के माहौल के दरमियान भारत और यूरोप के ताल्लुकात सुनहरे दौर में दाखिल हो रहे हैं। वहीं अखबार ने ईरान पर हमले की तैयारियों के तेज होने से मुतालिक खबर को सफ़े अव्वल की चह सुर्खी बनाया है। अखबार ने लिखा है कि मुजाकिरात में तातुल के बाद गुज़िश्ता 2 दिनों में इस बात के इम्कान बढ़ गए हैं कि अमरीका एक बार फिर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का रास्ता इख्तियार कर सकता है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के वियतनाम दौरे की खबर को अहमियत के साथ शाया किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के ओस्लो में कारोबार और रिसर्च समिट के दौरान भारत EFTA मुआहदे के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर की सरमायाकारी और 10 लाख मुलाजमतों की बात कही है। वजीर आजम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शुमाली यूरोप के सभी 5 ममालिक के रहनुमाओं से आज मुलाकात करेंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत पुरेतमाद और सलाहियतों के हामिल मुल्क में बदलने का गवाह करार दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जाम की जाँच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट पेश की। मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को मालियाती बेजाबतगी केस में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दी है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडी वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: इधर आइए, इधर।
3: इधर?
2: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
4: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
3: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
4: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
3: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222504। हमारा ईमेल एड्रेस है पटना CBS

0: readoff@gmail.com
1: Shubh Vani
0: Lavwani
1: Akashwani
2: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani Phir aaya entertainment ka revolution Jab kone kone pahuncha doordarshan Kahani nahi badli style gaya hai badal जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए आज प्रदेश की सभी पंचायतों में हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की टुमड़ी बुजुर्ग पंचायत से करेंगे शिविर की शुरुआत। प्रदेश में राशन कार्ड धारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों के नाम सूची से काटे जाएंगे। खगड़िया जिले के मांझी थाना क्षेत्र में NH31 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर तथा बक्सर जिले में लू की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की टुमड़ी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम से शिविर का उद्घाटन करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी पटना के नौबतपुर की चिरौड़ा पंचायत में आयोजित शिविर में शामिल होंगे। सभी प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव भी संबंधित जिलों में आयोजित होने वाले शिविर में भाग लेंगे। इन्हें कम से कम 3 प्रखंडों के सहयोग शिविरों में उपस्थित रहने को कहा गया है। इधर हमारी संवाददाता ने बताया कि 7 निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान विजन के तहत इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी सेवाओं और प्रशासनिक तंत्र को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाना है। ये शिविर प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: सहयोग शिविरों में जिलाधिकारी, अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी खुद मौजूद रहकर स्थानीय स्तर पर मामलों का निपटारा करेंगे। इन शिविरों के माध्यम से राशन, पेंशन, आवास, मनरेगा, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि विवाद, दाखिल खारिज, सीमांकन, जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सरकार ने निर्देश दिया है कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से भी इन शिकायतों की सीधी निगरानी की जाएगी। जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। समाचार कक्ष से मैं सविता पारीक।
0: इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सहयोग शिविर के तहत प्राप्त आवेदनों का 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाना अनिवार्य है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित हो जाएंगे।
2: आपको अटकाना और भटकाना नहीं है। 19 तारीख से यह जब शुरुआत होगा, अगले 20 जून को 31वां दिन होगा साथियों, और जो पदाधिकारी 30 दिन में इसको ऑर्डर नहीं करेंगे, अंतरिम ऑर्डर भी नहीं करेंगे, क्योंकि कई चीजें न्यायालय से

0: रहे होंगे, तो 30 दिन में जो भी पदाधिकारी आदेश नहीं जारी करेगा वो 31वां दिन स्वयं निलंबित हो जाएगा।
1: केंद्र सरकार ने प्रदेश में राशन कार्डधारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों का नाम सूची से काटने का निर्णय लिया है। इनमें 21,10,000 से अधिक परिवारों के नाम काट लिए गए हैं, जबकि 14,00,000 से अधिक और संदिग्धों के नाम काटे जाएंगे। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है। सबसे अधिक 2,12,000 परिवारों के नाम पटना जिले में कटेंगे। प्रदेश में बैंकों का साख जमा अनुपात सीडी रेशियो पहली बार 60% से अधिक हो गया है। बिहार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में पहली बार 60.21% का सीडी रेशियो हासिल किया है। विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में पटना में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकिंग समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई। बैठक में सरकारी और निजी बैंकों के स्तर से ऋण वितरण तथा प्राथमिकता क्षेत्रों में वित्तीय प्रवाह की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने तेल कंपनियों को पाइप नेचुरल गैस पीएनजी के लंबित आवेदनों के शीघ्र निपटारे का निर्देश दिया है। वर्तमान में पीएनजी के लिए राज्य में 31,774 आवेदन लंबित हैं। मुख्य सचिव ने अतिरिक्त मानव बल और संवेदकों के माध्यम से इन आवेदनों को मिशन मोड में निपटाने का निर्देश दिया। आपदा प्रबंधन समूह की उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव ने पीएनजी कनेक्शन 44.4, ढेरी का 44 और कैमूर का अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं छपरा का 40.4, नालंदा का 40 और पटना का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में लू चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 19 मई राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, बक्सर एवं रोहतास जिलों में एक दो स्थानों पर उष्ण लहर चलने की संभावना है।
1: खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में NH 31 पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, वहीं हादसे में 6 अन्य घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रक और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर के कारण ये हादसा हुआ। सभी मृतक ऑटो सवार यात्री थे। हादसे के बाद मौके से भागने के क्रम में ट्रक ने सामने से आ रहे 2 अन्य वाहनों को भी टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुर्घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने सभी मृतकों के आश्रितों को 4,4,00,000 रूपये अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश दिया है। इधर रोहतास जिले के धौड़ार थाना क्षेत्र में तिलोथू सासाराम मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हो गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जाती है। पटना स्थित नियोजन भवन में आज पूर्वाह्न 11 बजे से रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। युवा, रोजगार और कौशल विकास विभाग के तत्वावधान में आयोजित मेले में 12वीं पास 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। गया जिले के कोठी थाना क्षेत्र के रानीपुर टेला में बालू माफिया पुलिस पर हमला कर 2 जब्त ट्रैक्टर छुड़ाकर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इन सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कटिहार जिले के बलरामपुर थाना क्षेत्र के फरसरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक महिला समेत 2 तस्करों को मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं कल खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। गुजरात टाइटंस भी अंतिम 4 में पहुंच गई है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहले ही प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सीतामढ़ी के जानकी स्टेडियम में खेले जा रहे श्यामल सिन्हा अंडर 16 एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में गया ने बेगूसराय को 65 रनों से पराजित कर फाइनल में जगह

0: बना ली है। बिहार फुटबॉल एसोसिएशन ने निर्देशों की अवहेलना और संगठनात्मक नियमों के उल्लंघन के आरोप में पश्चिम चंपारण, सीवान, अररिया, गया, बेगूसराय, वैशाली, सहरसा, सुपौल और नालंदा जिला फुटबॉल संघों के सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश को प्रमुखता देते हुए लिखा है, निर्माण कार्यों के प्राक्कलन की एआई से जांच अनिवार्य। दैनिक जागरण ने लिखा है, पटना और सिवान में अपराधियों से मुठभेड़, दोनों के पैर में लगी गोली। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, सम्राट बोले 20 दिन में दो नोटिस, 30 दिन में काम नहीं हुआ तो सस्पेंड। प्रभात खबर ने राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल के हवाले से लिखा है, बिहार में 3 और सैटेलाइट टाउनशिप बनेगी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, सहयोग शिविर आज, पंचायत में सुनी जाएगी फरियाद। आज अखबार लिखता है, अब स्कूलों में रोज होगी बच्चों के बैग की जांच, बच्चे का स्कूल बैग उसके शरीर के वजन से 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निपटारे के लिए आज प्रदेश की सभी पंचायतों में हो रहा है सहयोग शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिले की डुमरी बुजुर्ग पंचायत से करेंगे शिविर की शुरुआत। प्रदेश में राशन कार्ड धारी परिवारों की जांच में संदिग्ध पाए गए 35,15,000 से अधिक परिवारों के नाम सूची से काटे जाएंगे। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में NH 31 पर सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 अन्य घायल। और प्रदेश के विभिन्न भागों में तापमान 40 डिग्री के पार। मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर तथा बक्सर जिले में लू की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: अब उपभोक्ता आयोगों में शिकायतों की ई फाइलिंग करना हुआ और भी आसान।
2: घर बैठे ही ई जागृति पोर्टल www.e-jagriti.gov.in पर कहीं से भी खुद से रजिस्टर कर अपना केस दर्ज कर सकते हैं। 5,00,000 रुपए तक के मामलों पर कोई शुल्क नहीं।
1: ई जागृति पोर्टल उपभोक्ताओं का अपना डिजिटल मंच। शिकायत दर्ज करें और त्वरित समाधान पाएं।
2: जागो ग्राहक जागो। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
4: कहाँ चलती है, इधर तो आओ।
5: इधर आइए, इधर।
6: इधर?
5: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
7: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
6: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
7: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
6: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
7: शुभ वाणी,
6: लाभवाणी,
5: आकाशवाणी।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तक इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घुराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
1: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
0: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारे, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय
2: जिंदगी है तो है समस्याएं भी समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी रविवार दिन में 11 बजे।
3: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण पटना केंद्र से।

0: फला मेरे मुकाबिल नहीं, फला मेरे मुकाबिल नहीं, लेकिन हम समाज को किस हद तक मुतासिर कर पाते हैं और समाज के किस हद तक काम आ पाते हैं, तो ये यहाँ टेबल पर बैठ के नहीं, अशफाक हुसैन भी इंग्लैंड में बैठकर महसूस कर रहा है। और बहुत खूबसूरत उसका एक शेर है जिसको शायद तनकीद की हद दर्जा आखिरी मंजिल कह लीजिए, कि क्यों मेरी जड़ें जाके जमी से नहीं मिलती, क्यों मेरी जड़ें जाके जमी से नहीं मिलती, गमलों की तरह सहन में रखा हुआ क्यों।
1: क्या कहना,
2: क्या क्या क्या इस तरह
0: क्या है हम,
1: क्या
0: सब कुछ है तो दिखावा है। हम समाज के लिए क्या, हम वो तनावर दरख्त हैं जिसमें हमारा समाज परवरिश पा सकता है, अपनी आरजुओं और तमन्नाओं को मुकम्मल होता हुआ देख सकता है। ये ड्राइंग रूम की इल्मियत से हमको बाहर निकलना, ये भी आज आलमी सतह पर शायर महसूस। आपने कुली कुतुब शाह की बात की, तब उनके जमाने का भी एक शेर सुन लीजिए, कि जहां तू वहां हूं मैं, प्यारे मुझसे क्या काम किस्सों, न बुतखाने का मुंज परवा, न मस्जिद का खबर मुंज। अब जाहिर है कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो ये उस अहद की जुबान है, कुली कुतुब शाह के अहद की, लेकिन यहाँ कहने का अंदाज अगर आज के उसलूब की पैराए में आप मुंतकिल करें तो कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। और इससे आगे आपने मीर दर्द की बात की
1: जी।
0: या मीर तकी मीर की गुफ्तगू आप करते हैं तो दर्द कहता है कि अर्जो समा कहां तेरी वसत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहां तू।
1: क्या कहने,
2: क्या बात,
1: क्या क्या कहने।
0: लेकिन एक मसला है शायरी के साथ कि शायरी को एक अच्छा कारी नहीं मिला। आज हमारे यहाँ सहल पसंदी आम हो, जिसकी वजह कर आप ने डॉक्टर साहब कलीम आजी साहब को बहुत करीब से देखा
1: जी जी।
0: और कलीम आजी साहब की वो गजलें या वो तख्लीकात जिनको उन्होंने अपने अहद के सियासी मंजरनामे को सामने रखकर लिखा, उसको हमारे सहल पसंद नाकिदीनों ने क्या समझा कि ये रूमानी चीजें हैं, कि जब वो कहते हैं कि किस नाज किस अंदाज से तुम आए चलो, रोज एक गजल हमसे कहलवाए चलो, हो रखने को कहां पाओ तो रखो, कहां पाओ चलना जो जरा आया तो इतराए चलो हो। अब इस गजल को लोग रूमानी कहते हैं तो क्या कहिएगा, ये सहल पसंदी बहरहाल शायरी का मुकद्दर बन चुका है और इसके तहत जिस तरह से इसकी तफहीम होनी चाहिए उसमें कुछ रुकावटें हैं। अब आगे
1: क्या कहने साहब, बहुत ही खूबसूरत हमारे जो जिक्र था जो शुरुआती सफर में इस मुबासे के, उसे आपने बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ाया और आपने शायरी के हवाले से एक गुफ्तगू तो जरूर छेड़ ही दी है कि दरअसल जो शायरी है और जिसके बारे में आपने भी कहा कि भाई एक तरह से जो पैगंबरी का दर्जा तो है ही उसमें, लेकिन साथ साथ यही कि अगर हम इल्मी सतह पर देखें और सिंफ के किस सतह पर भी अगर हम देखें तो हमारे शायरों ने ही कहा है कि वो कि बंदिशे अल्फाज जड़ने में नगों से कम नहीं और शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। तो दरअसल ये जो मुरस्सा साजी चलती रही है और ये अब दौर हर दौर में बदलती रही है, और एक बड़ा अच्छा सफर रहा है डॉक्टर साहब इस सिलसिले से कि हमारे यहाँ जो जो पूरी की पूरी शेरी रिवायत है जिसको हम आज जरूर हमें याद करना चाहिए, चूंकि ऐसे लग रहा है कि जैसे इसका जिक्र थोड़ा कम कम हो पा रहा है, कि हमारे यहाँ एक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिक्र भी हमारे यहाँ कम कम आता है, लेकिन हम ये अब इस दौर में हम देखते हैं कि वो जो जो क्लासिकी शायरी थी हमारी, इन लोगों ने जैसे आज ये बड़ा मामला उठता है कि ये उर्दू की शायरी है, ये हिंदी की शायरी है और ये जो एक तफरीक आ रही है, तो दरअसल उस जमाने में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि आधुनिक हिंदी काल का बहुत बड़ा नाम है, तो उसने भी शायरी की थी रसा तखल्लुस कर, और रसा उनकी जो उनका जो अपना भारतेंदु समग्र है उसमें रसा तखल्लुस के साथ पूरी की पूरी उनकी समझिए एक मजमुआ उसमें तरतीब
2: दिया हुआ है।
1: तो कहने का मतलब ये शेरी सफर उस जमाने से जबान की सतह पर, खास तौर पर जो उर्दू थी, तो उर्दू के साथ तमाम के लोग जो भी उस जमाने के, चाहे वो फारसी में कह रहे हों, संस्कृत में कह रहे हों, उर्दू में कह रहे हों, तो सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और आपने कहा कि भाई आलमी सतह पर हमने बड़ी तब्दीली की है, सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मामला नहीं है, अगर हमारे बैरून मुल्क में जो शायर बैठा हुआ है, और बैरून मुल्क का ही शायर तो कहता है ना कि वो अश्क बन के मेरी चश्मे तर में रहता है और अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। तो अब जो सहेल और गालिब वहां भी ये जिक्र भी आज बहुत जरूरी है इस मौके पर, कि जिस शेर पर मोमिन के जिस शेर पर गालिब का बड़ा दिल आ گیا اور انہوں نے کہا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو ہماری جو بالکل سہل ممتنہ کی جو ایک روایت تھی, اور ظاہر ہے کہ غالب بھی اس کے غالب, جبکہ وہ کہہ رہا غالب کے دیوان کا پہلا شعر ہے بھائی, کہ نقش فریادی ہے کس کی شوقی تحریر کا, کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا, اور کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ, صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا. وہ شاعر سہل ممتنہ کی شاعری کو

0: इतनी अहमियत दे रहा है कि वो अपना पूरा दीवान देने के लिए वो तैयार हो जाता है। ये एक सफर हम क्योंकि आप अफरोज साहब एक बड़ा काम कर रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं नई जनरेशन में, नई नस्ल में जो शख्स सबसे ज्यादा और सबसे मुतबरियत के साथ काम कर रहा है कि आप एक तो जो हमारे जो पुराने शुराए कराम है या पुरानी हमारी जो अपनी शायरी है वो, और आज की जो ग्लोबल शायरी है इसके साथ आपका बड़ा गहरा रिश्ता, और गहरा रिश्ता मैं इस मानों में जरूर कह रहा हूँ कि आज अभी इस वक्त भी आपसे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो आप कैसे किस तौर पर इस सफर को आप देख रहे हैं?
1: बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें कुछ कहने का मौका दिया
0: जी।
1: डॉक्टर साहब, मैं प्रोफेसर साहब की बात को ही थोड़ा सा और एक्सटेंशन मैं दूंगा, क्योंकि जहां पे आपने बात छोड़ी थी इफेक्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज से हमारे पास कार्य की जो कमी आ गई अचानक, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अभी हम लोग तो देख रहे हैं
0: जी, जी।
1: मुशायरों का एक जो माहौल है वो भी आपके सामने है, और रसायल के जो जो छपने और लिखने का जो सिलसिला है कहीं कुछ मनकता नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा गैप आ गया कि हमारे कारीन जो हैं, सामयीन की कमी नहीं हुई है, कारीन की कमी हुई है। मैं समझता हूं कि हम इसमें जिम्मेदारी हमारे शोरा की ज्यादा बढ़ जाती है कि वो किस तरीके से अपने तख्लीकात को कारी के साथ जोड़े। देखिये, जब जिस वक्त हबीब जालिब आके अपनी नज्म कहते हैं स्टेज के ऊपर, तो एक पूरा मजमा उस शायर के साथ ही फिर वो स्टेज से उठ जाता है, महफिल से आगे की तरफ बढ़ जाता है। क्या वजह है? पटना में ही की ही अगर मैं बात करूं, जहां पे इस वक्त बैठ के हम ये मुज़ाकरा कर रहे हैं, इस पटना में एक बहुत तवील फहरिस्त है यहाँ पे शोरा, लेकिन आपने अभी मोहतरम कलीम आज़ी साहब के अशआर आपको अपील किए वो पढ़े, क्योंकि उन्होंने अपनी जो शायरी की, बेशक हो सकता है कि तनकीद के मयार पे कोई बहुत आला कोई बात ना हुई हो, ये मैं इसको हतमी नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि कोई नकाद ये कह दे कि उनके मिस्रों में वो उस तरीके की शिल्पकारी नहीं है, उस तरीके की बुनावट नहीं है, 20 किस्म के इल्जाम हम उन पर आयद कर दें, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं झूठलाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी शायरी से आवाम को जोड़ लिया था और उनकी शायरी आवाम तक पहुंच गई थी। ये सिलसिला जब तक नहीं हम इम्प्रूव कर पाते हैं, तो जैसे कि ड्राइंग रूम में वाली शायरी की बात कर रहे हैं, रस्टिक रॉट माहौल का यही मामला है कि सुबह उठे नहाए धोए तैयार हो।
0: मैं थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, कलीम आज़ी साहब का जिक्र आया,
1: सॉरी,
0: तो मैं चूंकि इत्तेफाक से मैं उनका तालिब इल्म भी रहा हूँ और उनको पढ़ा भी है, उनके साथ पढ़ने का भी मौका मिला है, तो अब उनके साथ जो एक है कि जो उनके यहाँ सहले मुमतना की शायरी है, जिसके हवाले से कभी कभी थोड़ा सा आमियाना रुख भी अख्तियार किया है नाकदीन सब तमाम लोगों ने, लेकिन उनके यहाँ एक बहुत एक क्लासिकी रिवायत की शायरी, मैं आपको उनका शेर सुनाता हूँ कि हम चले अब कारोबारे आईना खाना चले, हम चले अब कारोबारे आईना खाना चले, हाँ लगे आंखों में सुरमा जुल्फ में शाना चले, और अगर ये चाहो हो छुरी गर्दन पे रोजाना चले, चलियो तब उस रास्ते पे जिस पे दीवाना
1: चले, क्या बात।
0: तो दरअसल ये शायरी होती थी जिस उन्होंने दोनों का इम्तिजाज जो है
1: बिल्कुल जी बिल्कुल। अब तो मैं बस वहीं पे अपने बात को पहुंचाना चाह रहा था कि देखिये, न सिर्फ उर्दू शायरी, प्रोफेसर साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं और आपने भी कोई कम गवाजी नहीं की है इस अदब के बहरे जखार में, सारी दुनिया भर के अदब को आप पढ़ लें, उसमें नेचर और सोसाइटी का मेन रोल है, और सोसाइटी फिर ये इश्क और मुआश के भी आ जाते हैं, पॉलिटिक्स भी आ जाती है, और वो सारी चीजें जो आ जाती हैं। तो शायर जब तक तख्लीककार, नॉट ओनली शायर, वो अफसाना निगार, इंशाइया निगार, नॉवेल निगार, जब तक आप समाज की बातें करेंगे, कारी को ये लगना चाहिए कि ये हमारी बात हो रही है,
0: बेशक बेशक
1: आपकी तख्लीक में कारी कितना इन्वॉल्व हो रहा है, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो हवा में तीर चलाते रहने से हमारा कारी डेवलप नहीं हो सकता है। आज भी मुशायरों में आप देखते हैं कि वहां शेर पढ़ने के बाद उसी शेर पे दाद ज्यादा मिलती है जो बिल्कुल आवाम से कंसर्न शेर होते हैं, जैसे कि पॉलिटिक्स पे आप देख लीजिए, हम लोग बेशक उसको बहुत अच्छा नहीं मानते हैं कि वहां पे ओपन फील्ड में कोई खुल के कोई बात की जाए जिससे बहुत सारे दूसरे भी इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन बहरहाल रठब की ही बात को मैं फिर आगे, क्योंकि असल मसला यही है कि कारी को पैदा करनी हमारी जिम्मेदारी है, और वो तब तक नहीं होगी जब तक कि हम उसके साथ पूरे तरीके से रिलेट नहीं।
0: बहुत बहुत जो आपकी जो गुफ्तगू है, जाहिर है कि वो हामी साहब ने जो जिक्र छेड़ा था दरअसल उस पर हम लोग अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, और मैं एक चीज और सिर्फ जोड़ना यहाँ पर चाहूंगा, चूंकि अभी जाहिर है वर्ल्ड पोएट्री डे है और इसमें हम ख्वातीन शायरात को अगर ना याद करें, उनका जिक्र ना करें, तो मैं समझता हूँ, और जाहिर है कि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और खसूसी तौर पर जाहिर है कि फर्दन सबका जिक्र नहीं किया जा सकता, लेकिन जो रिप्रेजेंट करने वाली जो शायरात हमारे यहाँ हुई,
1: जो नुमाया तौर पर
0: कई शायरात हैं, जिसमें अब एक शायरा है जिसका जिक्र हमको लगता है वो नागुजीर हो जाता है, कि वो अश्क ये वो जो परवीन शाकिर हैं, तो

0: नवीन शाकिर ने पूरे जो शेरी ट्रेंड था, कम से कम जो खवातीन यानी जो नसाई लबो लहजा था, उसको न सिर्फ बदला बल्कि आज मैं समझता हूँ कि ये दौर गुजर चुका है। और आज भी हम जब बहुत घूम के तलाश करते हैं, तलाश करते करते फिर हम वहीं पर आकर के खड़े हो जाते हैं कि हम उनकी शायरी को जब भी याद करते हैं, जब भी सोचते हैं, जब भी, तो हमको ऐसा लगता है कि एक ऐसा मंजरनामा जो हमारे नसाई लबो लहजे का था, जिसे परवीन शाकिर ने बहुत आगे बढ़ाया। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर साहब आपकी चूंकि निगाह रहती है पूरी अपनी शायरी पर, तो इस हवाले से भी आप क्या सोच रहे हैं कि अभी जो नसाई लबो लहजा है वो कहां है, किस तौर पर कहां पहुंचा?
1: देखिए, लहजा नसाई हो या अमृत, मैं इस चीज को मानता हूं कि कोई भी फनकार समाज का ही एक हिस्सा होता है, उसका वजूद में आना भी आम इंसानों की तरह होता है, उसका रहना सहना चलना फिरना तीज त्योहार खाना पीना सब आम लोगों जैसा होता है। लेकिन जो बात मैंने पहले कही थी मैं फिर उसी तरफ लौट रहा हूं कि जो सच्चा फनकार होता है उसका दर्जा खुदा के वजरा का सा होता है, ऐसे में वो जो कुछ कहता है वो कहता नहीं, उससे कहलवाया जाता है। अब फर्क क्या है आम में और खवास यानी फनकार में, कि उसको एक देखने वाली निगाह हमसे अलग होती है और वो समाज से बिल्कुल अलग कभी नहीं होती। सिर्फ हमारी मजबूरी क्या है कि हम सिक्के का एक पहलू को देखते हैं तो लगता है कि हमसे ये अलग बात हो, और या फिर ये कहिए कि कुछ ऐसे ओदबा और शोरा हमारे दरमियान आ गए हैं, वो ये समझते हैं कि अल्फाज को चुन चुन कर लाकर सजा दिया गया तो शायद मेरा कलाम मुकम्मल आला दर्जे का हो जाए। अब जैसे बार बार जिक्र आ रही है कि सहले मुमतना सहले मुमतना, मीर को भी लोगों ने सहले मुमतना का शायर कहा, लेकिन मीर क्या कहता है, कोई सादा ही इसे सादाल कहे, हमें तो लगे
0: क्या बात। आज हम क्या बताएं, जब ये जिक्र छिड़ता है तो जाहिर है कि हमने फर्दन हम ये देख रहे हैं कि बिल्कुल पूरी एक तरह से शेरी रिवायत को हम लोग एक ग्लिम्सेज में यहाँ पर पेश करने की कोशिश की, और चूंकि इशारा वक्त का होता है और यहाँ हमारी बहुत सारी मजबूरियां हो जाती हैं, तो हम परवीन शाकिर के ही शेर के साथ इसका इख्तिताम करना चाहेंगे कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए, और जुगनू को दिन के वक्त पर रखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। इस अहद को बहुत सलाम। और डॉक्टर हामिद अली खान साहब, डॉक्टर अफरोज आलम साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने बहुत ही मखसूस जो हमारा ये मुबासा था इसमें आपने हिस्सा लिया और बड़ी कीमती बातें आपने की, और हम चाहते हैं कि गुफ्तगू बंद ना हो, बात से बात चले। आपका बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू।
3: सामीन आप समाप्त कर रहे थे मुजाकरा, मौजूदा शायरी की अहमियत और फरोग। इस मुजाकरे के जो शुरका थे उनके असमाई गिरामी थे जनाब हामिद अली खान, जनाब डॉक्टर अफरोज आलम, और निजामत थी जनाब डॉक्टर कासिम खुर्शीद की। सामिन अब चलते हैं बज़्म मौसीकी की जानिब, और बज़्म मौसीकी में पेश खिदमत है ये उम्दा सी गज़ल, आवाज़ है ग़ुलाम अली की और कलाम है नासिर काज़मी का।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

ये आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की फिल्म बैजू बावरा में। आइए आप सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म पत्थर के सनम का ये गीत। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये आवाज़ें थी मुकेश और लता मंगेशकर की फिल्म पत्थर के सनम में। आइए आप सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी को फिल्म गीत में।

ये आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की फिल्म अनुराग में। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार थे लक्ष्मी क्षमा करेंगे, संगीतकार थे SD बर्मन। आइए आप सुनते हैं फिल्म संघर्ष में लता मंगेशकर को।

अगला गीत फिल्म आराधना से, आवाज किशोर कुमार की है, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं एसडी बर्मन।

यह आवाज थी किशोर कुमार की फिल्म आराधना में। आइए अब सुनते हैं आरती मुखर्जी की आवाज में फिल्म गीत गाता चल का ये गीत। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

ये आवाज़ थी आरती मुखर्जी की फिल्म गीत गाता चल में। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन। फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अगला कार्यक्रम अंगना कुछ ही पल में।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है बज्जी का कार्यक्रम अंगना। आलेख, संकलन और वाचन विजेता सिन्हा का, और प्रस्तुत करता है मितेश कुमार मिश्रा।

0: अंगना सुने वाला सब श्रोता के हम विजेता सिन्हा प्रणाम करत हती। अपने सबके बजिका के ई साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। युवा शक्ति कोनो भी राष्ट्र के प्रगति और विकास के रीढ़ होइया। अपन असीमित ऊर्जा, नवाचारी सोच आ अदम्य साहस के बल पर युवा सामाजिक बदलाव, आर्थिक समृद्धि आ तकनीकी विकास के सबसे बड़का वाहक होइया। जे युवा होइया उ सब हमेशा हटके सोचैया आ नयका स्टार्टअप्स के जरिए रोजगार सृजन में हमेशा आगे रहैया। तकनीकी प्रगति आ डिजिटल अर्थव्यवस्था में युवा के भागीदारी सबसे अधिक है। इतने नहीं, युवा शक्ति के महत्व सामाजिक परिवर्तन में भी देखल जाइए। इतिहास गवाह है कि समाज में फैलल कुरीति, अन्याय आ असमानता के खिलाफ युवा सबसे सशक्त आवाज उठाबैया आ समाज में बदलाव लाबैया। देश के सुरक्षा, राजनीति आ प्रशासनिक व्यवस्था में युवा के सक्रिय भागीदारी देश के एगो नयका दिशा प्रदान करैया। आज के समय में युवा के आशावादी दृष्टिकोण आ समस्या के सुलझावे के जोश कोनो भी कठिन चुनौती के सामना करे के लेल तैयार रहैया। अपन देश के विकास आ समाज के बेहतर बनावे के लेल युवा शक्ति के सही मार्गदर्शन, शिक्षा आ कौशल विकास के जरूरत है। युवा शक्ति के बारे में एगो आदमी के की कहना है, आओ सुनित हती।
1: हमर देश भारत युवा शक्ति से भरल है। सबसे बड़ा धरोहर युवा है हमर देश में। युवा के सही दिशा निर्देश मिले की नहीं कर सकले है। देश के विकास में, समाज में हर जगह उ कुरीति के दूर कर सकले। युवा के महत्वपूर्ण भूमिका है देश में। अगर युवा शक्ति के सही से उपयोग करल जाए देश में तो समाज के विकास में, देश के विकास में कहीं कोई अड़चन नहीं आ सकले। आज युवा के अपन सबसे बड़ा समस्या है

0: बेरोजगारी, लेकिन ओकरा ला युवा के खुद अपन विकास करे के होते, खुद अपन हुनर बनावे के होते, तब जाकर के युवा अपन रोजगार अपने तलाश सकले है। अपन क्षमता के अनुसार अपना रोजगार में दिमाग लगावे के होते कि हमरा की करे के है, नहीं करे के है। जो जिस तरह के रोजगार में जा सकले ओकरा खुद अपन हिसाब से रोजगार में जैते, तब बेरोजगारी दूर होते, देश के समस्या कम होते। और युवा चाहे तो ये सब चीज अपन क्षमता से कर सके, अपन बेरोजगारी के अपने दूर कर सके है, देश के आगे बढ़ावे ला युवा ही सबसे बड़ा क्षमता है, युवा ही देश के सबसे आगे बढ़ा सकले है। युवा ही एक ऐसा शक्ति है, राष्ट्र शक्ति, जे देश के समाज के कुरीति के दूर कर सकले है।
1: तो हम सब युवा शक्ति के महत्व देत उनका मनोबल के हरदम आगे बढ़ावित रही, जैसे युवा शक्ति के महत्व हमेशा बनल रहे, देश के विकास में अपन योगदान देत रहे। अब कार्यक्रम में आगे बढ़े अपने के सुनवावित हती इंदु बाला शर्मा के गायल ई देवी गीत।

अब बात करत हती गर्मी के दुष्प्रभाव के। तो देखू गर्मी बढ़त जा रहल है, तो ऐसे में अपने सबके स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे के होइत, काहे कि आज के समय में चाहे कोनो मौसम हो अपन काम के पहले प्राथमिकता देवे के पड़ैया। तो बात अगर गर्मी के है तो इस समय में अगर घर से निकले के रहे तो थोड़ा सा सावधान रही, जेना कि अगर धूप बहुत बढ़ल रहे तो ओकरा से बचे के लेल टोपी धूप के चश्मा जैसन चीज के इस्तेमाल करे के चाही। साथ में पानी भी हमेशा रखे के चाही। गर्मी के दिन में जितना पानी पियल जायत उतना अच्छा रहत। अइला कोशिश करी कि ई मौसम में पानी खूब पी। देखू ई बढ़त गर्मी से इंसान तो प्रभावित होवे करैया, लेकिन ऐसे पेड़ पौधा पर भी बुरा प्रभाव पड़ैया। कहे के मतलब है कि अगर वर्षा नहीं होइया तो पेड़ पौधा के पर्याप्त पानी नहीं मिल पवैया। अइ चलते पेड़ पौधा के खास ख्याल रखे पड़ैया, जैसे समय समय पर पानी देवे पड़ैया, जैसे कि पेड़ पौधा लहलाहत रहे। देखू अगर पेड़ पौधा लहलाहैया तो एकर मतलब है कि हमर सबके सोच पर्यावरण सुरक्षा के लिए जागृत है। हमर सबके सोच पर्यावरण के प्रति सकारात्मक है। पर्यावरण के सुरक्षा के लिए आ अपन स्वास्थ्य के लिए ई गर्मी में अपने भी सावधान रही आ एकरा लेल दोसर के भी सावधान करत रही, तभी ई मौसम के आनंद अपने सब उठा सकत हती। अब कार्यक्रम में आगे बढ़त हती आ बात करत हती बात अपन धरोहर में राजस्थान के राजधानी आ भारत के पहला नियोजित शहर जयपुर के, जकरा गुलाबी शहर भी कहल जाइए। जयपुर के स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी के आमेर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा कैल गेल रहे। आमेर के बढ़त आबादी आ पानी के कमी के समस्या से निपटे के लेल एक सुरक्षित आ योजनाबद्ध राजधानी के आवश्यकता के कारण ई शहर के बसायल गेल है। जयपुर शहर के स्थापना के पीछे बहुत तरह के बात रहे, जेना कि कछवाहा राजपूत के पुरनका राजधानी आमेर पहाड़ी के बीच स्थित रहे, जहां जल संकट एगो बड़का समस्या रहे। यहां तक कि आमेर के आबादी भी बढ़े लगल आ विस्तार के लिए जगह भी कम पड़ गेल रहे। इस तरह के बहुत समस्या रहे, जकरा कारण एक कुशल खगोल शास्त्री आ गणितज्ञ होय के नाते महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा व्यापार के बढ़ावा देवे आ एगो विशाल सुरक्षित राजधानी बनावे के निर्णय लेल गेल। तब जाके बंगाल के प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य के मदद से ई शहर के नक्शा तैयार कैल गेल आ जयपुर शहर के स्थापना भेल। जयपुर शहर के गुलाबी शहर भी कहल जाइए, काहे कि 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में महाराजा राम सिंह द्वारा पूरे शहर के गुलाबी रंग से रंगवाल गेल, जकरा कारण इस शहर के पिंक सिटी के पहचान मिलल, जे आतिथ्य के प्रतीक है। तब से इस शहर पिंक सिटी के रूप में प्रसिद्ध है। इस शहर दिल्ली आ आगरा के साथ मिलके भारत के प्रसिद्ध गोल्डन त्रिकोण पर्यटन सर्किट के एगो प्रमुख हिस्सा है। देखू जयपुर में ऐसन बहुत जगह है जे आकर्षण के केंद्र बनल है, जेना कि यहाँ के हवा महल जे 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा निर्मित है। ई 5 मंजिला महल 953 झरोखा के लेल जानल जाइए। यहाँ के आमेर के किला जे जयपुर से अलग 11 किलोमीटर दूर स्थित है, ई किला हिंदू आ मुगल वास्तुकला के एगो बेहतर उदाहरण है। यहाँ के सिटी पैलेस महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित है। ई शाही निवास अपन भव्य आंगन बगीचा आ संग्रहालय के लेल प्रसिद्ध है। एनाहिते यहाँ के जंतर मंतर भी महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा बनायल गेल है। ई खगोलीय वेधशाला जे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है।

0: दुनिया के सबसे बड़का पत्थर के सूर्य घड़ी सहित 19 खगोलीय उपकरण के एगो अनूठा संग्रह है। अपन ऐतिहासिक आ वैज्ञानिक महत्ता के कारण ई 2010 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल भेल रहे। एकर ई विशेषता है कि ई यंत्र बिना कोनो आधुनिक तकनीक के आज भी सूर्य चंद्रमा आ सब ग्रह के स्थिति के सटीक जानकारी देवत रहैया। देखो, सूर्य घड़ी के अलावा यहाँ एगो और यंत्र है जकर नाम है राम यंत्र, जकर उपयोग तारा के ऊंचाई आ पृथ्वी पर अक्षांश व देशांतर के मापे के लेल कैल जायत रहे। ऐसे ही एगो यंत्र है जय प्रकाश यंत्र। एकर विशेषता ई है कि ई आसमान के उल्टा नक्शा प्रस्तुत करत है। एकर उपयोग खगोलीय पिंड आ सितारा के स्थिति ट्रैक करे के लेल होत रहे। आ एगो और यंत्र है मिश्र यंत्र। ई 5 अलग अलग उपकरण के एगो समूह है जकर उपयोग दुनिया भर के अलग अलग शहर के समय के जाने आ साल के सबसे छोट व सबसे लंबा दिन के मापे के लेल कैल जायत रहे। त ई रहे विशेषता राजस्थान के जयपुर शहर के जंतर मंतर के, जे यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। त बात अपन धरोहर में बस इतनी। अब कार्यक्रम में अपने सबके सुनवावे थती चंद्रमोहन पोद्दार के ई काव्य पाठ।
1: माए तू हमरा

दे बाबू सा कही हमरा मारे ने, बेटी जान उजारे ने, माए तू हमरा आबे दे, हम हूँ तो हर गोदी खेलबो, तोड़े दूध सजीवन पैबो, तो हर नया खिलौना बनबो, माँ तो हर मुस्कान बढ़ेबो, हमरो त मुस्काबे दे, माए तू हमरा आबे दे, मामा कह के तोड़ा बुलेबो, उंगली पकड़ के चलना सिखबो, ठेहुनिया दैत घर में घूमबो, चल चल के हम खेल दिखेबो, हमरो त आके खेले दे, माए तू हमरा आबे दे, जूठा बासी भोजन खाके, घर भर के सेवा गुहार के, माथा पर रखबो सब आदेश, मांग न करबो कोनो विशेष, घर के कोना सजाबे दे, माए तू हमरा आबे दे, तो हर सीख से जीवन जी के, दुन्नू कुल के सपना सी के, जी ले बो हम आंसू पी के, घर के ज्योति जलतो घी के, हमरो अरमान जलाबे दे, माए तू हमरा आबे दे, नै ले बो चूड़ी न मेहदी, नै चाही हल्दी न बिंदी, लुप्त न होए बेटी प्रजाति, भ्रूण हत्या है एक कुरीति, दुनिया के समझाबे दे, माए तू हमरा आबे दे। बचपन बच्चा जाए लगल स्कूल, कुछ घंटा लिल दुनिया भूल, बच्चा जाए लगल स्कूल, माए बाप के आँख के तारा, अक्षर ज्ञान से लाए तू जियारा, भविष्य के सपना सजे लगल, स्कूल ड्रेस में दम के लगल, निखरल चेहरा सवरल चूल, बच्चा जाए लगल स्कूल, बहगा फीसा बस्ता के बोझा, रोए बउआ सबके सोझा, तैयो ने माए बाप पसीजे, ठेल ठाल के स्कूल भेजे, धीरे धीरे समझौता कैलक, स्कूल में नयका दोस्त बनैलक, छुट्टी होते मिटैया सूल, बच्चा जाए लगल स्कूल, अब होमवर्क स्कूल से मिले लगल, टास्क पूरा करे ले ट्यूशन धरायल, बच्चा उलझल किताब में।

बचपन हरायल सिलेबस में, खेल कूद कम होए लगल, माए बाप कहे आवा अब्बल, नटखटपन के नादा अब तूल, बच्चा जाए लगल स्कूल, रिजल्ट लाबा स्कूल में बेस्ट, हुड़दंग में टाइम न करा वेस्ट, डॉक्टर इंजीनियर से कम की बनबा, पढ़बा लिखबा ते खूबे कमेबा, बिन पढ़ने बढ़िया घर से रिश्ता नहीं तो, काटा में ही त खिलैया फूल, बच्चा जाए लगल स्कूल, हिये से बच्चा कुमलावे लगैया, ओकर प्रतिभा के विकास रुकैया, बच्चा बूढ़ा होए लगैया, बचपन ने जिम्मेदारी अबैया, बचपन के तन लहरा बेदा, अमृत समय गवा बना, जीवन पतता होइया त्रिशूल, बच्चा जाए लगल स्कूल। गांव के जीवन, हमरा गांव के जीवन याद अबैया, आम बला गाछी आ पोखर के माछी याद अबैया, हमरा गांव के जीवन याद अबैया, चिड़िया के बोली आ बच्चा सबके टोली याद अबैया, हमरा गांव के जीवन याद अबैया। हम खोजैत हती भोर के सिंदूरी सुरूज, गुल्ली डंडा आ टायर गाड़ी के क्रेज, अब त होइत है सुबह से सांझ तक पैसा के कवरेज, हमरा खेत खलिहान याद अबैया, हमरा गांव के जीवन याद अबैया। पहले हर घड़ी शरारत सुझैत रहे, आब त पैसा कमाबे के जुगाड़ है, आब बारिश में भेजनाए आ धूप में खेलनाए बुड़बकई लगैत है, बाबा के दलान याद अबैया, हमरा गांव के जीवन याद अबैया। पैसा हमरा किनलक, बचपन हमर छिनलक, लेलक हमरा सा मासूमियत, देलक हमरा लालची फितरत, संगी साथी के साथ माघ पूस में घूरा के किनारे आग तपनाए याद अबैया, हमरा गांव के जीवन याद अबैया। फेर सा वापिस समय के ले न जा सकैत हती, ओझरायल जिंदगी के सोझरा न सकैत हती, हमरा बचपना बहुत याद अबैया, हमरा गांव के जीवन याद अबैया। बिरहिनी, रंग बिना फागुन बीतल, उमंग बिना सावन बीतल, जारा गर्मी बिरह में बीतल, बिना पिया जवानी बीतल, सैया गेलन कमाबे परदेश, गांव में मन करैया कलेस, पैसा ले गेल हमर सलहेस, बिलायल है खुशी के लेस, बिरह के आग न होइया शीतल, रंग बिना फागुन बीतल, उमंग बिना सावन बीतल, बिरहिनी के मन तक कुहके, काम देव के बान न चूके, भीजल लकड़ी के आग सुलगे, आँख से डबडब लोड बरसे, वियोग सा जिंदगी है तीतल, रंग बिना फागुन बीतल, उमंग बिना सावन बीतल, पतझड़ में सुखल पत्ता झड़ गेल, हरियर नयका पत्ता फड़ गेल, आम लताम के फल फुलायल, हाय हमर साजन नय आयल, सोना सन रूप हमर भैल पीतल, रंग बिना फागुन बीतल, उमंग बिना सावन बीतल। आदर्श पुतोह, बियाह में त लगैया उबटन, घर में बर्तन करैया ढनमन, अपन जन्मल नीक लगैया, अनकर घर के तीत लगैया, बेटी के होई ससुराल में सेवा, पुतोह किया ने पैर दबैया, दामाद करे बेटी के मनुहार, बेटा के कन्या से रहे तकरार, बनल रहे दुन्नू में अनबन, बियाह में त लगैया उबटन। दहेज त समाज के अभिशाप बनलिया, दहेज त समाज के अभिशाप बनलिया, रंग रूप त खूब खोजैया, नाक नक्श आ हाइट नापैया, घर भर लेके संतोष न होइया, ससुराल के बादल बरसे भर जीवन, बियाह में त लगैया उबटन। बहू त चाही एमए बीए, सिलाई कढ़ाई आ चूल्हा फूके, सास ससुर देवर ननद के बिना स्वार्थ सेवा कर दे, काम करे हरदम उ निम्मन, बियाह में त लगैया उबटन। घर खातिर हो जाए बलिदान, परिवार से चाहे न कोनो प्रतिदान, बहु न कहियो पड़े बीमार, कम खाए करे बेसी सत्कार, बनल रहे निर्मल पानी सन, बियाह में त

0: गैया उपटन, जीवन में कहियो न होए उदास, मौन रहे फैलावे घर में प्रकाश, खर्च करे न कहियो घूमे जाए, पर्दा में रहे कभियो हक न जताए, बनबैत रहे हर स्वाद के भोजन, बियाह में त लगैया उपटन, सबके खिला के सूते जाए, सूरज से पहले उठ जाए, न शौख रखे न करे विद्रोह, ऐसन चाही सबके आदर्श पुतोह, बाल गोपाल से भरल रहे आंगन, बियाह में त लगैया उपटन।
1: अखनी अपने सुनित रही चंद्रमोहन पोद्दार के ई काव्य पाठ। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम आगे लिहा, अब शब्द सरिता। शब्द सरिता में बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। बज्जिका के एगो शब्द है हदस, एकर मायने होइया भय या घबराहट। जेना लोग कहत हतन, हमरा भीड़ के देख के हदस हो जाइया, यानी हमरा भीड़ देख के भय हो जाइया या घबराहट हो जाइया। तो हदस के मायने भेल भय या घबराहट। सेराना यानी ठंडा होना। जेना कोनो माई अपन बच्चा के कहत हतन, बउआ खाना खा ले नहीं तो सेरा जतौ, यानी खाना खा ले न तो खाना ठंडा हो जतौ। तो सेराना के मतलब भेल ठंडा होना। ओकरा बाद एगो शब्द है गरान, एकर मायने है गलानी। जेना लोग कहत हतन, हम हुनकर तनको मदद नहीं कर सकली, जेकरा लेल हमरा बहुत गरान होइया, यानी हमरा बहुत गलानी होइया। तो गरान के मायने भेल गलानी। झबही, एकर मायने होइया दूध दुहे वाला बर्तन। जेना गाय या भैंसी के दूध दुहे वाला कहत हतन, झबही दू, हमरा दूध दुहे के है, यानी दूध दुहे वाला बर्तन दू, हमरा दूध दुहे के है। तो झबही के मायने भेल दूध दुहे वाला बर्तन। आ अंत में एगो शब्द आवैया चाक, जेकर मायने है सावधानी या ध्यान देना। जेना लोग कहत हतन, छोट धिया पुता के घर से बाहर ले जात हती तो चाक से ले जाओ, यानी छोट धिया पुता के बाहर ले जात हती तो सावधानी से ले जाओ, ध्यान देत रहू। तो चाक के मायने भेल सावधानी या ध्यान रखना। तो ई रहे बज्जिका के कुछ खास शब्द आ ओकर मायने। अखनी अपने शब्द सरिता सुनित रही। तो एकरा संगे बज्जिका के ई साप्ताहिक कार्यक्रम अंगना अब संपन्न होइया। बज्जिका कार्यक्रम अंगना अपने के कैसन लगैया, अपने अपन विचार के एगो चिट्ठी या हमर ईमेल आईडी के माध्यम से हमरा भेज सकेत हती। हमर पता है बज्जिका कार्यक्रम अंगना द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा। पिन कोड है 8460004 आ ईमेल आईडी है akashwanidarbhanga@gmail.com। तो अब प्रस्तुत करता मितेश कुमार मिश्रा के संग हमरा यानी विजेता सिन्हा के दू अनुमति। तो एक बेर फिर से अपने सबके प्रणाम करे थती।

अग्ना, अभी आप हमारा ये साप्ताहिक बज्जी का कार्यक्रम सुन रहे थे। आलेख संकलन और वाचन विजेता सिन्हा का था और प्रस्तुतकर्ता थे मितेश कुमार मिश्रा। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। आकाशवाणी दरभंगा से पहली सभा के कार्यक्रमों में अब हम आपको सुनवाते हैं उपशास्त्रीय संगीत। आज की कलाकार हैं शोभा गोटू।

उपशास्त्रीय संगीत। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। आज के इस कार्यक्रम में कलाकार थी शोभा गोटू। आप सुन रहे थे इनका गायन। उपशास्त्रीय संगीत के बाद अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
1: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
1: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं, ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
1: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया, परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए मैं। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
1: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि ये कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
1: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा।

0: क्या क्या है?
1: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहाँ साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी
1: और जहाँ हर समय नमी पाई जाती है, और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है।
2: जी एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहाँ वर्षा सालाना औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहाँ साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
2: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है?
2: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं,
1: जी,
2: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है, और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
2: लेकिन श्रोताओं, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षावन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षावन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओ, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
2: जी,
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
2: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है।
1: जी,
2: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
2: जी,
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
2: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो।
2: जी,
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
2: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें।
2: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
3: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था।

0: मैं तो सफेद हूं। बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
0: नहीं, मैं तो पीला हूं।
1: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
0: नहीं, मैं तो लाल हूं।
1: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो हरी हूं।
0: बेचारा जोजो।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
3: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोता और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
4: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा।

0: ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
1: लाता गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
0: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
2: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
3: अरे इस बार भी नहीं लगी। अरे
2: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
2: हा?
4: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
2: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
5: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बड़ी आई रोकने वाली।
0: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
1: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
0: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
1: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
6: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
4: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
6: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
7: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
6: आप तो काम करती है ना?
7: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
6: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
0: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
1: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
0: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी

0: से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: नहीं करने देंगे,
2: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
3: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
3: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरमा, गौरमा,
5: क्या बात है चंपा? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
4: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
5: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
4: गौरमा,
5: हाँ,
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
5: क्या?
4: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
5: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
6: हाँ गौरमा,
7: हाँ गौरमा,
5: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
8: बिल्कुल,
5: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
6: हाँ, हाँ, हाँ,
9: सब तैयार हैं।
6: किसी भी हाल में जंगल कटने
9: नहीं कटने देंगे।
4: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
5: ये है जंगल के उपकार,
10: मिट्टी पानी और बयान,
5: मिट्टी पानी और बयान,
10: जिंदा रहने के आधार।
3: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
5: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
11: आगे बढ़ो।
8: अरे कहां से?
11: दो मिनट की बात में बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
8: पेड़ों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
5: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। आज
4: नहीं लगाने देंगे।
5: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
10: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
11: ठीक है, तो वहां चलो। अरे उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो

0: हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
1: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT उमंग। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। दिन के 12 बजने वाले हैं। अब आनंद लीजिए फिल्म संगीत का। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं कुछ

नए तराने। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फिल्म बनवास का ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं सोनू निगम, सुखविंदर सिंह, विजय प्रकाश, महालक्ष्मी अय्यर, मोहम्मद दानिश और मिथुन। शब्द हैं

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए।
3: इतनी सी बात

वनवास। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे विशाल मिश्रा और पलक मुच्छल को। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अब आप सुनेंगे रविवार 17 मई 2026 को प्रसारित कार्यक्रम हेलो जिंदगी का संपादित अंश।

0: इसमें कोई दो मत नहीं कि ज़िंदगी में मुश्किलों का दौर चलता ही रहता है और हम इन मुश्किलों से उबरने के प्रयास भी करते ही रहते हैं, लेकिन कुछ मुश्किलें ऐसी भी होती हैं जो अमूमन दबे पांव आती हैं और ख़बर होने तक इस कदर अपने पांव फैला लेती है कि ता उम्र हमारी ज़िंदगी को बेहाल और बेदम कर जाती हैं। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी ही बीमारी है जिसे साइलेंट किलर तक कहा जाता है, खामोश मौत देने वाली एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिस पर ध्यान न दिया जाए तो ये हार्ट अटैक और लकवा समेत अन्य कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन जाती है। हाई ब्लड प्रेशर है क्या, क्या हैं इसके लक्षण, क्या हैं इसके खतरे, क्या हैं इसके उपचार की विधियां और क्या हैं वो सावधानियां जिनको अपनाने से हमारी जिंदगी सुरक्षित रह सकती है, कुछ इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से उच्च रक्तचाप लक्षण और सावधानियां यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय और इस अत्यंत जरूरी विषय पर आप श्रोताओं को जागरूक करने उचित जानकारी और परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं जाने माने हृदय रोग एवं जीवन शैली रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता। डॉक्टर ए के गुप्ता साहब आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में स्वागत है आपका, नमस्कार, कैसे हैं सर?
1: काफ़ी बढ़िया, काफ़ी ठीक हूँ मैं। सबसे पहले मैं सभी अपने सुनने वालों को हमारी ओर से नमस्कार। तो अभी आपने अपना जिक्र किया हाई अपने बीपी के बारे में, तो मैं सबसे पहले बताऊं कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी की समस्या क्या है। समस्या ये है कि हमारे देश में लगभग 19 से 20 करोड़ लोग हाई बीपी से के शिकार हैं। उसकी सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि मुश्किल से 10% लोगों को, उसमें से 20 करोड़ लोगों में से, उनको मालूम है कि हमें बीपी है। ज़्यादातर लोग इस समस्या के प्रति अनजान है, इसलिए अनजान है कि कभी उन्होंने इसकी जांच नहीं करवाई, नाप नहीं कराई। अक्सर लोगों में भ्रांति है कि जब कोई तकलीफ होगी, माथे में चक्कर आएगा, माथे में भारीपन होगा, तब हम उसकी जाँच कराएंगे। तो उसमें और दूसरी समस्या है कि जिस 10% लोगों को मालूम है कि उनको बीपी की

0: समस्या है, दवाई भी खाते हैं, लेकिन उसमें से 10% लोगों का बीपी कंट्रोल में रहता है, नियंत्रण में 90% लोगों का बीपी नियंत्रण में नहीं रहता है। दूसरी चीज़ जो अपने जानने योग्य है, लोग जानना चाहते हैं कि मैंने किसको बीपी हाई कहते हैं। पहले लोग 140/90 कहते थे, लेकिन मैं शॉर्ट में अमेरिकन हाइपरटेंशन सोसाइटी के अनुसार जिस आंकड़े को सारी दुनिया मानती है वो है कि अगर आपका बीपी 130 ऊपर में और नीचे में 80 से ज़्यादा है तो आपको हाई बीपी है, आपको उसका डॉक्टर से मिलकर उपचार करना चाहिए। अगर आपका बीपी 120 और 129 के बीच में ऊपर में और नीचे में 80 है तो आप हाइपरटेंसिव है, जिसको आजकल एलिवेटेड हाई बीपी कहते हैं, और अगर 120/80 है तो इसका मतलब आप सामान्य बीपी हैं, आपको कोई अंग्रेजी दवा खाने की आवश्यकता नहीं है।
1: दवाओं के लिए क्या ज़रूरत होती है, मतलब कब समझें कि हमें दवाओं की ज़रूरत है? लक्षणों को लेकर के भी पूरी चर्चा करेंगे आज इस कार्यक्रम में।
0: लक्षण हो या नहीं हो, ज़्यादातर लोगों को कोई लक्षण नहीं होता है। अब इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठता है कि कब जाँच कराएं हम बीपी, वो लोगों को जानना मैं समझता हूँ आज का काफ़ी बड़ा उद्देश्य है। कि जिनकी उम्र 18 साल है और जिनके परिवार में जिनके माता पिता भाई बहन को किन्हीं को बीपी की शिकायत है तो उनको 18 साल की उम्र से केयरफुल होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, साल में एक बार अपना बीपी की जांच कराएं, कोई भी दिन को निश्चित कर लें, अपना बर्थडे या मैरिज डे पर बीपी देखवाएं कि 130/80 से नीचे उनका बीपी है कि नहीं। अगर उससे अधिक होता है तो अपने डॉक्टर से मिलकर उसका इंतज़ाम बात करें। इंतज़ाम का मतलब ये नहीं होता है कि डे वन से आप कोई अंग्रेजी दवा स्टार्ट कर दें। अगर 134/84 किसी का बीपी है तो हम लोग कहते हैं कि अभी आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, आप लाइफ स्टाइल में सकारात्मक परिवर्तन करें। जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट को कंट्रोल करें, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करें, भोजन में अगर आप बहुत घी तेल सॉल्ट खाते हैं उसको कंट्रोल करें, स्मोकिंग अगर करते हैं तंबाकू लेते हैं तो उसको कंट्रोल करें, कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कंट्रोल करें, और सबसे बड़ी चीज़ सक्रिय जीवन शैली को अपनाएं। सारा दिन कुर्सी पर बैठ के मोबाइल भर दिन देखते रहने से सक्रिय जीवन शैली को निष्क्रिय इस मोबाइल ने बना दिया। हर एक घंटे के बाद 5-10 मिनट सक्रिय रहना बहुत ज़रूरी है बीपी को कंट्रोल करने के लिए।
1: तो मोटा मोटी डॉक्टर साहब आपने बीपी के बारे में जो गूढ़ बातें थी वो आपने रख दी कार्यक्रम में, और हमारे श्रोता भी अब जुड़ने लगे हैं। हमारे आज के पहले श्रोता जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
2: नमस्कार सर।
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं और जिज्ञासा व्यक्त करें।
2: मैं मोहन पासवान बोल रहा हूँ, गांव बसतपुर से सर।
1: क्या जिज्ञासा है, क्या कोई समस्या है या किसी तरह की कोई जानकारी आप चाहते हैं मोहन पासवान जी?
2: उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप दोनों स्थिति जानलेवा और अंग को अपाइज करने वाला है सर। दोनों स्थिति का लक्षण और सावधानियां जानना चाहता हूँ सर।
1: अच्छा,
2: बता दें। दूसरा है सर कि कोई भी व्यक्ति खुद और अपने परिवार को उच्च या निम्न रक्तचाप से बचना और बचाना चाहते हैं तो और भी कई प्रश्न है सर, ज्यादा नहीं रखना चाहते।
0: ये मैं आपको बताऊं कि सामान्य व्यक्ति, आप कोई भी व्यक्ति ये जानने की कोशिश करे कि मेरा बीपी कितना है, जब वो डॉक्टर के पास जाएंगे। अगर पहले से उनको बीपी नहीं है तो 18 साल की उम्र में अगर उनके फैमिली में किसी को बीपी है तो जांच अवश्य कराएं साल में एक बार, और अगर उनकी उम्र 30 ईयर्स है, 30 साल है
1: जी
0: तो लक्षण नहीं भी कोई हो तो रूटीन चेकअप में कम से कम साल में एक बार या दो बार अपना बीपी दिखलवाएं कि 130/80 से ऊपर उनका बीपी जा रहा है। 120/80 है तो ठीक है, 130/80 या उससे ऊपर है तो उनको हाई बीपी है। उसके बाद आपको डॉक्टर बतलाएंगे कि आपको दवा खाने की दरकार है या लाइफ स्टाइल में कोई आपकी कमी है तो उसके बारे में बताएंगे, जैसे वेट को घटाना, खाने पीने में नियंत्रण करना, सिगरेट नहीं पीना और सक्रिय जिंदगी बिताना। कभी कभी जिनको हाई अपना बीपी होता है उनको भी निम्न रक्तचाप हो जाता है, तो ये उस समय लगेगा पता है जब

0: कि रेगुलर उनका बीपी चेकअप हो। अगर कोई बीपी का पेशेंट या कोई ऐसा पेशेंट जिसको चक्कर आता हो या बहुत कमजोरी होता हो या वो होश में नहीं हो, जैसे हार्ट अटैक के बाद किसी के हाथ पांव ठंडे हो गए, अगर उसकी बीपी की जांच आपने की जाए तो कभी कभी बीपी रिकॉर्ड ही नहीं होता, जिसको शॉक बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: बीपी अपना 0/0 आता है, ये बहुत खतरनाक स्थिति है, जान खतरे में है। और बीपी 90/70 से कम हो जाए उसको हम लोग हाइपोटेंशन कहते हैं, कम बीपी। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी है कि हर 90/70 बीपी खतरनाक नहीं होता है। अगर उस समय पेशेंट को कोई तकलीफ है, चक्कर की, कमजोरी की, या होश में नहीं है, तब तो वो खतरे वाली बात है। जैसे किसी को डायरिया वॉमिटिंग होने के बाद भी बीपी काफ़ी हो जाता है कम, धूप में जाने के बाद अगर सॉल्ट का पानी का बहुत नुकसान हो जाते हैं, बीपी कम हो जाता है। हार्ट अटैक होने के बाद बीपी अपना कम होता है, लेकिन उसका इलाज करना है कि नहीं करना है, ये डॉक्टरों की बुद्धि विवेक पर है। अगर वो समझते हैं कि खतरनाक है तो उसका इलाज करते हैं। ज़्यादातर महिलाओं में ये शिकायत होती है कि हमारी बीपी कम है, लेकिन उनमें कुछ भी तकलीफ होना चाहिए, वो लोग 100/70 भी आए तो हल्ला करना शुरू कर देते हैं, बीपी कम है। तो कभी कभी हमने देखा है अपने प्रैक्टिस में कुछ मरीज को जिनका 80/60 बीपी है, लेकिन मरीज को कोई तकलीफ नहीं है, तो मैं कहता हूँ इसके बारे में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मंथ में एक बार बीपी का अपना चेक कराएंगे, और कभी कोई तकलीफ हो तो हमारे पास आएंगे, उसका उपाय करेंगे।
1: एक श्रोता बने हुए हैं ऑनलाइन पर। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। जी प्रणाम, अपना नाम बताएं।
2: मैं दरभंगा से बोल रही हूँ, सुनीता देवी। सर, हमारे कहने का मतलब है जिसको अगर बीपी हो जाता है उसको क्या हाथ का भी शिकायत होने का डर रहता है?
0: नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, सवाल पूछा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। कि यही कारण है कि बीपी का इलाज करना चाहिए। अगर आपको आज बीपी है, कोई भी तकलीफ भी नहीं है, तो भी डॉक्टरों से मिलके उसका उपचार करें, लाइफस्टाइल या दवा लेकर के, क्यों कि भविष्य में आपको हार्ट अटैक, लकवा, किडनी की बीमारी, भूलने की बीमारी होने की संभावना है। अगर आप दवा लेके परहेज से जीवन शैली में परिवर्तन करके बीपी को कंट्रोल में रखते हैं 120/80, तो समझिए कि लगभग 90-95% आपको हार्ट अटैक लकवा से रक्षा हो जाएगी।
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जी मैं अशोक बोल रहा हूं सर, स्टेशन रोड दरभंगा से।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार सर, से ये डॉक्टर साहब से एक सवाल था। ऐसा है कि जो आइडियल पैरामीटर है वो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं पिछले 30 साल से, मुझे कभी कोई समस्या नहीं आई है, वेट भी नहीं है।
1: अच्छा अच्छा।
3: और मेरा बीपी हमेशा नॉर्मल ही 120-80 रहा करता था।
1: जी।
3: विगत 1-2 साल से वो हमेशा एक पैरामीटर 119, 118, 80-78, 77 हो रहा है। सर से ये सवाल पूछना था, और अब मैं अगले साल रिटायर हो जाऊंगा, मैं 60 साल पहुंच चुका हूँ। दूसरा सवाल, पहले तो हम लोग ये मरकरी वाले से जांच करवा लेते थे, अभी घर में ही हम ये एक रखे हैं, वो कितना सही है और हम लोग को उस पर कितना विश्वास करना है, ये चीज मैं सर से पूछना चाह रहा हूँ।
1: ठीक है अशोक जी, आपके दोनों सवाल आ गए हैं। अच्छा एक बात और बता दीजिए अशोक जी, क्या आप बीपी की दवा ले रहे हैं तब ये फिगर है?
3: नहीं नहीं, कभी नहीं, नेवर इन द लाइफ।
0: आपको बीपी
3: आपको बीपी शुगर
0: खैर ये ठीक है, आपको बीपी की शिकायत नहीं है, अगर इतना फिगर जा रहा था भाग्यशाली है, आपको अभी तक बीपी नहीं हुआ है।
1: और दूसरा सवाल इनका ये है सर कि डिजिटल से वो आप अभी अब चेक कर रहे हैं तो कभी 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो रहा है?
0: वो होगा डिजिटल में, थोड़ा 1-2 पॉइंट आता है कम, तो मान के चलिए कि ठीक है। आजकल 90% जगह वही इस्तेमाल होता है डिजिटल, इस पिग्मो मैनोमीटर की संख्या कम है, 2-4 mm आप जिस रेंज में हैं, अगर आपका बीपी 120-124 भी जाता है तो उसमें कोई हरत नहीं, आप मान के चलें कि आपका बीपी नॉर्मल है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा है टेक्निक कि आपका बीपी सही ढंग का रिकॉर्ड होना चाहिए। बीपी इंस्ट्रूमेंट अगर आप आपके फैमिली में किसी एक जन को या 2 जन को है, तो बेहतर होगा कि एक अच्छे कंपनी का बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीद के अपने घर में रख लें। किसी भी डॉक्टर से 5 मिनट लगता है सीखने में, सीख लिए कैसे बीपी नापते हैं। नंबर 2, अगर आपको दवा लिखी जाती है तो

0: दवा का डोज कम करना, दवा को बंद करना, ये इसका अधिकार आपके डॉक्टर को है, ये अधिकार उनको दे दें, अपने मन से नहीं करें। इसमें गलतियां क्या होती है कि एक बार किसी आदमी का बीपी नियंत्रण में हो गया 120/80, तो उसमें से काफ़ी लोग दवा खाना छोड़ देते हैं। ये उम्मीद होती है कि हमारा बीपी ठीक हो गया। मैं यहाँ पर बता दूं कि आज तक बीपी न किसी का ठीक हुआ, आगे की बात मुझको नहीं मालूम है।
1: एक श्रोता जुड़ गए, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हेलो,
2: मैं बोल रहा हूँ।
1: हाँ रघुनंदन सिंह जी, बताइए क्या जिज्ञासा है।
2: जिज्ञासा यही है कि पहले बहुत लो रहता था, 60/90, लेकिन इधर 2-4 महीना से इतना भाग जाता है जो 100/200 हो जाता है, माने बीपी बढ़ जाता है, मन घूमता रहता है, बड़ा बेचैन हो जाता है। कौन सा खान पियान या रहन सहन में क्या करे जो ये अपने आप थोड़ा जगह पकड़ ले, जो चाहिए।
1: आपकी उम्र डॉक्टर साहब को बता दीजिए।
2: हमारा उम्र है 78 बरस।
0: देखिए ये आपका बीपी की मात्रा बहुत अधिक है, 200/100 है, ये बहुत ही खतरनाक इसको कहते हैं बीपी। इसमें पहला काम होना चाहिए कि अपने अपने डॉक्टर से आजकल में अवश्य मिले, और इसके लिए कुछ जांच करने के बाद आपको मेडिसिन लिखेंगे। मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद तब आपको इसमें क्या क्या खाने पीने में परहेज होना चाहिए ये बताएंगे। ऐसे मैंने पहले भी मैं आप कह चुका हूँ, अभी बता दूँ, इसमें जो परहेज है कि आपकी जो उम्र है, जितना बीपी है, आप कोई भारी काम नहीं करेंगे, हल्का फुल्का काम अपना करेंगे जब तक बीपी आपका नियंत्रण में नहीं होता है। और खाने पीने में नमकीन चीज़ या ज़्यादा नमक वाली चीज़ जैसे पापड़, अचार, चाट, चटनी, या मार्केट में जो अपने भुजिया पैकेट में मिलती है, प्रोसेस्ड फूड पैकेट वाली, उस सब चीज़ को नहीं खाना है। घर का अपना बना हुआ शाकाहारी भोजन जिसमें नमक, तेल, घी कम पड़ा हो, वो आपके लिए हेल्दी फूड है। अपने भोजन में थोड़ा फल को जरूर शामिल करें, जो देहाती फल है, जो गाँव में होता है, ताज़े फल, हरी साग सब्जियाँ। और अगर किसी किस्म का मानसिक अपना तनाव है उसको कम करें, और सक्रिय जीवन शैली घर के अंदर या घर के आसपास में थोड़ा बहुत टहलने की अपना कोशिश करें। तंबाकू की आदत हो, खैनी, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा को तो उसको छोड़ दें। रेगुलर दवाई खाएं और रेगुलर अपना चेकअप करा के बीपी को 130/120/80 के आसपास में रखें। जब तक आप जीवित हैं तब तक अपना दवाई खाते रहें, परहेज करते रहें, तो आपको शायद लकवा, हार्ट अटैक से आपकी रक्षा हो जाएगी।
1: जी नमस्कार।
2: नमस्कार सर, आप पंचोग से सर बोल रहे हैं।
1: जी नाम बता दें अपना।
2: जी अनिल चौधरी नाम है। तो हमको सर 25-30 साल से डायबिटीज भी नहीं है। हमारा उम्र 66-67 वर्ष सर उम्र है। हमारा बीपी सर रहता है 130/60/65/60। शुगर हम नियंत्रण में रखते हैं सर।
0: अच्छा ठीक है सर, आपका अगर शुगर नियंत्रण में आप जो बता रहे हैं बीपी, नहीं ठीक है, बीपी भी ठीक है, तो आप इसी दोनों को नियंत्रण रखें, सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, सब कुछ ठीक रहेगा।
2: दवा नहीं बीपी का सर खाते हैं।
0: जो बीपी आप बताए हैं उसमें दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो डायबिटीज की परहेज करते हैं उसी को परहेज करते रहिए। आप बीपी की जांच हर 15 दिन पर अपने डॉक्टर से कराते रहे। जब बीपी आपका 130/80 से ऊपर जाएगा तब दवा खाने की जरूरत है, अभी आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है।
1: लेकिन ये हमें लगता है कि इन्हें लगता है कि 80 होना चाहिए, नीचे वाला 60-65 रह रहा है।
0: ना ना, तो वो ओल्ड एज में जैसे जैसे हम लोग की उम्र बढ़ती है, 40 साल के बाद बीपी का ऊपर वाला फिगर ऊपर जाता है, और नीचे में जो डायस्टोलिक 80 होता है वो घटना शुरू हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा उम्र होने पर डायस्टोलिक बीपी जो नीचे वाला है 60-50, 60-70 ऐसा हो जाता है। तो उसके कम होने से आपको कोई खतरे की बात नहीं है।
1: इस समय हमारे एक श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: हम ग्राम थमसन से राजेंद्र ठाकुर बोल रहा हूँ सर।
1: जी नमस्कार। जी नमस्कार राजेंद्र ठाकुर जी, बताइए क्या जिज्ञासा है।
0: प्रणाम प्रणाम।
3: हम जो है सो बीपी का दवा रोज खाते हैं, थोड़ा कब्ज रहता है सर, कब्ज के चलते परेशान

0: कहते हैं हमेशा गैस बन जाता है, बीपी कभी 130-85, कभी 130-90।
1: आपको दूसरी समस्या है अपना कब्जियत की, उसके लिए पानी 3-4 लीटर डेली पिए, हरी साग सब्जियों की मात्रा को कुछ ज़्यादा कर दें, सलाद कुछ ज़्यादा खाएं, फल को कुछ ज़्यादा खाना है, और सबगोल की भूसी 2 चम्मच सवेरे 2 चम्मच शाम खाइए, और सवेरे शाम टहलिए, आपका अपना कब्जियत ठीक हो जाएगा।
2: एक श्रोता और जुड़ गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जी सर, हमारे नाम पासवान झंझापुर लंगड़ा चौक से सर बोल रहे हैं। जिज्ञासा सर, यही हमको तो बीपी है, हम तो सर 2 दिन से बीपी की शिकायती है।
2: अच्छा,
3: लगभग 5 साल से है, तो हम एक ही सर खा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब से यही हम जानना चाह रहे हैं, उसके भी बराबर हमको गैस सर बन जाता है।
2: अच्छा, ये जो आप दवा खा रहे हैं हरिराम पासवान जी, क्या उससे आपकी जो बीपी है वो नियंत्रित है, वो नॉर्मल है?
3: जी सर, एकदम नियंत्रित रहता है।
1: गैस की समस्या को जानने के लिए आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, तो अल्ट्रासाउंड की जांच कराएंगे, एंडोस्कोपी कराएंगे, और गैस किस कारण से बनता है जब तक उसका वो कारण नहीं समझेंगे तब तक उसका दवा बोलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे आप एंजाइम की कुछ टिकिया यूनियन एंजाइम टाइप की दवा खा कर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जब तक जाँच नहीं होगा एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड, तब तक गैस की क्या सही वजह है ये पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है।
2: अच्छा, जब हाइपर टेंशन की बात चल रही है डॉक्टर साहब, और वहाँ अभी हम वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ हाइपर एसिडिटी की भी बात हो गई, तो क्या हाइपर एसिडिटी की वजह से भी हाइपर टेंशन की समस्या हो सकती है?
1: नहीं, हाइपर एसिडिटी, लेकिन हाइपर एसिडिटी के कारण नहीं, उसमें ऐसे हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाइपर एसिडिटी और हाइपरटेंशन के रूट कॉज में कुछ लोगों को एक ही होता है कारण, दैट इज स्ट्रेस, मानसिक तनाव। अगर आप मानसिक तनाव, खास करके एक्यूट स्ट्रेस, अचानक आपको कोई स्ट्रेस का लोड काफ़ी ज़्यादा हो जाए, तो उसमें हाइपर एसिडिटी भी हो सकता है और बीपी भी हाई हो सकती है कुछ क्षणों के लिए। और जब स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा तो आप स्वतः हो जाएगा कम, इसीलिए वो स्ट्रेस से अपने आप को बचाना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। स्ट्रेस के बारे में मैं एक दो शब्द बता दूं कि स्ट्रेस से जो लोग इच्छुक हैं कि स्ट्रेस कम हो, वो अपनी जीवन शैली में सकारात्मक परिवर्तन करें, डिसिप्लिन्ड लाइफ स्टाइल, समय पर सोना, समय पर जगना, समय पर खाना, मार्केट की चीज़ नहीं खाना, रेस्टोरेंट की चीज़ नहीं खाना, सॉल्ट रिच खाना नहीं खाएं, और इसके अलावा वो अपने सांसों पर नियंत्रण रखें। एक योग में सिखलाया जाता है प्राणायाम, गहरी लंबी सांस लेना छोड़ना, अगर इसकी आदत डालते हैं खास करके स्ट्रेस के टाइम में, तो सांस को धीरे धीरे करके लेंगे, तो सांसों को धीरे करने से स्ट्रेस भी कंट्रोल होता है। तो इस तरह से, और आपके जीवन में कुछ भक्ति की कमी है तो भक्ति से जुड़े, तो उससे भी स्ट्रेस की।
2: एक और श्रोता जुड़ गए हैं। जी नमस्कार,
4: हम जादेश्वर साहब बोल रहे हैं, सिमरिया भिंडी। बीपी तो बीपी हमारा 130-70-80 रहता है, और कुछ चलते हैं तो लड़खड़ाता है। जैसे
2: उम्र कितनी है आपकी?
4: 76 वर्ष है।
2: अच्छा, ये समस्या कब से है?
4: इस समस्या लड़खड़ाना तो हिसाब से
1: इनका बीपी ठीक है, बीपी से जो चलने में दिक्कत हो रही है उसको कोई संबंध नहीं। अगर चलने में इनका लड़खड़ा जाते हैं तो हम समझते हैं कि एक फिजिशियन से मिलना चाहिए, उसकी अलग जांच होती है कि मांसपेशी की कमजोरी है, जॉइंट में है आप गड़बड़ी, या नर्व की कमजोरी है। जब तक इसको नहीं आदमी जानेगा, और वो जानने के बाद उसकी कुछ अपना दवाई होती है, कुछ एक्सरसाइज होता है, तब जाके वो जाते ठीक हो। जब तक वो चीज़ का जांच नहीं होता है, तब तक मैं इनको एक राय दूंगा कि चलते समय, खास करके घर से बाहर चलते समय, एक छड़ी का इस्तेमाल करें, तो उससे इनको अपना बैलेंस काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा।
2: डॉक्टर साहब, क्या गर्भावस्था के दौरान या कुछ दवाओं के सेवन के दौरान बीपी अनियमित रूप से हो सकती है, बढ़ी हुई या घटी हुई? हाँ, ऐसा कुछ है?
1: तो जो महिलाएं गर्भावस्था की ओर से गुजरती हैं, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर, तो उनका शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होता है।
2: अच्छा,
1: उसका विपरीत असर उस पर होता है, बीपी का बढ़ना, पैर का फूल जाना, चेहरे का फूल जाना, लेकिन उसको

0: तब ऐसी स्थिति में दवाओं से कंट्रोल उनको अपना करना पड़ता है। और कुछ ऐसी दवाएं हैं जो पहले मानसिक रोग में इस्तेमाल होती थी, जिसको बोलते थे माओ इनहिबिटर्स, उस अपना ग्रुप की दवा खाने से बीपी बहुत भागता, तो वो आजकल दवाई इस्तेमाल नहीं होती है।
1: एक और श्रोता जुड़े हैं। जी नमस्कार।
2: नमस्कार सर, मैं किशन कुमार मंडल मुंबई से बोल रहा हूँ। जैसा है डायबिटीज वाला आदमी जब थोड़ा बहुत बड़ा जो रहता है, शरीर सुस्ता रहता है, उतना भी खाता पीता फ्रूट भी खाता है तो उतना शरीर में घूम पाते।
0: आपको बताऊं कि जो भी व्यक्ति अपन डायबिटीज के पेशेंट हैं और उपचार उनका हो रहा है, उसके बाद भी अगर शरीर सूखता जा रहा है, इसका मतलब है कि वो जो दवा ले रहे हैं वो असर उन पर नहीं कर रहा है। और यही वक्त है जबकि एक ही दवा से उनकी वो सूखी हुई शरीर वापस आ सकती है, उस दवाई का नाम है इंसुलिन।
3: हेलो
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: जी मैं सावित्र रामनगर से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र जो है 75 साल है
1: जी।
3: मेरी बीपी भी है लेकिन नॉर्मल है, लेकिन अभी गैस और वो मुंह का सूखना बहुत ज्यादा होता है
0: वो,
3: जब तक पानी नहीं पीते
0: आप
3: ना।
0: ये बताएं, रात में सोते हैं तो नाक आपकी आवाज करती है?
1: खराटा
0: खराटा लेने की आदत है?
3: नहीं, खराटे की
0: अगर
3: आदत
0: खराटा
3: नहीं है
0: लेने
3: सर।
0: की आदत नहीं है तो मुंह सूखने का कारण गैस का कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं। जिन डॉक्टर से आप दिखला रहे हैं उनसे कहिए कि ये दवा खाने के
3: गैस
0: बाद
3: की
0: से हमको
3: दवा तो
0: ये
3: खा रहे हैं सर।
0: दवा जो लिखे हैं कि ये दवा खा
1: हाँ
0: रहे हैं, मेरे ये समस्या उस समस्या के उपाय करेंगे। नंबर टू, बीपी की दवाई खाना ही आपका काम नहीं है। एक और काम है, आपकी जिम्मेदारी होती है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है फ्रिक्वेंट जाँच। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो ऐसे तो नियम कहता है कि डेली अपना जांच करें। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट अपना है तो डेली जांच करें, नहीं इंस्ट्रूमेंट है तो कम से कम वीक में एक बार, जिस दिन छुट्टी हो आपको, बीपी की जांच अपना कराएं। और बीपी की जांच अपना कराते समय ये बात देखें कि आपके आपकी पोस्चर क्या है। कुर्सी पर बैठ के आराम से 5 मिनट, जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो, ऐसा नहीं कहीं धूप से चल के आए और बीपी नाप करा लिया, जब आप बिल्कुल शारीरिक रूप से मेंटली रूप से रिलैक्स हो, कुर्सी पर बैठ करके अपना जांच कराएं। और ओल्ड एज में जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनको अगर कोई तरह का चक्कर उकर या कमजोरी होती हो तो 2 पोस्चर में बीपी को जांच कराएं, एक बैठ करके और 3 मिनट खड़ा होने के बाद। अगर 3 मिनट खड़ा होने के बाद बीपी ड्रॉप हो जाता है, घट जाता है, इसका मतलब है ऑर्थो स्टैटिक हाइपोटेंशन है। उनको बीपी की दवाओं का डोज हम लोगों को अपना घटाना पड़ेगा।
1: डॉक्टर साहब, नमक एक सवाल है।
0: हाँ,
1: नमक के इस्तेमाल को लेकर कई बार सलाह दी जाती है कि ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए?
0: नमक के बारे में देखिए, रिकमेंडेशन है कि 2500 मिलीग्राम पर डे आप खा सकते हैं। 2500 मिलीग्राम का मतलब होता है चाय वाली चम्मच से आधा चम्मच पर डे, सुबह से रात तक। लेकिन दिक्कत के क्या है कि नमक को हम लोग नाप तोल के अपने खाने में नहीं डालते हैं,
1: स्वाद के
0: और
1: मुताबिक खाते हैं।
0: भारतीय व्यंजन, भारतीय लोग, हम लोग ज़्यादा नमकीन खाने के आदत। आपने देखा होगा गांव में, घरों में, कि जब लोग खाना खाते हैं तो अपने से बोलते हैं कि थोड़ा अचार खाने को दे दो यार।
1: अच्छा,
0: भोज भात में जाएं तो चाट पर लोग सबसे ज़्यादा छोड़, हम लोग ज़्यादा नमक खाते हैं। इस जो हमारा नेचर है उसको घटाना होगा।
1: सही
0: कुछ
1: बात है।
0: भारतीय लोगों में एक अच्छी बात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक एक परंपरा है एतवार करने के लिए। एतवार के दिन सॉल्ट नहीं खाएंगे।
1: अच्छा।
0: मंगल के रोज नहीं खाएंगे, किसी खास दिन फेस्टिवल के दिन नमक नहीं खाएंगे। ये हमारे अपने
1: परंपरा से आई हुई चीज़ है।
0: अब पूर्वज के दिमाग में था तो
1: हाँ।
0: उनकी नमक की मात्रा को घटाने के लिए
1: जी।
0: कि अगर आप रेस्टोरेंट का खाना,
1: हाँ।
0: भोज भात का खाना, मार्केट का खाना, पैकेट का खाना, भुजिया उजिया,
1: हाँ।
0: अगर खाना अपना आप बंद कर दें, इतना ही काफ़ी है आपके नमक को कम करने।
1: सेंधा नमक के बारे में रिकमेंड।
0: सेंधा नमक इज़ अ वंडरफुल चेंज, बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: सेंधा नमक और कॉमन सॉल्ट में फ़र्क है। ये जो उजला वाला सॉल्ट है, इसको इसमें सोडियम की मात्रा जाती है, वो हमारे बीपी के लिए ख़तरनाक है। लेकिन सेंधा नमक में सोडियम की जगह होता है पोटासियम। पोटासियम की मात्रा अधिक होने से बीपी कंट्रोल करता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और बीपी को घटाने में भी सेंधा नमक मदद करता है।
1: हेलो जिंदगी, में आज का विषय था उच्च रक्तचाप लक्षण और सावधानियां। बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, डॉक्टर ए के गुप्ता साहब, आपने

0: अपना समय हमारे लिए निकाला, आपका हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
2: अभी आप सुन रहे थे हेलो जिंदगी, रविवार 17 मई को प्रसारित हेलो जिंदगी का संपादित अंश आकाशवाणी दरभंगा से। कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
3: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय टैलेंट लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
5: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
3: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए

0: सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दरभंगा है। मीडियम वेव 231.5 मीटर यानी 1296 किलोहर्ट्ज पर। अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। आज के हमारे इस सभा के कार्यक्रमों में आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर बाद देशभक्ति गीत। पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत होगा, महेंद्र कपूर की आवाज होगी, बोल होगा दुल्हन चली पहन चली। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 1:15 से। 2 बजे प्रादेशिक समाचार हमारे पटना केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 2:05 समय होगा इलाकाई खबरों का। 2:10 हम आपको सुनाएंगे 2:10 से। 2:15 समय होगा दोपहर समाचार का। दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। 2:30 पर हम पुनः उपस्थित होंगे आपके लिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम को लेकर। 3 बजे समय होगा पंजी का लोकगीत का।

ये जानकारियां थी पहली सभा के कार्यक्रमों की। अब एक नजर डालते हैं दूसरी सभा के कार्यक्रमों पर। दूसरी सभा आरंभ होगा संध्या 5 बजे, कार्यक्रम तरुण कुसुम के साथ। परीक्षाएं और कैरियर मार्गदर्शन, यही है आज चर्चा का विषय तरुण कुसुम के अंतर्गत। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दूसरी सभा में 5:40 से। हिंदी समाचार का प्रसारण होगा संध्या 6 बजे। विद्यापति गीत 6:10 से। मैथिली संवाद पटना केंद्र से प्रसारित 6:25 से। गांव घर के अंतर्गत आज आप सुनेंगे नव ऊर्जा, कौशल विकास योजना एवं इसके लाभ, ये आज चर्चा का विषय रहेगा गांव घर के अंतर्गत। और खेती गृहस्थी में 7 बजे से आप सुन पाएंगे खाद्य एवं उर्वरक के समुचित प्रयोग के बारे में चर्चा। प्रादेशिक समाचार 7:30 से। जिले की हलचल 7:47 से। फिल्म संगीत 7:52 से। 8:15 पर आप सुनेंगे सिंगरहार। 8:45 समय होगा समाचार संध्या का। 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू खबरें।

विविधा सर्वभाषा का ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 9:30 से 9:45 पर। समय होगा देव वाणी का। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे आज कार्यक्रम एक फनकार। 10:30 से फिल्म संगीत।

अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। अब सुनिए देशभक्ति गीत। कलाकार हैं महेंद्र कपूर।
0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा।

दुल्हन चली पहन चली तीन रंग की चोली। देशभक्ति गीत अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दरभंगा से। अब समय हो चला है फिल्म संगीत का, आइए आनंद लेते हैं फिल्मी गीतों का। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म जख्मी इंसान के इस गाने से, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत और ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। फिल्म का नाम था दिल ए नादान। नक्स लायलपुरी का लिखा ये गीत था खय्याम के संगीत निर्देशन में। कार्यक्रम का अगला गीत अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म धन दौलत से। आसफ भोसले और किशोर कुमार के स्वर हैं, राहुल देव वर्मन का संगीत है। फिल्म का नाम है धन दौलत।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

ये आवाजें हैं आशा भोसले और साथियों की, गीत के बोल हैं साहिर लुधियानवी का, संगीत है रोशन का, फिल्म का नाम है दिल ही तो है।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: धर्मवीर, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी का लिखा ये गीत था। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। समाचारों के बाद 2:30 पर हम फिर उपस्थित होंगे कुछ और फिल्मी गानों के साथ। अभी हम जुड़ते हैं अपने पटना केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर का आयोजन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर राज्यव्यापी अभियान का उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित हो जाएंगे। सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रगति की मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से सीधी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। सहयोग शिविर का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के दानापुर अनुमंडल के सरारी पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बरौनी प्रखंड अंतर्गत भरत उच्च विद्यालय पिपरा देवस में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तेघरा के विधायक रजनीश कुमार, जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, पुलिस अधीक्षक मनीष समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इधर दरभंगा जिले में 24 स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेन्द्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कटिहार में आयोजित सहयोग शिविर के माध्यम से 2975 शिकायतों का निष्पादन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सदर प्रखंड के भवाड़ा पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। वहीं अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिले के प्रभारी मंत्री सह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शिविर का उद्घाटन किया। अन्य जिलों में भी विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। राजधानी पटना में अब पेट्रोल का मूल्य 110.02 रुपये प्रति लीटर और डीजल का मूल्य 94.97 रुपये प्रति लीटर हो गया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 25 मई को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति डॉ. गोपालजी त्रिवेदी समेत बिहार के 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान प्रदान करेंगी। भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री दिया जाएगा, जबकि डोमकच्छ नृत्य को मुख्य धारा में लाने वाले लोकप्रिय कलाकार विश्व बंधु को मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। इस अवधि में गया जी और बक्सर में लू की स्थिति बनी रही। इन स्थानों पर तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार गया जी प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने आज रोहतास, कैमूर और बक्सर जिले में लू चलने की आशंका को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। शेखपुरा जिले के अरियरी प्रखंड अंतर्गत प्रसार गांव में एक तालाब

बोरे में बंद दो किशोरों का शव बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दरभंगा जिले के पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदन पट्टी गांव में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में चारों की मौत हो गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: आकाशवाणी दरभंगा से अब सुनिए रोजगार सूचना। असिस्टेंट लोको पायलट ALP, कुल पदों की संख्या है 11,127। आवेदन शुरू होने की तिथि 15 मई 2026, अंतिम तिथि है 14 जून 2026। योग्यता उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास और संबंधित ट्रेड में ITI, NCVT, SCVT पास होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट देख सकते हैं indianrailway.gov.in। RRB रेलवे टेक्नीशियन भर्ती, कुल पदों की संख्या है 6,565। आवेदन शुरू होने की तिथि है 30 जून 2026 और आवेदन अंतिम तिथि होगी 29 जुलाई 2026। योग्यता टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए BSc BTEC डिप्लोमा और ग्रेड 3 के लिए 10वीं प्लस ITI पास। ऑफिशियल वेबसाइट इसके लिए है indianrailway.gov.in। बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC ने 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। कुल पदों की संख्या है 1,186। आवेदन शुरू होने की तिथि 7 मई 2026। आवेदन की अंतिम तिथि होगी 31 मई 2026। योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। आप वेबसाइट देखिए bpsc.bihar.gov.in। रोजगार सूचना समाप्त हुई।

0: 90 वर्षों का शानदार सफर आकाशवाणी का।
1: आकाशवाणी दरभंगा ने भी पूरे कर लिए हैं अपने 50 साल।
2: एक से बढ़कर एक कार्यक्रम, साथ ही सदाबहार फिल्मी गाने समय समय पर।
1: सोमवार से शनिवार दोपहर 12 बजे और संध्या 5:40 पर कुछ तराने नए जमाने के।
0: आकाशवाणी दरभंगा, सुनते रहिए। घर घर केरवाणी आकाशवाणी, हृदय हृदय केरवाणी आकाशवाणी। आ हृदय सबके जोड़बा लेल हम आबि रहल छी एक ही क्लिक पर। हमर स्टेशंस लाइव, मनक बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, क्षण क्षण केर विश्वसनीय खबर। हमर सबक वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नव भारत, नव आकाशवाणी।
1: और अब जुड़ते हैं हमारे दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचारों के लिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारे संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि इस समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर

0: विशेष रूप से उत्साहित हैं।
1: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों की हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुँच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशनल लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि, सतत राष्ट्र विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
3: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इंफॉर्मेशन कंट्रोल।
4: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
3: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कम्प्लीट एक्सप्रेशन।
1: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत

0: में रुपए 58 पैसे है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 59 पैसे और डीजल 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109 रुपए 70 पैसे और डीजल की 96 रुपए 7 पैसे दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 49 पैसे और डीजल की 96 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और हुर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहां हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक की वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दरभंगा। एक बार फिर से हम उपस्थित हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब से लेकर 3 बजे तक चलता रहेगा। कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं बाबुल सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल का गाया ये गीत। फिल्म का नाम है 2.5 अक्षर प्रेम के। शब्द हैं समीर के, संगीत है जतिन ललित का।

संगीत के साथ। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब से लेकर 3 बजे तक चलता रहेगा। कार्यक्रम के शुरुआत में हम आपको सुनवाते हैं बाबुल सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल का गाया ये गीत। फिल्म का नाम है 2.5 अक्षर प्रेम के। शब्द हैं समीर के, संगीत है जतिन ललित का।

ये गीत अभी आप सुन रहे थे कच्चे धागे फिल्म से, आवाजें थी लता मंगेशकर और कुमार सानू की। फिल्म संगीत के आज के इस कार्यक्रम में आपने जिन फिल्मों के गाने सुने उनके नाम हैं ढाई अक्षर प्रेम के, बेटा हमको दीवाना कर गए, कच्चे धागे और साजन चले ससुराल। आज के इस कार्यक्रम के कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, बाबुल सुप्रियो, पंकज उदास, अभिजीत, अलका याग्निक, लता मंगेशकर और कुमार सानू। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है।

अब आप सुनेंगे बज्जी का लोकगीत। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे कृष्ण कुमार श्याम, ब्रजेश कुमार सुमन और राम बालक निराला के गाए बज्जी का लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे बच्ची का लोकगीत। आज के कलाकार थे कृष्ण कुमार श्याम, ब्रजेश कुमार सुमन और राम बालक निराला। बज्जिका लोकगीत अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव के 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या दोपहर के 3:20 हो चुके हैं। समाप्त होती है हमारी आज की पहली सभा। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।

0: बात होती तो वो एकदम से मुंह से निकल ही जाती है,
1: और
0: दोनों के मुंह से।
1: वैसे बिल्कुल वैसा ही संदेश फिर हमारी सखियां लिख भेजती है। तो ऐसा लगता है देखो मन जब मिल जाते हैं तो शब्द भी एक हो जाते हैं, है ना। तो भाई बात हो रही थी हम आंखों का तारा ये मुहावरे की, और बहुत सारे संदेश आए हमारे श्रोताओं और सखियों की तरफ से। तो पहला संदेश पढ़ते हैं, ये लिखा है कि बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी मुहावरा, बहुत प्यारा, अत्यधिक प्रिय या अति प्रिय होना इसका मतलब है। तो ज्यादातर अपनी संतान के प्रति ये कहा जाता है, चंदा है तू मेरा सूरज है तू। ये गाना उनको लग रहा है कि ये गीत शायद बजेगा, देखते हैं भाई बजेगा या ना बजेगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि गीत तो आएगा ही
0: ना कोई गीत तो आएगा ही।
1: हाँ
0: और एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, आंखों का तारा होना हिंदी का एक बहुत ही प्रसिद्ध मुहावरा, इसका अर्थ बहुत प्रिय होना या अत्यंत प्यारा होना, बहुत लाडला होना। और छोटा बच्चा अपने परिवार की आंखों का तारा होता है, और VBS के सारे प्रोग्राम हमारे आंखों के तारे हैं।
1: क्या बात है,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बिल्कुल, और बस कुछ इसी तरह की बात हमारे एक और श्रोता ने लिख भेजी कि जहां तक आंखों का तारा होने की बात है, विविध भारती भी हमारी आंखों का तारा है, यानी हम सभी का बड़ा प्रिय प्यारा मनोरंजन चैनल है, और आज का मंच संभाल रही हमारी दोनों बेटियों भी हमारी आंखों के तारे हैं।
0: क्या बात है,
1: तो
0: बहुत
1: बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद हमारे श्रोताओं को, सखियों को, जो इतना प्रेम आपकी तरफ से मिलता है। और सच में हम मुलाकात हमारी नहीं हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कहीं कोई एक जुड़ाव तो है।
0: बिल्कुल, पिछले जन्म का होगा या इसी जन्म का जुड़ाव है।
1: हाँ
0: है ना?
1: बिल्कुल,
0: एक नाजुक सी डोर है श्रोताओं के बीच और हमारे बीच, ये हमें बहुत सारा संबल देती है ना।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा, सखी सहेली प्रोग्राम हमारी आंख का तारा है, यानी बहुत बहुत प्यारा दुलारा है, बहुत ही मनपसंद चीजों कहते हैं, आग का तारा कहते हैं। और हर माँ की आग का तारा होती है उनकी संतान, देशभक्ति क्रांतिकारियों की आग का तारा उनका प्यारा हिंदुस्तान। क्या बात,
1: क्या
0: है?
1: बात है,
0: हमारा देश हम सभी की आंखों का तारा है।
1: और देखो होना भी चाहिए
0: जी।
1: और एक और संदेश आया है, आंखों का तारा होना इसका अर्थ है हम सभी जानते हैं कि बहुत प्यारा होना। ये मुहावरा अक्सर घर के किसी लाडले बच्चे या व्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। हम सबके जीवन में हमारे आंखों का तारा कोई ना कोई तो जरूर होता है, उसको हम ये बताएं कि तू हमारे आंखों का तारा है या हम तुझे कितना प्यार करते हैं। पहले आप मुहावरे के माध्यम से बताएं कि आप उसको प्यार जताकर बताते हैं, या ये जरूर कह सकती हैं कि ये मुहावरा हमारी निजी जिंदगी में हमारे प्यार को दर्शाने के लिए बहुत काम आता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम कभी हम जैसे घर में छोटा बच्चा होता है ना, नाराज हो जाता है, तो हम उसको लाड़ दुलार में नहीं कहते, अरे तू तो मेरी आंखों का तारा है, क्यों नाराज हो रहा है ना।
0: ये माँ जो है ना, हर माँ के मुंह की बात है, उनके जुबान पे ये शब्द आता ही। एक हमारे साथी लिखते हैं दीपा कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा या अत्यंत प्रिय होना है। ये मुहावरा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी का सबसे पसंदीदा और लाडला होता है। इसका अर्थ बहुत अधिक स्नेह या प्यार का पात्र होना है। वाक्य प्रयोग, हर बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा होता है। छोटा बेटा होने के कारण सोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है, उन्होंने उदाहरण लिख के भेजा है। वैसे हर बच्चे जो होते हैं ना, अपनी माँ की आंख के तारे होते हैं, फिर वो छोटा बेटा हो, मझला हो, बड़ा हो, बेटा हो या बेटी हो, सारे लोग अपने माँ की आंख के तारे ही होते हैं।
1: बात तो बिल्कुल सही की कही। और अब क्या लगता है आपको, हम देखते हैं कि हमारे पसंद का जो गीत हमने निकाला हमारे श्रोताओं को वो भी पसंद आएगा, या उनकी जो लिस्ट उन्होंने बना रखी होगी छोटी सी कि शायद इस मुहावरे के बाद ये गीत बजेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी पसंद और उनकी पसंद
0: मिलती
1: कितनी
0: है,
1: मिलती है ना।

0: सोनाली, मैं देख रही हूँ कि इस गीत को सुनते सुनते कुछ संदेश पढ़ के आप जैसे कुछ भावनात्मक हो गए हो।
1: जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कि भाई मेरी माँ ये गाना हमेशा गुनगुनाती थी और मैं 5 बहनों में इकलौता भाई हूँ, तो मैं अपनी मम्मी की आँख का तारा था, है ना।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: तो जो बच्चे होते हैं ना, माँ की आँख के तारे होते हैं, फिर बेटी हो बेटा हो, पर जो हम बच्चे होते हैं ना, कभी कभी हम अपनी माँ को दुखी कर देते हैं कि क्यों इस तरह से हमारे पीछे क्यों पड़ी हो, या क्यों हमें हमेशा लेक्चर देते रहती हो,
0: या कुछ कोई खास चीज खाने के लिए मम्मी बोलती है ना, थोड़ा सा खा लो थोड़ा सा खा लो, अब हमारा मन नहीं होता और हम बोलते हैं कितना आप बोल रही हो, नहीं खाना भाई, हम झुंझला के उनको कभी कई बार
1: गुस्सा हो जाते हैं।
0: हाँ, और कुछ कड़वे बोल भी बोल देते हैं।

0: सोनाली, आप क्या बात कर रही थी अपराध बोध के लिए?
1: ये अपराध बोध शब्द ही ऐसा है ना कि जिसको पढ़ते ही अपराध बोध आ जाता है दीपा। जब हम मन की बात कहते हुए बोल देते हैं ना कि मुझे गिल्ट खा रहा है या पछताव हो रहा है, ऐसी मानसिक स्थिति जो इंसान को अंदर ही अंदर दिमाग की तरह खोखली करती जाती है। अतीत में हुई किसी गलती, गलत फैसले या किसी को अनजाने में पहुँचाए गए कष्ट के कारण ऐसी भावना पैदा होती है। हालांकि कुछ हद तक अपराध बोध हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित भी करता है, लेकिन जब ये लंबे समय तक मन में घर कर जाए ना तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तबाह कर देता है।
0: बिल्कुल सही कहा। अतीत को देखो बदला नहीं जा सकता सोनाली, लेकिन जो वर्तमान है, आज है, उसको संभाल कर भविष्य को जरूर संवारा जा सकता है। इसलिए खुद को माफ करना, अपराध बोध के जाल से बाहर निकलना बेहद जरूरी है।
1: और यदि हम किसी बात को लेकर ग्लानी या अपराध बोध से जूझ रहे हैं तो कुछ तरीकों को अपना कर खुद को मुक्त कर सकते हैं। जैसे गलती को स्वीकार करना अपराध बोध से बचने का पहला कदम है, कि ये मानना कि हमसे गलती हो गई है। गलती को छुपाने या उससे भागने के बजाय उसे स्वीकार करने से मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। और परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, खुद से पूछे कि जब वो गलती हुई तब क्या हम सचमुच किसी बुरे इरादे से काम कर रहे थे। कई बार हालात, अधूरी जानकारी या सामाजिक पारिवारिक दबाव के कारण गलतियाँ हो जाती है। खुद को हर बात में विलन ना बनाए, यानी खुद को अरे इतना मैं इतनी तो बुरी नहीं हूँ, पर मुझसे गलती हो गई है तो हो गई है।
0: बिल्कुल सही कहा। और माफी मांग सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गलती से किसी दूसरे को ठेस पहुंची है तो बिना किसी अहंकार के उनसे सीधे माफी मांग लेनी चाहिए। यदि संभव हो तो उस नुकसान की भरपाई करने की भी कोशिश कर सकते हैं, और ये करके देखिए आपके मन को बहुत गहरी शांति देगा। फिर आत्मक्षमा अपनाना चाहिए। हम ना दूसरों को तो कर देते हैं क्षमा, लेकिन कभी कभी अपने ही किसी किए के लिए बार बार बोलते ना, मैं उसके लिए खुद को माफ नहीं कर सकती, मैं अपनी ये वाली बात को बिल्कुल भूल नहीं सकती। इस तरह की बातें अक्सर आती हैं, हम अपने लिए सोचने लग जाते हैं। और अक्सर हम दूसरों को बहुत आसानी से माफ तो कर देते हैं, लेकिन खुद के प्रति इस तरह से हम कठोर हो जाते हैं। लेकिन इंसान गलतियों का ही पुतला है, फिर देखो है कि नहीं सही बात। और खुद को एक इंसान के रूप में देखें जिसने गलती की, न कि खुद को ही एक बुरा ही इंसान हम मान लेते हैं बिल्कुल कि हाय मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। इस तरह की बातें भी कभी कभी निकल आती हैं।
1: और ऐसे में क्या होता है, हम निराशा की खाई में ही गिरे रहते हैं हमेशा। अगर ऐसी बातें हमारे दिमाग में आती हैं तो हम उदास रहते हैं, निराशा में रहते हैं, और उससे क्या होता है, जाने अनजाने में हमारा स्वास्थ्य पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बीमारियों का घर बन जाता है। तो अतीत की उस घटना को एक कड़वी याद के रूप में ना देखकर एक सबक के रूप में अगर हम देखें ना, तो बहुत हद तक हम आगे भविष्य में दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हमारी गलतियाँ हमें फिर गिल्ट में नहीं बल्कि व्यक्तिगत विकास में आगे बढ़ने में भी मददगार होगी। जो बीत गया उस पर अब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, जो आएगा वो हमें पता है नहीं। इन्हीं बातों की उलझन में हम अपना वर्तमान क्यों बिगाड़े? और फिर देखिए ना, अन्य चिंता में वर्तमान के खूबसूरत पल हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलते चले जाएंगे। तो क्यों ना अपनी ऊर्जा को आज सुधारने संवारने में बिताए, एक सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना जरूरी है।
0: बिल्कुल, हम अपने अतीत में की गई गलतियों से कई बड़े हैं सोनाली, और कई बेहतर भी हैं। खुद को कोसना बंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर नया दिन खुद को सुधारने का एक नया मौका लेकर आता है।
1: और हमारे श्रोताओं ने भी इस विषय में बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं। एक साथी लिखते हैं, अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता है, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता है। जीवन का उद्देश्य निर्दोष बनना नहीं बल्कि सीखते हुए बेहतर बनना है। गलती को स्वीकार कीजिए, उससे कुछ सीखिए, लेकिन उसे अपना स्थायी पहचान मत बनाइए। इंसान गलती से छोटा नहीं होता, वो तब छोटा होता है जब सीखना छोड़ देता है।
0: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह का एक और देश कहता है कि अपराध करने के बाद दिल दिमाग पर एक बोझ महसूस होना स्वाभाविक है। आपसे ये अपराध जानबूझकर के नहीं हुआ है तो खुद को कोसने के बजाय शांत चित्त पूर्वक आत्मचिंतन करें, भविष्य में इससे इसके प्रति जागरूक रहें। अतीत के गलियारों में घूमने के बजाय परिवार के साथ हंसी खुशी भरा माहौल बनाए रखें, वर्तमान आपका ऐसा ही होना चाहिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं, जाने अनजाने हमसे गलतियां होती रहती है, मन से उसे मान लेना ही समझदारी है। नहीं तो जब तक मान न लूं हमेशा अपराध बोध से मैं ग्रस्त रहती हूं, क्योंकि कोई ना कोई आपकी गलती पकड़ ही लेते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर है मान लिया जाए। साथी एक और साथी ने लिखा है कि अपराध बोझ से बचना जरूरी है, खुद को क्षमा करना आसान नहीं होता, इसके लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति कभी गलती नहीं करता वो शायद नया प्रयास भी नहीं करता। इसी तरह की बातें और भी हमारे साथियों ने लिखी है।
0: भाई देखो, दिल की बात कहीं किसी को

देनी चाहिए कोई दोस्त को, कोई ऐसा आपका भाई होते हैं ना, हमारे कजिन्स भी होते हैं जिनके हम बहुत करीब होते हैं, तो अगर आप अपने दिल की किताब कहीं खोल देंगे तो मन शायद कुछ इस तरह से हल्का हो सकता है।

0: सुना ली। मुझे बताओ, एक संदेश बहुत गहराई से पढ़ रही हो तुम।
1: जी, हमारे एक सखी ने लिखा है कि कभी कभी अनावश्यक रूप से अपराध बोध पालकर अपना आत्मविश्वास खो बैठते हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। कुछ लोगों को तो अगर जागने में देर हो जाए तो भी अपने आप को कोसने लगते हैं, भाई आप ज़रा देर तक सो लेंगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाएगी। किसी से खाने में नमक ज़्यादा पड़ गया तो परेशान हो जाएंगे। आप ही तो रोज़ स्वादिष्ट बनाती है, एक दिन गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाएगा। ज़िंदगी को हल्के फुल्के ढंग से जिए, बोझ लेकर

0: लीजिए। वही एक साथी ने लिखा कि भाई मैंने भी एक कुछ ऐसा काम कर दिया था कि मेरे घर के मेरे दुकान के पीछे में एक जगह थी, वहां पर बिल्ली ने छोटे छोटे बच्चे दिए थे, तो मुझे परेशानी हो रही थी तो मैंने बच्चों को उठा के कहीं भिजवा दिया। बाद
1: अच्छा
0: में दूसरे दिन उन्हें मंगवा लिए बच्चे, तो बहुत अपराध बोध से ग्रस्त हो गए थे, अब उन्हें अच्छा लग रहा है। तो ऐसा कभी कभी हो जाता
1: हो
0: है।
1: जाता है बिल्कुल। और आपने देखिए माँ को उसके बच्चों से मिला दिया है, तो इससे ज्यादा खुशी जितने खुश आप है ना, ये सुनकर और ये पढ़ के आपका संदेश हमें भी बहुत खुशी मिल रही है। और भाई इसका परिणाम तो देखिए बहुत अच्छा है, लेकिन परीक्षा के परिणाम में कभी कभी घर में मार भी पिट जाती है और कभी कभी उपहार भी मिल
0: पर
1: जाता
0: ऐसा
1: है।
0: होता है ना दीपा, कि उस वक्त भी अपराध बोध से हम ग्रस्त हो जाते हैं कि कभी परीक्षा में हमें कम नंबर मिल गए, तो खासकर लड़कियां क्योंकि सब लोग बोलते ना कि अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छे नंबर लेकर आती है, हमेशा फर्स्ट आती है, और कभी तीसरा चौथा नंबर आ गया तो उस बेटी को बड़ा बुरा लगता है कि अरे मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मेरे अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं की। और फिर उन्हें मन ही मन वो खाते भी रहता है वो अपराध
1: बिल्कुल,
0: बोध।
1: लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। हम अब तो बच्चों को बहुत समझाते हैं भाई, पहला और दूसरा नहीं, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, नंबर के पीछे ना भागो, ये हमें भी सिखाया जाता था। लेकिन हाँ कभी कभी कहीं कहीं ऐसा होता है कि एक माता पिता को एक एक्सपेक्टेशन होती है हमसे कि भाई ये इतने नंबर तो लेकर ही आएगी या लेकर ही आएगा, तब और नहीं ला पाते तो कहीं हमें मन में वो कसोसता है। लेकिन भाई अगली बार आप मेहनत करके हम उसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन तब छोटे होते हैं ना तो ये सारी बातें नहीं समझ आती। लेकिन आज देखते हैं कि संदेश क्या कहते हैं। पहला संदेश है परीक्षा परिणाम, उपहार कभी नहीं मिला, बचपन में पापा की मार जरूर पड़ी है लेकिन हर बार मम्मी बचा लेती थी। तो देखो मम्मी तो यहाँ भी
0: वो
1: काम आई
0: आग
1: है।
0: का तारा होते हैं ना बच्चे।
1: इसीलिए
0: एक हमारे साथी लिखते हैं, कभी मार तो कभी मिले उपहार, हमारे जमाने में तो परीक्षा के परिणाम के बारे में तो हम फिक्र ही नहीं करते थे, ना माता पिता करते थे। प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई के आगे पढ़ना नहीं था, पढ़ना ये हमारे रिजल्ट के आने के बाद पता चल जाता था, क्योंकि उन दिनों हमारे परिवार में पढ़ाई से ज्यादा काम धंधे पर ध्यान दिया जाता था। अगर फेल हो गए तो गृह उद्योग यानी कारखाना हमारा स्वागत करते तैयार रहता था। मुझसे बड़े सभी भाइयों का ऐसे ही स्वागत हुआ था, पूरे परिवार में मैं अकेला ही है जो ग्रेजुएशन तक पहुंच सका हूँ। क्या बात
1: क्या
0: है।
1: बात है। और एक हमारे साथी ने लिख भेजा है संदेश कि मेरे दादाजी हम बच्चों को जिसका भी रिजल्ट 1 से 5 के बीच में रैंक में आता था, उनको मतलब उस जमाने में 5 रुपए देते थे। वो 5 रुपए हम तीनों भाई बहनों को मिलता ही मिलता था। क्या बात है भाई। और उस जमाने में यानी कि 40-50 साल पहले की बात होगी, 5 रुपए बहुत मायने रखता था। जी बिल्कुल रखता था। और कुछ मिलना ही हमारे लिए ये मतलब मिल जाए बहुत बड़ी बात होती थी। मैं तो SSC में सेंटर का फर्स्ट था और मैथ्स में 100 में से 90 मार्क्स, क्या बात है। और मुझे 100 रुपए का इनाम भी मिला था।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं, परीक्षा परिणाम की बात चली तो बता दे कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में मैं पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी पढ़े थे और हमारी किताबें समझते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो भी पास होने भर के मार्क लाता रहा। BA तक ये सिलसिला चला जब तक मैं मनबढ़ हो चुका था। हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाने लगा, शादी भी हो चुकी थी और पत्नी घर में आ चुकी थी। हाँ, इधर 2 नाती अपनी परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% और एक ने 87% मार्क लाए, फिर भी वे संतुष्ट नहीं है। ये आजकल का जमाना है, यहाँ पर तो 99 भी मिल जाए तो कहते कि भी 1% कहाँ चला गया है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: सही कहा। और एक संदेश कहता है कि ये वो शब्द है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन बोर्ड एग्जाम या फाइनल रिजल्ट के दिन वो गुड़गुड़ वाली, वो घबराहट वाली जो एक फीलिंग रहती है ना, वो सबको याद रह ही जाती है। भाई बिल्कुल सच बात है। एक समय सच में भावनाओं का ये वो समय है जब भावनाओं का एक रोलर कोस्टर होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी मार डांट तो कभी उपहार। तो इन खट्टी मीठी यादों को ताजा करते हुए वो बताते हैं कि रिजल्ट वाले दिन का माहौल तो सुबह में ही घर में सन्नाटा हो जाता, मम्मी भगवान की पूजा कर रही होती हैं, पापा अखबार पढ़ने का नाटक करते हैं जबकि नजरें घड़ी पर होती हैं। परिणाम अच्छा हो अगर हुआ तो घर में दिवाली जैसा माहौल, मिठाई बांटी जाती है, रिश्तेदार फोन करते हैं, पड़ोसी हेलो बोलने आते हैं। परिणाम खराब तो घर में बिल्कुल ऐसा सन्नाटा जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है। टीवी बंद, आवाज धीमी, सब ऐसे व्यवहार करते जैसे किसी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कभी पड़ी मार तो जब नंबर कम आते थे तो लगता था कि अब तो धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और पापा का यह डायलॉग हमेशा होता, बगल वाले शर्मा जी के बेटे को देखो, ये जुमला तो लगता है हर बच्चे का दुश्मन रहा होगा। भाई बिल्कुल सही कहा आपने। और मम्मी का डायलॉग रहता, सारा दिन मोबाइल में खेल में लगे रहोगे।

0: तो अब भुगतो उसका नतीजा, और एक हफ्ते के लिए टीवी खेलना बंद, टीवी बंद और एक्स्ट्रा ट्यूशन की धमकियां मिलती, इस तरह की बातें होती। और अगर उपहार के रूप में उन्हें ये होता था कि जब मेहनत रंग लाती थी तो डर लगता था कि हमसे बड़ा सिकंदर कोई नहीं, और डिमांड पूरी हो जाती थी पापा से नई साइकिल या नया फोन या मनपसंद गेमिंग कंसोल की डिमांड पूरी हो जाती थी। तो भाई उन्होंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से और बिल्कुल आंखों के सामने ऐसा लग रहा है हमारा बचपन भी कहीं ना कहीं सामने लेकर आए हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने बहुत सारे लोगों की आज यादें ताजा की होगी।
1: तो गाना सुन ले
0: चलिए।

0: भाई देखो, कितने लोगों को पढ़ने में दिल भले ही नहीं लगता हो, लेकिन यहाँ पे जो संदेश आ रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लगता है कि पढ़ने में बहुत मन लगता था।
1: एक हमारे सखी ने लिखा है दीपा, हमारे जमाने में सेवंथ बोर्ड होता था, एक स्कूल होने के चलते हम आसपास के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक आते थे, जिससे हम सभी उनके साथ बैठकर पढ़ते थे। पड़ोस में एक बच्चे को का नंबर कम आया, ट्यूशन पढ़ने वाले टीचर आए तो गार्जियन ने शिकायत किया। उस समय तो उनने सुन लिया, बड़ी अकड़ के साथ हमें सुनने लगे कि मुझे कम नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, साई इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, नया नया कबीर का दोहा पढ़ना शुरू कर दिया। जो टीचर ट्यूशन पढ़ाने आते थे उन्होंने कान पकड़ कर बोला, सिर्फ पढ़ने की भी खाने में भी, खाने में हो तो कम हो जाएगा, तो बहुत हल्ला करते हो।
0: और एक और संदेश कहता है कि परीक्षा परिणाम का दिन बच्चों से ज्यादा शायद माता पिता के लिए डर और उत्सुकता लेकर आता है। इस बार मेरी बेटी ने 10वीं की परीक्षा दी थी, सच बताऊं तो उससे ज्यादा घबराहट मुझे हो रही थी उसके कितने मार्क्स आएंगे। जब उसका परिणाम आया तो उसने 90% अंक प्राप्त किए तो मन गर्व और खुशी से भर गया। अब उसकी एक प्यारी सी इच्छा है, उसे गिफ्ट में मोबाइल चाहिए। अभी हमने उसे दिलाया नहीं है, लेकिन आजकल वो बड़े प्यार से दूसरे बच्चों के स्टेटस दिखा रही है हमें और कहती, मम्मी देखो ये उसके पेरेंट्स ने उसे ये गिफ्ट दिया है। तो सच कहूं तो रिजल्ट के साथ जुड़ी ये सारी छोटी छोटी बातें जीवन की सबसे सुंदर

0: शिवानी, तुम कौन सा संदेश पढ़ने का कह रही थी?
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि परीक्षा परिणाम वैसे तो किसी के प्रतिभा को आकलन करने का मापदंड तो है नहीं, पर जो परंपरा चली आ रही है उसका निर्वहन तो होता ही है। स्कूल जाएंगे, क्लास में पढ़ेंगे तो परीक्षा भी होगी, परिणाम आने पर घर पर उसके अनुकूल ट्रीटमेंट भी मिलेगा। पर मेरा अनुभव तो अच्छे वाले ट्रीटमेंट का ही है, तब उपहार वगैरह मिलने का जमाना तो था नहीं, पर क्लास में फर्स्ट सेकेंड आने वाले बच्चों को स्कूल की तरफ से पुरस्कार जरूर दिया जाता था। मुझे तो फर्स्ट प्राइज ही मिल जाता था, जो भी मिलता था अनमोल होता था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है। एक साथ ही लिखते हैं कि परीक्षा के परिणाम उपहार या डांट मुझे तो याद नहीं, हमारे जमाने में ऐसा कुछ होता था। नंबर कम आया तो गार्जियन समझाते थे, लेकिन अच्छे नंबर आने पर घर में कभी मिठाई मिल जाती थी, कभी अठन्नी चवन्नी मिल जाते थे। आजकल के गार्जियन बच्चों के लिए परीक्षा फल के परिणाम के लिए कुछ ज्यादा संशय में रहते हैं। आजकल कंपटीशन कुछ ज्यादा टफ है, नए नए रोजी रोटी और पढ़ने के आयाम भी खुले हैं। अगर कुछ कम है तो कुछ दूसरे रास्ता भी ढूंढ लेंगे। उन्हें डराया जाता है कि अगर नंबर कम आएंगे तो अगली बार फिर उसी क्लास में दो बार पढ़ना पड़ेगा, जो कि बड़ा ही अपमानजनक शब्द होता था। पर भैया, हम तो इतना कोशिश कर देते कि अगले साल नए क्लास में ही जाए।
0: सही बात है। और एक और संदेश है, कहता है, परिणाम परीक्षा की बात चली तो बता दें कि जूनियर हाई स्कूल तक पिताजी के गाइडेंस में भी पढ़ता था। वे अपने जमाने में उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी पढ़ाते थे। आगे की पढ़ाई में उनका निर्देशन नहीं रहा तो पास भर होने का मार्क लाता रहा। बीए तक ये सिलसिला चला और

0: बाद में तो ये है कि हर हफ्ते फिल्में देखना, घूमने जाना, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी घर आ चुकी थी। हाँ, इधर हमारे दो नाती और अपने परीक्षा परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। इंटर में एक ने 93% लाए हैं और एक ने 87% मार्क्स लाए, फिर भी वे लोग देखिए संतुष्ट नहीं है। और अब हम किस बात से संतुष्ट होंगे?
1: एक गाना सुन के
0: चलो।

0: आज के हमारे श्रोताओं के जो जितने भी संदेश है खूब हंसाया हमें,
1: इतने हम खिलखिला के हंसे तो कुछ बार तो मेरी आंखें छलक गई हंसते हंसते।
0: हाँ बिल्कुल, मैं देख रही थी श्रोताओं, लेकिन वक्त देखिए शब्बा खैर कहने का आ गया है, तो आप सभी दीजिए इजाजत। आप सभी को दीपा माहेश्वरी और
1: सोनाली पाठक का
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: दोस्तों, सेलुलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवा रहे हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका कमल बारोट से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: दोस्तों, अगर हम वक्त का दामन थामकर अतीत में लौटें, तो फिल्म संगीत की वादियों में गूंजने वाली एक जानी पहचानी सी मीठी और मधुर आवाज बरबस ही हमारा ध्यान खींच लेती है। कभी सेल्यूलॉइड के पर्दे के उस पार से, कभी स्टेज, कभी रेडियो और कभी टीवी के जरिए हवाओं पर सवार होकर ये आवाज आपको आवाज देने पहुंचती रही है। जी हाँ दोस्तों, हम जिक्र कर रहे हैं गायिका कमल बारोट का, जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम की मेहमान है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। कमल बारोट जी, बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: सुनने वालों को कमल बारोट का प्यार भरा नमस्कार।
1: वाह, आपकी आवाज में वाकई इतना प्यार घुला है, इतनी मिठास घुली है कि वो
2: आपकी जरा नवाजी है, आपका प्यार है।
1: लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं सच बोल रहा हूँ, ये दिल की आवाज है कि वो प्यार जो है पहुंच के हमारे सुनने वालों तक। अब कमल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी संगीत यात्रा जो है वो कब, कैसे और कहां से शुरू हुई?
2: देखिए, मेरा जन्म तो हुआ ईस्ट अफ्रीका में, टेंजानिया में, और बचपन से ही पिताजी को संगीत का, घर में संगीत का माहौल था, ऐसे समझ लीजिए। मेरी माताजी भी गाती थी, पिताजी दिलरुबा बजाते थे और घर में महफिल सजती थी। हालांकि क्लासिकल महफिल होती थी जहाँ से मैं भाग जाती थी, क्योंकि मुझे उस वक्त क्लासिकल म्यूज़िक से इतना, बहुत छोटी थी मैं, एक लगाव नहीं था। तो वो कहते हैं ना, वो माहौल तो बचपन से ही मिला था। और जब मैं कॉलेज के लिए हिंदुस्तान आई तो सोफिया कॉलेज में सब लड़कियों को पकड़ के मैं कहती थी मेरा गाना सुनो ज़बरदस्ती, क्योंकि सीखा नहीं था कुछ, सारे गमा का कुछ पता ही नहीं था। तो ऐसे गाती थी और उसमें से मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के लिए चली गई, लड़कियों ने मेरा फॉर्म भर के, और वो मैं कॉन्टेस्ट जीती और वहाँ से एक किस्म से ये यात्रा शुरू हुई।
1: अच्छा, तो यानी ये हम माने कि जैसे किसी को मंत्र दीक्षा दी जाती ना कान में हौले से
2: जी, जी।
1: तो वैसे ही संगीत की पहली जो दीक्षा थी मंत्रों की, वो तो आपको घर में ही मिली।
2: घर में ही मिली, बिल्कुल सही।
1: लेकिन बाद में उसका जो सफर है थोड़ा सा और आगे जा करके शुरू हुआ। अच्छा, लेकिन कहते हैं कि यदि संगीत के क्षेत्र में आपको गुरु मिल जाए तो आपकी ये जो यात्रा है या जो भी विद्या आप सीखना चाहते हैं उसमें और अच्छाइयाँ आ जाती हैं, तो संगीत में आपके भी कोई गुरु रहे?
2: जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब थोड़ा सा रेडियो पे मेरा गाना बजा और कहते ना पता चला कि ये कॉन्टेस्ट जीती है, तो बहुत जगह से लोगों ने बुलाना शुरू किया और कहते ना पब्लिक आई में एक किस्म से आना। तो कल्याण जी आनंद जी हमारे फैमिली फ्रेंड थे और उनका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कल्याण जी आनंद जी नाइट, और इतना बड़ा ये प्रोग्राम हुआ था कि रंग भवन में ये प्रोग्राम हुआ था, तो मेट्रो तक, कहते हैं ना गाड़ियों की, लोगों की उस ज़माने में क्यू थी। उस प्रोग्राम में मुझे मुकेश जी के साथ गाने का मौका मिल गया।
1: अच्छा,
2: और लता जी भी वहाँ थी और उन्होंने ये कार्यक्रम सुना और बाद में उन्होंने कहा कि सेवा सदन करके उनकी जो स्कूल थी उनके लिए उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में इनवाइट किया, एंड आई वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ लता मंगेशकर। मैं दीदी को इतना चाहती थी कि जब भी मैं आती थी तो उनको मिलने जाती थी। और एक बार ऐसे ही संडे में उनके घर चली गई, तो वो तो जा रही थी कोल्हापुर और कल्याण जी भी आ गए डेट लेने के लिए, और तो उन्होंने कहा कमल जी को तो सुना है मैंने, इससे गवा लो, ये ड्यूएट गाना है। आप यकीन माने वहाँ से मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक हॉल पे गई और वहाँ आनंद जी भाई ने मस्ती मजाक में मुझे एक गाना सिखा दिया। दूसरे दिन पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग भी हो गई, रिकॉर्ड भी हो गया, फिल्म थी ओ तेरा क्या कहना, और गाने के बोल थे दिल लेके जाते हो कहाँ।
1: वाह वाह वाह भाई, ऐसा
2: कहाँ से कहाँ ये बात, देखिए
1: आपने जो गाना गाया है दिल लेके जाते हो कहाँ। लेकिन ये एक चीज है कि जब जब इस गाने को हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना वाकई दिल लेके कहीं जा रहा है, तो क्यों ना हम ये गाना।
2: ये तो आप सब लोगों का प्यार है, लेकिन मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ये गाना इतना पॉपुलर होगा। और यहाँ से

0: एक कसम से फिल्म यात्रा शुरू हुई।
1: ठीक है, हम आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो गाना है आपका, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी सदाबहार है, इसके जरिए हम क्यों ना एक बार फिर से अपने सुनने वालों के दिलों को छुएं और उन पर दस्तक दें।
0: सुनाइए।
2: दिल लेके जाते हो कहां, हम तो खड़े हैं यहां।

0: तो कमल बारोट जी, इस तरह से आपके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई
1: जी।
0: लेकिन चूंकि वो पहला गाना था आपका और बड़े संयोग से और अचानक ही आपको वो गाना मिल गया था, तो पहला गाना और पहली सफलता हर आदमी की जिंदगी में बहुत अहम होती है। कैसा आप महसूस कर रही थी और आपको आपके जो सहयोगी कलाकार थे, संगीतकार थे, उन सबका सहयोग कैसा मिला?
1: देखिए, उस जमाने की बात मैं आपको बताऊं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ये जो सिंगर्स थे, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स, ऐसा लगता था जैसे एक बड़ी हैप्पी फैमिली है
0: जी।
1: मैं आप बताऊँ, मेरा दूसरा गाना लता जी के साथ ही हुआ और म्यूजिक डायरेक्टर वही थे कल्याण जी आनंद जी। तो जब मैं रिकॉर्डिंग के दिन मैं गई वहाँ, तो जाहिर है कि मैं बहुत ही नर्वस थी, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी गायिका के साथ उसी
0: लेवल
1: पे बैठ के गाना। तो वो देख समझ गई, वैसे सहेली दीदी तो थी, सहेली भी थी, तो कहने लगी देखो कमल, जब मैं जब भी आज इतने सालों के बाद माइक्रोफोन फेस करती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मैं, मेरा ये आज इम्तिहान का दिन है और एवरी टाइम मैं गाना गाती हूँ तो वो एक इम्तिहान ही लगता है। तो सबके लिए एक ही बात, उन्होंने मेरा माइंड इतना एटीज कर दिया कि वो गाना भी ऐसे हो गया, अकेली मोहे छोड़ना जाना बराबर की लाइनें थी और म्यूजिक भी, म्यूजिक के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा, पॉपुलरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहा।

0: आपका हौसला बढ़ाया, आपको ढांढस बंधाया, इसमें घबराने की कोई बात नहीं।
1: जी, जी।
0: तो ऐसे और भी कलाकार होंगे, गायक गायिकाएं।
1: जी, अब आप रफी साहब को ले लो, कितने बड़े महान कलाकार थे। अब उनके साथ जब गाते थे तो वो भी वही अंदाज से पेश आते थे और माइंड इतना ईज कर लेते थे और माहौल ऐसा बना के रखते थे कि जैसे गाना रिकॉर्ड हो जाता। मैं अपने आप को बड़ी खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने तकरीबन सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ गाना गाया है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह ये पेश आए हैं।
0: कमल जी, आप जिस जमाने का जिक्र कर रही हैं,
1: जी,
0: कुछ देर के लिए हम भी उसी जमाने की तरफ जाना चाहते हैं। आज सब कुछ बदल चुका है। आप जिस जमाने में पार्श्व गायन के क्षेत्र में सक्रिय थी, उस दौर को आप किस रूप में याद करती हैं?
1: एक ऐसा दौर था कि जो गान बनाने वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर थे वो भी जैसे कोई रिसर्च करते हैं ना, वो भी डेडिकेटेड म्यूजिक डायरेक्टर्स थे और जो गाने वाले थे वो भी। अभी मेरा एक गाना हुआ था, फिल्म बरसात की रात का गाना था, म्यूजिक डायरेक्टर रोशन थे। आप यकीन माने इतने बड़े वो म्यूजिक डायरेक्टर मुझे रिहर्सल कराने आते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, वो एक दिन नहीं आए, वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन आए, क्योंकि कह रहे थे ये राग पर आधारित है गाना और कमल को कुछ छोटी सी ताने भी कहलवानी है, क्योंकि मेरा कोई क्लासिकल म्यूजिक का कोई बैकग्राउंड नहीं था। तो इतनी दिलचस्पी, आप बताइए आज कैसे कौन ले सकता है, समय की का कितना अभाव है कि आज तो गाने मैंने सुना ऐसे बनते हैं कि बहुत
0: इंस्टेंट फूड की तरह
1: बनते हैं। तो वो गानों में बात भी फिर ऐसी आती थी क्योंकि माहौल ही ऐसा था।
0: जी, इतना पेशेंस थे लोग और उसमें और बारीक से बारीक काम जितना तराश सके।
1: इंग्लिश में कहते हैं ना, पेस भी थोड़ा स्लो था, जिंदगी का पेस मजा था एक, यू नो, जिंदगी का कहते हैं ना, हर चीज में डिस्कशन वो लेवल पे, रिहर्सल हम लोग पहले रिहर्सल करते थे, फिर रिहर्सल म्यूजिक हॉल में रिहर्सल हुआ करती थी, फिर स्टूडियो में जाते थे, फिर वहाँ म्यूजिशियन के साथ पूरा गाना खड़ा रह के गाना।
0: रिहर्सल फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है।
1: जी जी।
0: तो उस जमाने में आप लोग कितने घंटे रिहर्सल किया करते थे, कितने दिन तक? हालांकि आपने थोड़ा सा इसका संकेत दिया है, एक गाने के बारे में बताया है।
1: जी, कोई गाने ऐसे होते थे जैसे अभी मैंने बताया वैसे, तो उसमें मैंने सुना है लता दीदी भी रिहर्सल के लिए जाया करती थी, जैसे हमारे एक म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे सज्जाद करके, वो बहुत कड़क माने जाते थे और उनको बड़े बड़े सिंगरों को, मंझे हुए आर्टिस्ट को भी जब रिहर्सल की ज़रूरत पड़ती थी, तो मैं तो एकदम नई थी, मैं तो चाहती थी कि मुझे रिहर्सल कराएं और रिहर्सल होता था, बाकायदा होता था।
0: तो चलिए इसी बात पर एक, अब हम रिहर्सल रूम से बाहर आते हैं और एक आपकी पसंद का और गाना सुनते हैं। आप बताइए कौन सा गाना सुनवा रहे हैं?
1: अभी आप सुनिए फिल्म घराना का गाना सुनिए, दादी अम्मा मान जाओ।

0: दादी अम्मा दादी अम्मा मान जाओ। भाई कमल जी, आपने इस बहाने इस गीत के जरिए दादी अम्मा को मनाने का एक सूत्र जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ में पकड़ा दिया कि अगर दादी माँ रूठी है तो ये
1: कैसे
0: गाना
1: मनाया जाए उनको, है कि नहीं?
0: इस गाने से जुड़ा कोई रोचक वाक्या हो तो बताइए।
1: नहीं, क्या हुआ, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ तो आपको जैसे मैंने बताया, आशा मेरी बहुत अच्छी सहेली है, रिहर्सल के लिए साथ में गई थी, तो मैंने ऐसे मजेदार एक वाक्या सुनाती हूँ। मैंने कहा देख, मुझे मंडी जाना है, अपना अहमदाबाद में एक कॉलेज फंक्शन है, तो कहती है तेरे साथ कौन चल रहा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं। तो मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ, मेरे साथ शायद कोई फैमिली मेंबर चलेगा, मैं चलूँ? मैं कहा तू कैसे चल सकती है, तू तो इतनी मशहूर सिंगर है, तुझे सब पहचानेंगे। कहने लगे नहीं चलते, मजा आएगा, मैं कोकिला बहन बन के आऊंगी। यकीन मानो मेरे साथ आई, उस जब इतनी बड़ी कॉलेज में फंक्शन में मैं गा रही हूँ, मेरी किताबें लेके बैठी हैं, अब बोली आज कैसे, ये माहौल कैसा था, है कि नहीं मजेदार? और किसी ने पहचाना भी नहीं, वो ऐसे चुपचाप बैठी रही, मुझे हंसी भी आए और मुझे बोलती रहती चुप बोलो मत। तो उतने में गुजरात के बड़े मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर अविनाश व्यास आए और उन्होंने देख के बोले आशा तुम यहाँ? फॉरन प्रिंसिपल कॉलेज स्टूडेंट सबको पता लग गया आशा भोसले बैठी है, बड़ा मजा आया। लेकिन ये आजकल मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है।
0: और आपकी ये दोस्ती
1: अभी भी कायम है?
0: अच्छा।
1: जी हाँ।
0: तो अब जब आप आती हैं तो मिलती हैं अपने पुराने दोस्तों से, जो मतलब जो भी आपके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे वही ग्रुप है बस जिसके साथ ये यात्रा शुरू की थी, बिल्कुल अभी तक वही फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुश्किल से जिंदगी में अच्छी कहते हैं ना मित्रता मिलती है।
0: कमल जी, मैं समझता हूँ कि मातृभाषा तो आपकी गुजराती
1: है। जी।
0: लेकिन अभी तक जो हम बात कर रहे हैं वो हिंदी गानों की बात हो रही है, तो हिंदी से हटकर भी आपने दूसरी भाषाओं की फिल्मों के लिए गीत गाए?
1: जी, मैंने गुजराती फिल्म के लिए गाना गाया, फिर अपना भोजपुरी, पंजाबी, और गुजराती फिल्म के लिए तो मुझे गुजरात गवर्नमेंट का 2 साल के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स का अवार्ड मिला।
0: अच्छा।
1: जी हाँ। फिल्म बनी थी लीलूड़ी धरती, फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन गुजराती, जिसका म्यूजिक पुरुषोत्तम उपाध्याय ने दिया था, और उसका एक गाना था मारू नाम पाड़ियों छे संतूरंगीली। अब ये गाना जब बजता था तो कहते हैं लोग कॉइन फेंकते थे, इतना मशहूर हुआ था ये गाना।
0: लेकिन एक चीज है, आपने तो हमारी प्यास जगा दी और अधूरी दी, आपने सिर्फ एक लाइन गुनगुनाई है। अच्छा, वैसे बहुत अच्छा लगा,
1: अच्छा लगा?
0: और बहुत देखिए ऐसा है कि मीठी और मधुर आवाज वो कहीं भी गूंजे वो गानों में
1: दस शुक्रिया
0: हमेशा खुलेगी। कमल जी, ऐसा कहते हैं कि गीतकार के शब्द, संगीतकार की अच्छी धुन, गायक गायिका की आवाज जो है एक गीत को अच्छा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती है, आप इस बारे में क्या कहेंगी?
1: नहीं, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि क्या होता है कि जब सिचुएशन के मुताबिक कवि लिखता है तो म्यूजिक डायरेक्टर उसको सोच समझ के कि भाई ये शब्द कैसे हैं, अगर उसमें पैथोस हैं तो ऐसे रागों का इस्तेमाल होता है जो उन चीज़ों को उभार के ला सके, और जब फिर वो गाना बन जाता है तो वो कलाकार के सामने रखा जाता है, फीमेल प्लेबैक सिंगर के सामने या मेल प्लेबैक सिंगर के सामने, और वो फिर समझ के इसको अपनी

0: एक ऐसी अनोखी अदा से गाता है कि वो जिस अंदाज से गाना लिखा गया है उसका मकसद पूरा होता है और ये आना चाहिए, तभी आके गाने की सफलता हो सकती है।
1: तो जब आपने गायन के क्षेत्र में कदम रखा, रियाज कितने घंटे किया करती?
0: अच्छा, शुरू में क्या हुआ था कि मेरा कोई रियाज नहीं था, मेरी एक रो आवाज़ थी और शायद वो क्वालिटी की क्लियर कट आवाज़ है, एकदम सीधी सादी आवाज़ है, उसमें कोई वो बात नहीं थी। तो मुझे कहा गया कि आप अभी उसमें कुछ गुरु से शिक्षा लो। तो मेरे पहले गुरु थे अब्दुल रहमान खान साहब, उनसे थोड़े दिन सीखने के बाद पंडित लक्ष्मण प्रसाद जयपुर वाले आए, उन्होंने कण मुरक का एक अभ्यास कराया कि जो आवाज़ कैसे मुलायम होती है, उसमें लोच कैसे आती है, ये सारी बातें बताई। उसके बाद आए ताज अहमद खान साहब, जो कि गज़लों के बड़े माहिर थे, और कल्याण जीवे का कहना ऐसा था वो मेरे रियाज में बहुत दिलचस्पी लेते थे क्योंकि उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था फिल्म लाइन में। तो वो कहते थे कि हमें क्लासिकल सिंगर पूरा नहीं बनना है तो इस टाइप की सिंगिंग के लिए एक ख़ास रियाज चाहिए। तो कभी कभी मेरे रियाज में आके वो बैठते थे। तो ताज अहमद खान साहब ने मुझे वो बात सिखाई और इन ये सब, और उसके बाद एक गुरु आए थे, उन्होंने भी बहुत मेहनत की मेरे पे, खान साहब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। तो इन सब के आशीर्वाद से जो कुछ पाया हमने वो आपके सामने हाजिर है। मेरा एक गाना ऐसे आया था कि मैं शाम को गेस्ट्स को एंटरटेन कर रही थी और एन दत्ता साहब का मैसेंजर आ गया कि भाई आप रात को 7 बजे गाना होने वाला है फिल्म बादशाह का। गाना भी बहुत अच्छा था, आशा जी गाने वाली थी।
1: अच्छा।
0: वो भी जानती हैं, उनकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी तो गाना तो उनको दूसरे दिन पिक्चराइज करना था। तो क्या है कि ऐसा है कि जैसे एग्जाम के लिए आप हर वक्त तैयार रहो, हाँ, वो मूड भी बना लो, वो आवाज़ भी अच्छी रखो, वो म्यूज़िक डायरेक्टर के गाइडलाइन में आप गाओ, और ये सब बातों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता था। वो गाना हुआ, आज हमको हंसाए ना कोई, आज रोने को जी चाहता है। और ये गाना मैं यहाँ इसका स्पेशल जिक्र करूँगी कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हो गई थी तो आपका ये रेडियो स्टेशन जब कुछ मॉर्निंग पीरियड के बाद गाने बजाता है ना, तो इस गाने से उन्होंने शुरुआत की थी।
1: अब मैं एक सवाल, हालांकि पहले सोचा कि पूछूं ना पूछूं आपसे, लेकिन लग रहा है कि पूछ ही लेना चाहिए वो ये कि एक गाने की रिकॉर्डिंग के बाद एक गाने के लिए आपको, मतलब कलाकार को कितने पैसे मिल जाया करते थे?
0: मुझे 300 रुपये मिलते थे उस जमाने में, जब लता जी को 500 या 600 मिलते थे तो हमको आधे मिलते थे और बड़ी खुशी से हम ले लेते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है, अब ये आपको ताज्जुब होगा कि गाना हो गया, एक मेरा और आशा का ड्यूट था और मैंने ड्यूट्स ज़्यादा गाए हैं, तो हम लोग बाहर आ गए, पैसे वैसे कुछ नहीं लिए, तो बेचारे वो प्रोड्यूसर भागे भागे आए, दोनों के हाथ में एक एक लिफाफा दे दिया और कहा कि कुछ नहीं है आपका, बस कहते ना पेट्रोल मनी है ना, हम उससे हमें कोई खेद होता था ना खुशी इतनी कि भाई हमको क्यों कम पैसे दिए गए। आई थिंक पैसों का इतना उस जमाने में नहीं, अहमियत इतनी नहीं थी बनिस्बत के गाना अच्छा मिले।
1: ये एक जो सेटिस्फेक्शन, जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की जिसकी हम बात करें, मैं समझता हूँ कि हर कलाकार में आप ही क्या सभी के मन में इस किस्म की चीज हुआ करती थी। तो आपने अंदाजन कितने गीत गाए होंगे?
0: मैंने तकरीबन 300 फिल्मों में गाने गए हैं।
1: अच्छा
0: जी।
1: और मेजर ब्रेक जिस फिल्म के हिसाब से आपको मिला वो कौन सी थी?
0: सबसे पहले तो मेरे ख्याल में मेरा पारसमणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा बड़ा, कहते ना, टॉप पे रहा काफ़ी दिनों तक। और यहीं नहीं, जहाँ भी मैं गई मुझे इस गाने से लोगों ने बड़ा पहचाना। जैसे लंदन गई मैं, हॉलैंड गई, ईस्ट अफ्रीका गई मैं, जिम्बाब्वे गई, तो कहते थे आपका ये गाना तो रेडियो स्टेशन से हमेशा बजता है।
1: और चूंकि आपने कहा है कि आपने डुएट बहुत ज्यादा गाए हैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है और रेडियो से भी बजता है, तो आज एक बार फिर से क्यों ना रेडियो से
0: जरूर सुनाइए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब, उन्होंने भी बहुत लंबी पारी खेली है और आज भी उनकी पारी चल रही है। उनके साथ आपने कितनी फिल्में अंदाजन की होंगी?
1: उनके साथ भी मैंने काफी गाने गाए हैं और पारसमणि का गाना है उसके बारे में ये कहूँ कि फिल्म भी म्यूजिक की वजह से इतनी सुपर हिट रही कि लक्ष्मी भाई ने अपने बंगलों का नाम भी पारसमणि रखा है।
0: तो देखिए, उस जमाने का तो ये था कि टीवी उतना पॉपुलर हुआ नहीं था, लोग फिल्मों से जब फिल्में देखते थे तब गाने देख लिया करते थे और सुन लिया
1: बाद
0: करते
1: में रेडियो
0: थे।
1: पे सुनते थे,
0: बाद में रेडियो पे सुना करते थे। तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे, फिल्म म्यूजिक को पॉपुलर करने में, लोकप्रिय बनाने में रेडियो का कितना हाथ रहा?
1: बहुत बड़ा हाथ, मैं कहती हूँ बहुत बड़ा हाथ। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं इतनी खुशकिस्मत थी कि रेडियो के ज़रिए मुझे लोगों ने मुझे एक इंस्टेंट पहचान मिल गई। कैसे? जब मैंने ये आपको शुरू में जिक्र किया कि मैं साइगल मेमोरियल कॉन्टेस्ट के द्वारा आई, तो एक प्रोग्राम हुआ करता था फुलवारी करके, अपने पड़ोसी देश का रेडियो था वो, और उस प्रोग्राम में मुझे सुधा मल्होत्रा को और महेंद्र कपूर को बाल गोविंद श्रीवास्तव जी वो किया करते थे प्रोग्राम, और उसमें हमें बुला के उन्होंने काफ़ी गवाया और हमारा नाम, कहते हैं ना, रेडियो के ज़रिए बहुत ही मशहूर हो गया। फिल्मों का तो प्रवेश बाद में हुआ, बट पहले रेडियो ने हमें ये पॉपुलैरिटी दी। हाँ, तो रेडियो तो हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है।
0: आप वाकई गायिका बनना चाहती थी या कुछ और?
1: एक्सीडेंटली हो गई। नहीं, गाने का शौक था, लेकिन मैंने पहले जैसे बताया कि अगर मैं गायिका बनना चाहती तो मैं पूरी तैयारी करके आती, लेकिन मैंने ना, तो मेरे पास कोई क्लासिकल तालीम थी, कुछ ऐसा नहीं था। और जब छोटे होते हैं तो इंसान के ड्रीम्स होते हैं, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर्स बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मेरी ज़िंदगी में शायद गायिका बनना था और हिंदुस्तान के लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मैं बन गई और बहुत ढेर सारा प्यार मिला।
0: पछतावा तो नहीं होता?
1: बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं।
0: और अगर दोबारा आपको जन्म लेने का मौका मिल जाए, क्या बनना चाहेंगे आप?
1: अब तो मैं पूरी तरह से कहूंगी कि मैं पार्श्व गायिका या गायिका बनूंगी।
0: अच्छा, आज जबकि सक्रिय पार्श्व गायन से, प्लेबैक सिंगिंग से आप करीब करीब संन्यास ले चुके हैं
1: जी,
0: तो मैं ये जानना चाहूंगा कि संगीत से अब किस रूप में आप जुड़ी हैं, क्या कर रही हैं इन दिनों?
1: जी, मैं बैठ तो

नहीं सकती। जरूर, मेरे मुझे स्टेज से बड़ा लगाव है। मेरी जिंदगी की शुरुआत स्टेज से हुई, फिर अपना रेडियो आया, फिर फिल्में आई। मेरी एक कंपनी है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और उसके तहत मैंने मराठी सीरियल्स बनाई हैं। पहले मैंने लाइफ मेंबर बनाई, चिरंजीव बनाई, और उसके बाद हद्दपार, और उसमें सब में मैंने थॉट प्रोवोकिंग सब्जेक्ट्स लिए हैं, और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है। और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध,

0: सब्जेक्ट्स लिए हैं और सबको, तीसरी वाली को तो यहाँ के गवर्नमेंट ने बेस्ट श्रेष्ठ सीरियल का अवार्ड दिया है और आजकल मैं बना रही हूँ नई जावाई शोध।
1: वाह, तो कैसा काम चल रहा है ये?
0: अच्छा चल रहा है, अब भी मैंने पायलट सबमिट किया है और अच्छी कहानी है।
1: लेकिन ये संगीत का मामला एकदम अलग है और ये एकदम अलग, इस फील्ड में मजा आ रहा है?
0: हाँ, आपको बताऊँ, मेरा जो भाई है ना वो डायरेक्टर है, चंद्रा बारू, जिन्होंने डॉन बनाई थी, और वो आजकल जब भी मैं बाहर से आती हूँ तो कहता है कि दीदी आप अपने पुराने गानों का आजकल कुछ रीमिक्स ऐसा कुछ करते हैं, अभी तक मैंने उस पर बड़ा ध्यान नहीं दिया है। कि एक गाना मेरा HMV का बहुत ही मशहूर हुआ था, हम तुम्हें तो कभी ना भूलेंगे, और इसकी भी एक मजेदार कहानी है। जब ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो किशोर देसाई ने इसको स्वरबद्ध किया है, हसरत जयपुरी ने लिखा है, और इस गाने में आजकल जो मशहूर जो संतूर बजाते हैं ना, शिव कुमार शर्मा, वो नए नए आए थे कश्मीर से ये इंस्ट्रूमेंट लेके, तो इन्होंने संतूर बजाया है, राम नारायण जी ने सरंगी बजाई है, और मेरी रिकॉर्डिंग के टाइम पे श्री रामचंद्र जी भी आए थे, और ये गाना भी लोगों ने बहुत पसंद किया। सुनिए।

0: कमल बारोड़ जी, पूरी दुनिया में फिल्में बनती हैं
1: जी,
0: आप तो पूरी दुनिया घूम चुकी
1: जी
0: हैं। और फिल्मों में गीत संगीत एक बहुत ही अहम पक्ष होता है, लेकिन हमारी भारतीय फिल्में जो हैं वो जरा अलग हटकर के हैं, उनकी क्या खासियत है?
1: देखिए, हमारा जो देश है ना, मैं ऐसे देखती हूँ कि बहुत रिच है कल्चर में, हेरिटेज में। फोकलोर हमारा ले लो, हमारी संस्कृति ले लो, हमारी भाषाएं ले लो अलग अलग प्रांत की। और आप अगर संगीत देखो डिफरेंट डिफरेंट जगह का, गुजरात का ले लो, साउथ का ले लो, आप नॉर्थ, इवन कश्मीरी म्यूज़िक में एक बात है हर जगह की। तो मैं समझती हूँ हमारा संगीत बहुत रिच है, और इसी वजह से मैं जहाँ भी जाती हूँ हमारा संगीत सब जगह सुना जाता है। कुछ तो कशिश है उसमें। मेरा एक ऐसा एक इंसिडेंट आया लाइफ में कि मैं 60s में, मैंने जैसे कहते हैं ना गोपी कृष्णा और सितारा दीदी को प्रेजेंट किया अफ्रीका में, 70s में मैं पाकिस्तान जाके मेहदी साहब को यहाँ ले आई। और उस ज़माने में इतना हंगामा बॉम्बे में हुआ, तो जो भी अभी जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया था कि सब गज़ल सुनते थे और मेहदी साहब के दीवाने थे। पहला शो हमने लता जी के हाथ से ओपन कराया था, दूसरा शो हमने राज कपूर साहब और नौशाद साहब के हाथ से कराया था। और मैं ये कोई कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान में ऐसा गज़लों का एक दौर शुरू हुआ कि बहुत सारे नाम उभर आए और अभी तक वो दौर चला।
0: कम से कम एक अच्छी शुरुआत जो भी करता है और उसका कोई अनुसरण करता है तो
1: अच्छी बात है ना। और मुझे, मैं इतनी खुशकिस्मत रही कि इस दौरान जब मैं लाहौर गई तो वहाँ के ये मायने मेरे चार गाने किए, और मुझे मशहूर शायर का कलाम गाने का मौका मिला, जैसे फैज़ अहमद फैज़, नदीम कासमी, अली रज़ा और अहमद फराज। यहाँ मैं चाहूँगी कि ये मेरे पति देव का भी बड़ा पसंदीदा गाना है, आप ज़रूर सुनवाइए। फैज़ अहमद फैज़ की ये रचना, और बोल हैं आज यूं मौज दर मौज,

0: कमल बारोड़ जी, आपने बहुत सारे गीतकारों की रचनाएं गाई हैं, लेकिन किस गीतकार से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: इंदिवर जी से। इंदिवर जी बहुत ही अच्छा लिखते थे और फिल्मों के लिए तो लिखते ही थे, लेकिन जब हम ऐसे प्राइवेट महफिल में बैठते थे या कहीं कहीं डिनर में मिलते थे तो हम इंदिवर जी को कहते थे, आप फिल्मी कविताएं सब छोड़ो, ये गाने छोड़ो, आप अपनी जो खास चीज़ें आपने लिखी जो छुपा के रखी हैं वो कविराज निकालिए और हमें सुनाइए। और वो आप तज्जुब करेंगे, ऐसे ऐसे ही रचनाएं हमें सुनाते थे कि हमारी तो शाम बन जाती थी। बहुत अच्छा लिखते थे और बहुत पढ़ते थे, उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इतनी सारी किताबें रखी हैं, तो फिल्मी गीत तो बहुत सहजता से अच्छे बोल लाके वो जो कहना सिचुएशन कहना चाहती थी वो कह पाते थे, लेकिन उनके प्राइवेट कलेक्शन में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं।
0: मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या खाली वक्त में, भाई संगीत का तो आनंद आदमी कभी भी ले सकता है, खाली वक्त में जब आपको मौका मिलता है तब आप किस तरह का संगीत सुनना पसंद करती हैं?
1: मुझे थोड़ा क्लासिकल बेस वाला संगीत हमेशा पसंद है और इसीलिए मैं गज़लों को ज़्यादा सुनती हूँ। अच्छा, गीतनुमा गज़लें लाइट सुनने के लिए ठीक रहती हैं, लेकिन जिसको गज़ल कहा जाए उसमें जब तक कुछ मुश्किलात थोड़ी बातें ऐसी ना हो, बोलों की भी सुन

0: करता हो, रागों का भी उसमें जो ढलना प्रॉपर हो, तो वो मैं घंटों सुन सकती हूँ। वो मुझे बहुत आनंद देता है।
1: ये बात तो सही है कि अच्छा संगीत इंसान घंटों सुन सकता है और
0: बिल्कुल
1: तृप्ति नहीं होती,
0: बिल्कुल
1: और इसीलिए अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पसंद का एक और बढ़िया सा गीत आप हमारे सुनने वालों की नजर करें।
0: आनंद जी भाई ने मेरे लिए चार खास गाने कंपोज किए थे, इंदिवर जी ने लिखे थे, और उसमें से एक गाना सुनाना चाहूंगी, प्यार भरा दिल तोड़ गए।

0: कमल बारूड जी, आपने बहुत सारे संगीतकारों के निर्देशन में गीत गाए हैं, तो कोई रोचक संस्मरण आपको याद आता है?
1: कभी कभी हम 3-4 गाने भी दिन में रिकॉर्ड करते थे। मेरी भी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैं भी इतनी, मतलब लोग कहते हैं हमने 7 गाने गाए, 10 गाने गाए, लेकिन मैंने एक बार 4 गाने गाए थे, तो 2 गाने एक तरफ था, फिर जब शाम को आके 2 गाने यहाँ किए, और एक गाना ऐसा था जिसमें हम लता जी, रफ़ी साहब थे, मुकेश जी थे, और मैं, फिल्म थी मैं शादी करने चला, अपने म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो गाने का माहौल इतना सुंदर हुआ था और इतने एक ही साथ सब सिंगर्स के साथ, मैं कभी भूल नहीं सकती वो। और मुकेश जी का तो ऐसा था, मुझे बहुत छेड़ते थे और मुझे कहते थे कि, अभी पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते थे कि हमारी इंडस्ट्री में कम खूबसूरत सिंगर्स हैं, उसमें से कमल जी है। मेरा चेहरा लाल हो जाता था और हमेशा छेड़ते रहते। बहुत अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे गायक थे उतने ही अच्छे वो इंसान थे।
0: शुरू में आपने जिक्र किया स्टेज का
1: जी,
0: के आपने बहुत सारे आर्टिस्ट, हालांकि बहुत नामी गिरामी आर्टिस्ट हैं, लेकिन स्टेज पर उनको इंट्रोड्यूस करने की एक परंपरा भी आपने शुरू की
1: जी।
0: तो ये सिलसिला अंदाजन कितने सालों से चल रहा है और क्या अभी भी आप?
1: 30-35 साल से चल रहा है भैया। मैं मॉरिशस गई थी तब, मैं कहते ना कि बहुत ही छोटी थी, लेकिन उस जमाने में हमने 60 शोज किए। और आज लोग जो मॉरिशस जाते हैं, विजिट करते हैं, उनको पता है कि इतना छोटा आईलैंड है, 40 माइल्स लॉन्ग आईलैंड है। उस जमाने में छोटे छोटे छोटी छोटी जगहों में जाके हमने शो किया था, लेकिन एक था कि नहीं इंडियन और क्लासिकल सब डांस और पाए का शो, ये नहीं कि ऐसे कुछ एंटरटेन करने के लिए शो बना दिया। बाकायदा 6-6 महीने शो की तैयारियां होती थी।
0: अच्छा।
1: आजकल का शो और उस जमाने का शो में ये फर्क है। आज क्या होता है कि आर्टिस्ट खुद स्टेज पे आके डांस करते हैं। उस जमाने में हीरोइन नहीं आती थी, तो हमें वो आर्टिस्ट स्टेज के पसंद करके रिहर्सल करा के, फिर उसी पॉपुलर गाने की रिहर्सल उन पे करा के वो गाने हम वहाँ पेश करते थे।
0: तो हम ये कह लें कि आप हमारे सांस्कृतिक दूध का काम बरसों से कर रही हैं। तो
1: बड़ी अच्छी बात कही आपने।
0: इंडियन म्यूजिक को, इंडियन आर्ट को,
1: फिल्म को, रही है।
0: तो अंदाजन कितने मुल्क आप घूम चुकी होंगी, कौन कौन से मेजर जो कंट्रीज हैं?
1: जी, मैं इंग्लैंड बहुत सारे शो हमने किए हैं, फिर हम हॉलैंड गए हैं, फिर हम जिम्बाब्वे गए हैं, ईस्ट अफ्रीका में हमने शो किए हैं, मॉरिशस में किए हैं, हिंदुस्तान में सब जगह किए हैं। तो ये तो चालू है, अभी भी बात चल रही है, शायद हम

0: अफ्रीका जाए कोई अच्छे कलाकार के साथ,
1: तो कैसे रिस्पांस रहता है लोगों का?
0: बहुत अच्छा रहता है। और वो जो स्टेज का जो एक ओवेशन है ना, मैंने आपको बताया कि मैं आशा जी को 78 में आरडी बर्मन और आशा जी को लेके गई थी, और उस जमाने में पहली बार हमने ये प्रयोग किया था मेरे पति देव ने कि हम लाइटिंग के साथ, उस वक्त नया नया था ये सब, आजकल तो कहाँ बात लेजर और सब पहुँच गई है। हमने इतना अच्छा शो बनाया था कि उस वक्त वहाँ पे हिंदुस्तान के जो फिल्मी इंडस्ट्री के नामी लोग हैं वो शूटिंग के लिए वहाँ आए हुए थे और सब शो में आए आशा जी का। और यश चोपड़ा ने मेरे पति देव को कहा था कि आपने तो पोएट्री खड़ी कर दी स्टेज पे। आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। तो ये एक नशा है, स्टेज का एक नशा है अच्छी चीज़ पेश करने का। और आरडी भी कह रहे थे कि इट्स हैपनिंग ऑन द स्टेज, यू नो।
1: कमल जी, अभी आपने अपने पति का जिक्र किया, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जीवन साथी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है जिंदगी में, और खास तौर से जब वो कलाकार हो तो वो ऐसे ही जीवन साथी चाहता है कि जो उसकी कला को समझे और उसको कदम कदम पर उस तरह का सपोर्ट करे कि वो जिस फील्ड में उसमें और आगे जा सके।
0: मैं बहुत लकी रही हूँ, उन्होंने हमेशा मेरी जो विश है उनको सराहा है, और इसीलिए मैं ज़्यादातर 6 महीना यहाँ 6 महीने वहाँ रहती हूँ। इसका यही कारण है कि वो कहते हैं कि तुम एक कलाकार हो और तुम ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह सकती हो। उन्होंने 15 साल तो मेरे साथ रहे कि हमने सारी ये कहते ना हमारी एक्टिविटीज़ रखी, और अभी भी वो कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी खुशी वहाँ मेरी खुशी।
1: अब ये मुझे बताइए कि संगीत तो आपका पहला शौक हो गया
0: जी,
1: उसके बाद में दूसरे शौक और कौन कौन से हैं?
0: बहुत सारे हैं, मैं पढ़ती बहुत हूँ। अच्छा। और बचपन में तो मुझे तैरने का बड़ा शौक था, और कुकिंग का इतना शौक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बना लेती हूँ मैं तो समझे ना आप। तो और कुछ बनाने का, कुछ कहते हैं ना क्रिएशन का शौक है, बस स्टेज पे करूँ मैं या स्मॉल स्क्रीन पे करूँ या खुद गाऊँ। अगर आवाज़ साथ नहीं देती है तो मैं फिर ऐसी प्रवृत्ति में रहती हूँ कि जहाँ मेरे मन को एक कहते हैं ना खाना मिले।
1: तो ये बताइए मुझे, आपने अपनी बातचीत में जिक्र किया बार बार ईस्ट अफ्रीका का
0: जी,
1: तो वहाँ कौन सी जगह जहाँ आपका बचपन बीता, क्या पैदाइश आपकी वहीं की है?
0: जी, मैं दार इस्लाम की रहने वाली हूँ, और आपको बताऊँ कि दार इस्लाम इतनी खूबसूरत जगह है कि लोग टहिटी बहामा छुट्टियों में जाते हैं ना, हमारी वहाँ का जो हमारा समुंदर है, नीला पानी, सफेद रेत, पाम ट्रीज, एक किस्म से स्वर्ग है वो, इतनी खूबसूरत जगह है।
1: कमल जी, फिल्मों में तो आपने गाया ही, लेकिन पार्श्व गायन से हट करके गैर फिल्मी रचनाएं भी गाई होंगी, उनके बारे में बताइए।
0: बहुत सारे गाने गाए हैं मैंने। पहले तो यहाँ मैं ये जिक्र करूँगी कि मेरा पहला LP म्यूज़िक इंडिया ने किया था, वो पुरुषोत्तम उपाध्याय ने बनाया था, और वो LP का नाम था झनकार। उसमें 8 रचनाएं थी। और दूसरा मैंने थोड़े कुछ 8 साल पहले एक एल्बम निकाला था आदाब, जो शेखर सेन ने म्यूज़िक दिया था, उसकी एक रचना आप सुनाइए। और बोल हैं निगाहें नीची किए

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

जी हाँ दोस्तों, शाम के 5 बज चुके हैं। हम उपस्थित हैं युवा श्रोताओं के साथ कार्यक्रम युवाणी को लेकर के। अभी से लेकर के शाम के 5:40 तक हम आपके साथ बने रहेंगे दोस्तों इस कार्यक्रम में। और अन्य दिनों की भांति आज भी आप सुनेंगे कार्यक्रम के आरंभ में कुछ लोकगीत, और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे। आज आपके साथ चर्चा का विषय है प्रतियोगिता परीक्षाएं और कैरियर मार्गदर्शन। तो देर न करते हुए कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे दोस्तों वंदना सिन्हा के स्वर में ये लोकगीत। और देखिए ना दोस्तों, आज का चर्चा का विषय है प्रतियोगिता परीक्षाएं और कैरियर मार्गदर्शन। जी हाँ दोस्तों, प्रतियोगिता परीक्षाएं आपके उज्जवल कैरियर की आधारशिला होती है। सही लक्ष्य, परीक्षा पैटर्न की गहरी समझ, निरंतर अभ्यास और समय प्रबंधन के माध्यम से आप किसी भी क्षेत्र जैसे सरकारी नौकरी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मेडिकल

या और भी कोई दूसरा क्षेत्र जिसमें आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। आप चाहें अर्थात इन परीक्षाओं में प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग कैटेगरी होती है और जिसके माध्यम से हम अपना चयन करते हैं। जैसे हम कुछ परीक्षाएं 12वीं के बाद दे सकते हैं, तो कुछ परीक्षाएं ग्रेजुएशन के बाद, कुछ परीक्षाएं तो पीजी के बाद भी हम कर सकते हैं। साथ ही साथ केवल परीक्षाएं देने से नहीं, अपने मेहनत भी परीक्षा में रंग लाती है। यदि हमें इंजीनियरिंग की परीक्षा देनी हो तो 12वीं के बाद उसके फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। यहाँ तक कि जेई इत्यादि की जो परीक्षाएं हैं उसमें कम से कम 12वीं में 75% अंक होना अनिवार्य है, अन्यथा यदि 75 से कम होता है तो हम उस परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। समयानुसार इसमें परिवर्तन भी तो होते हैं, अर्थात नियम बदलते रहते हैं। तो जिस बार जैसा आदेश होता, फॉर्म भरने के जिस प्रकार के पैगाम आते, उस तरीके से हम उसे तैयार करते, फॉर्म को पूरा करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद कभी कभी किसी परीक्षाओं में ग्रेजुएशन में उसमें अंक निर्धारित कर दिए जाते हैं, अर्थात प्रथम श्रेणी का होना अनिवार्य है। किसी परीक्षा में तो 50% भी लगा दिए जाते हैं कि परीक्षा में 50% अंक जिनका होगा वही परीक्षा में बैठ सकते हैं। वैसे छात्र या छात्राएं परीक्षा में फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। और यदि हम बात करें सिविल सेवाओं की, चाहे वह राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय, या फिर SSC, CGL इत्यादि, या फिर बैंकिंग क्षेत्रों में भी, तो इन सभी क्षेत्रों में हमें ग्रेजुएशन के बाद ही मौका मिलता है कि हम इसमें फॉर्म को फिलअप करें। अस्तु दोस्तों, कार्यक्रम में पुनः हम फिर आगे आपसे बातचीत करेंगे। तब तक आपको सुनवाते हैं अरविंद कुमार झा एवं ओम प्रकाश सिंह के स्वर में ये लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कुंज विहारी मिश्र के स्वर में ये लोकगीत। अब सुनिए दिवाकर सिंह के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे हेमकांत झा के स्वर में ये लोकगीत। और दोस्तों, हम आपसे चर्चा कर रहे थे प्रतियोगिता परीक्षाएं और कैरियर मार्गदर्शन के विषय में। प्रतियोगिता परीक्षाएं और कैरियर मार्गदर्शन एक दूसरे के पूरक हैं। सही मार्गदर्शन सही लक्ष्य का चुनाव करने में मदद करता है, जबकि प्रतियोगिता परीक्षाएं उस लक्ष्य तक पहुँचने का माध्यम होती है। सटीक रणनीति, निरंतर अभ्यास और सही समय पर सही परीक्षा का चयन सफलता की कुंजी है। सही करियर का चुनाव सफल होने के लिए सबसे पहला कदम अपने लिए सही करियर का विकल्प चुनना है। इसके लिए आप अपनी रुचि, कौशल और शिक्षा के स्तर का आकलन करें। करियर मार्गदर्शन विशेषज्ञ और एप्टीट्यूड टेस्ट भी इसमें आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाएं आयोजित की जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे सिविल सेवा परीक्षा, जो राज्य स्तरीय और भी चाहे वह स्टेट लेवल का हो या फिर कंबाइंड रूप से देश भर के लिए भी, जैसे UPSC या फिर स्टेट लेवल की PSC परीक्षाएं, बैंकिंग और वित्त सेवाएं जैसे IBPS, SBI, RBI इत्यादि। कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा केंद्र सरकार की विभिन्न नौकरियों के लिए SSC, CGL या CHSL इत्यादि परीक्षाएं आयोजित की जाती है, और उसमें हमारे युवा भाग लेकर अपना करियर का चुनाव करते हैं। इंजीनियरिंग और चिकित्सा के क्षेत्रों में

जेई और नीट जैसी प्रवेश परीक्षाएं हमें देने होते हैं और तत्पश्चात हम इंजीनियर बनते हैं या फिर चिकित्सक के रूप में हम सेवा प्रदान करते हैं। तैयारी के लिए बेहतरीन रणनीतियाँ, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ मूल मंत्रों का पालन करना आवश्यक होता है। सबसे अहम बात यह होती है इस समय कि सिलेबस अर्थात परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है और उसमें मुख्य रूप से उसका मुख्य बिंदु क्या है। जिस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम होता है उसी के अनुरूप हमें तैयारी करनी चाहिए, अन्यथा यदि हम उसके अनुरूप तैयारी नहीं करते हैं तो फिर सारी व्यवस्थाएं चौपट हो जाती है और हम अपने मनानुकूल परिणाम को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, परीक्षा के समय सबसे अहम बिंदु समय प्रबंधन का भी है, अर्थात जो हमारे प्रश्न पत्र हैं और साथ ही साथ उसमें जो समय दिए गए हैं उसका भी बखूबी से हमें ध्यान देना होता है। यदि हम इस प्रकार से नहीं करते हैं तो फिर हम जानते हुए भी प्रश्नों का उत्तर समय से नहीं करते और जिससे हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं करते हैं और हमारा चयन नहीं हो पाता है। अपनी गति और सटीकता में सुधार के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र का हल हमें अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ जितना हो सके हम रिवाइज करते रहें, रिवीजन करते रहें, यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अस्तु आज की चर्चा दोस्तों बस अब यहीं तक। दीजिए युवानी कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार।

अभी आप युवानी कार्यक्रम सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अब प्रस्तुत है कुछ नए फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनाते हैं फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं का यह गीत, जुबिन नौटियाल की आवाज में, संगीत निर्देशन एवं बोल अजय सिन्हा के हैं।

अभी आप सुन रहे थे अकेली फिल्म का यह गीत। गायक कलाकार थे रोमी, बोल थे मुकुंद भाले राव के और संगीत निर्देशन मेहुल व्यास का था। अब सुनिए ड्रीम गर्ल 2 का यह गीत। गायक कलाकार हैं मित ब्रोस, जोनीता गांधी, जुबिन नौटियाल, बोल हैं कुमार के और संगीत निर्देशन मित ब्रोस का है।

अभी आप सुन रहे थे फतेह फिल्म का यह गीत विशाल मिश्र आशीष कौर की आवाज़ में। बोल थे सबीर अहमद एवं अजय पाल शर्मा के और संगीत निर्देशन भी सबीर अहमद का था। अभी आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से कुछ नए फिल्म संगीत सुन रहे थे।

0: भोर होते उठ जाओ किएक तऽ इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबय वाला काल्हि लेल।
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप सँ सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतनि।
2: आ मनुख लेल तो बुझू अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं हैत तो खेती नहीं हैत, आ खेती जो नहीं हैत उपजा नहीं हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने ही वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड के प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टन फ्रस्टर आईटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री शिपेटेरी ओरपो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में हैं। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने

0: का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर मंडल अगले 5 वर्षों में देश का सबसे विकसित आदिवासी मंडल बनकर उभरेगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आय को 6 गुना बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सलवाद से मुक्त कराने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के विकास के लिए संयुक्त रूप से एक वैज्ञानिक रूपरेखा तैयार की है।
1: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनों मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के लंबित मामलों की संख्या 1 अप्रैल 2024 में लगभग 5,000 से घटकर इस वर्ष 31 मार्च तक 2,600 रह गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज आम आदमी पार्टी नेताओं अरविंद केजरीवाल और अन्य से न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने के मामले में आपराधिक अवमानना मामले में उनका पक्ष पूछा है। मनीष सिसोदिया, दुर्गेश पाठक, संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज से भी उनका पक्ष पूछा गया है। न्यायालय की पीठ ने इन नेताओं को मामले के संबंध में नोटिस जारी किया। उन्हें अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक गिरकर 23,618 पर आ गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। उधर जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। जानकारी प्राप्त कीजिए आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब से थोड़ी देर बाद 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीत। संध्या 6:30 पर आप सुनेंगे गाम घर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे चर्चा कौशल विकास योजना एवं इसके लाभ। संध्या 7 बजे आप सुनेंगे खेती गृहस्थी। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे इसी सभा में संध्या 7:52 पर तथा मैथिली कार्यक्रम सिंहहार रात्रि 8:15 पर प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविधा कार्यक्रम और 9:45 पर आप सुनेंगे देववाणी कार्यक्रम। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे एक फनकार कार्यक्रम और आज के हमारे फनकार होंगे अनुराधा पौडवाल। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे रात्रि 10:30 पर। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। अब जानकारी प्राप्त कीजिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

कल प्रातः 5:50 पर आप सुनेंगे चिंतन जो, जिसमें विषय होगा जो प्रश्न कहल जाए आलेख एवं वाचन।

सुरेंद्र झा का होगा। कृषि चर्चा 5:55 पर प्रसारित किए जाएंगे। चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। स्वास्थ्य चर्चा आप सुनेंगे 6:05 पर तथा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का आनंद लेंगे प्रातः 6:10 पर। रामचरित मानस गान 6:40 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा नमस्कार मिथिला आप सुनेंगे 7:05 पर। उर्दू प्रोग्राम अंजुमन का वक्त होगा दिन में 9:10 पर, जिसे हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे तथा 10:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 10:30 पर आप सुनेंगे लोकगीत। शास्त्रीय संगीत आप सुनेंगे दिन के 11:00। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 30 आप सुनेंगे दिन में 11:30 पर तथा पुनः दोपहर 12:00 आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 12:30 पर बहनों के लिए हमारा कार्यक्रम होगा नारी संसार। देशभक्ति गीत दोपहर 1:10 पर प्रसारित किए जाएंगे तथा 1:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रोजगार सूचना आप सुनेंगे दोपहर 2:10 पर तथा 2:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। सुगम संगीत आप सुनते हैं दोपहर 3:00। संध्या 5:00 आप सुनेंगे युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युववाणी तथा विद्यापति गीत संध्या 6:10 पर प्रसारित किए जाएंगे। खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम 6:30 पर तथा श्रोताओं क्षमा करेंगे खेती गृहस्थी आप सुनेंगे संध्या 7:00 तथा गांव घर कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:30 पर। फिल्म संगीत का आप आनंद लेंगे संध्या 7:52 पर। मैथिली कार्यक्रम सिंहहार आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर आपको सुनवाएंगे तथा लोक माधुरी कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00 तथा गीतों के रंग कार्यक्रम 10:30 पर प्रसारित किए जाएंगे। अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विद्यापति गीत। कलाकार हैं राम कुमार मल्लिक।

0: अभी आप विद्यापति गीत सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दरभंगा आ एफएम रेनबो पटना सँ प्रस्तुत अछि संवाद। संवादक संग हम छी रजनीकांत चौधरी। प्रदेश में लोकसभक समस्याक शीघ्र समाधान लेल आइ सँ पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविरक आयोजन कयल गेल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सारण जिलाक डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित भऽ कऽ राज्यव्यापी अभियानक उद्घाटन कयलनि। श्री चौधरी कहलनि जे शिविर में प्राप्त शिकायतक समाधान बेसी सँ बेसी 30 दिनक भीतर सुनिश्चित कयल जाय। एहन नहि कयला पर संबंधित अधिकारी 31 दिन स्वतः निलंबित भऽ जायताह। सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनक निष्पादनक प्रगतिक निगरानी मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर सँ कयल जायत। ओ जनौलनि जे जनताक सुविधा लेल हेल्पलाइन नम्बर 1100 आ सहयोग पोर्टल सेहो क्रियाशील कऽ देल गेल अछि। सहयोग शिविरक आयोजन प्रत्येक मासक पहिल आ तेसर मंगल के कयल जायत। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी पटनाक दानापुर अनुमंडलक सरारी पंचायत मे सहयोग शिविरक उद्घाटन कयलनि। दरभंगा जिला में 24 स्थान पर सहयोग शिविरक आयोजन कयल गेल। जिलाक प्रभारी मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र सिंहवाड़ा प्रखंडक सिमरी पंचायत भवन सँ एकर शुभारंभ कयलनि। बेगूसराय में जिलाक प्रभारी सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव परौनी प्रखंडक भरत उच्च विद्यालय पिपरा देवस में सहयोग शिविरक उद्घाटन कयलनि। कटिहार में आयोजित सहयोग शिविर में 2975 शिकायतक निष्पादन कयल गेल। जिलाक प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी सदर प्रखंडक भवारा पंचायत में शिविरक उद्घाटन कयलनि। सुपौल में बिहार सरकारक योजना आ विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा सदर प्रखंडक पंचायत सरकार भवन घुरन में आयोजित सहयोग शिविरक भ्रमण कयलनि। आनो जिला में सेहो विभिन्न पंचायत में सहयोग शिविरक आयोजन कयल गेल। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ई फार्मेसी आ ऑनलाइन दवाई बिक्रीक विरुद्ध काल्हि देशभरि मे हड़तालक घोषणा कयने अछि। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघक अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह कहलनि जे 20 मई के प्रदेशक सभ दवाई दोकान बंद रहत। दवाई विक्रेता लोकनि ई

0: मेसी प्लेटफॉर्म पर अंकुश लगेबाक मांग कऽ रहल छथि। तेल विपणन कंपनी सभ पेट्रोल आ डीजलक मूल्य मे करीब 90 पाई प्रति लीटर वृद्धि कयलक अछि। राजधानी पटना मे आब पेट्रोलक मूल्य 110.02 रुपया प्रति लीटर आ डीजलक मूल्य 94.97 रुपया प्रति लीटर भऽ गेल अछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 25 मई के राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसाक पूर्व कुलपति डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी समेत बिहारक 3 विभूति के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करती। भोजपुरी लोक गायक भरत सिंह भारती के कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान लेल ई पुरस्कार भेटत। डोमकच नृत्य के मुख्य धारा में लेबाक लेल लोकप्रिय कलाकार विश्वबंधु के मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान देल जायत। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति DLED संयुक्त परीक्षाक तिथि घोषित कऽ देलक अछि। समिति द्वारा निर्गत कार्यक्रमक अनुसार 8 जून सँ 22 जून धरि परीक्षाक आयोजन होयत। ई परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड मे लेल जायत। प्रदेशक अधिकांश क्षेत्र में भीषण गर्मी की स्थिति बनल अछि। मौसम विभाग से प्राप्त जनतबक अनुसार आइ भभुआ आ रोहताश जिला में लू चलवा सँ जनजीवन प्रभावित भेल। गया जी राज्यक सबसे गर्म स्थान रहल, जतय अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कयल गेल। मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान में कहलक अछि जे प्रदेशक दक्षिण पश्चिम भाग में अगला किछु दिन धरि गर्मी से राहत भेटबाक उम्मीद नहि अछि। दोसर दिस चक्रवातीय परिसंचरणक क्षेत्र बनबाक कारण प्रदेशक उत्तरी भाग में मौसम में परिवर्तन हेबाक संभावना अछि। एहि क्रम में मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत प्रदेशक उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य आ उत्तर पूर्व भाग में अन्हर आ बरखा भऽ सकैत अछि। दरभंगा जिलाक पतौर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदनपट्टी गाम में एक व्यक्ति अपन पत्नी आ 3 बच्चा पर जानलेवा हमला कऽ देलक। एहि घटना में चारू के मृत्यु भऽ गेलनि, जखनकि आरोपी व्यक्ति स्वयं के सेहो घायल कऽ लेलक, जकरा पुलिस हिरासत में लऽ कऽ इलाज लेल अस्पताल में भर्ती करौलक अछि। मधुबनी में उत्पाद विभाग द्वारा 78 संवेदनशील स्थान पर छापामारी कऽ 5 शराब तस्कर समेत 11 गोटे के गिरफ्तार कयल गेल अछि। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा आ FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम गांव घर।

0: गाम घर कार्यक्रम सुननिहार सुधी श्रोता लोकन के विजय भाईक नमस्कार। श्रोतागण, आई गाम घर के दलान पर हमरा संग गोपी भाई बैसल छथि, तो नमस्कार गोपी भाई।
1: नमस्कार विजय भाई, संगे संग गाम घर के श्रोता लोकन के सेहो नमस्कार। आजुक दिन अहाँ के हम सब नव ऊर्जा कार्यक्रम सुनै छी, आ नव ऊर्जा कार्यक्रम जे होइए विजय भाई ओ युवा लोकन के लेल होइत अछि, तो नव ऊर्जा कार्यक्रम में युवा लोकन के हार्दिक स्वागत अछि। देखियो विजय भाई, अपन सबके जे देश अछि ओ युवा देश अछि, देशक 65% से बेसी आबादी युवा लोकन के छ, आ बुझबे करै छी कि युवा लोकन में अहाँके काज करे के जे ऊर्जा होइए, जे उत्साह होइए, ओ अहाँके बड़ महत्व राखैए जीवन के सर्वांगीण विकास में। अब आवश्यकता एहि गप के अछि कि हुनक ऊर्जा के, हुनक उत्साह के, हुनक चिंतन के, हुनक सोच के उचित दशा और दिशा देल जाय, आ एहि लेल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लागू कयल गेल अछि, जकर मुख्य उद्देश्य अछि कि युवा लोकन के मुफ्त में निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण देने, हुनका रोजगार के योग्य बनेने, ताकि ओ सुदृढ़ आ सशक्त मानव संसाधन बन सकत।

0: एकर अंतर्गत युवा के मनपसंद क्षेत्र में 3 महीना से 1 साल तक ट्रेनिंग दिल जाए थे। संगे संग कोर्स पूरा भेला पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट और आर्थिक सहायता सेहो दिल जाए थे।
1: बड़ नीक गप कहलिए गोपी भाई देखियो जे अखन देख रहल छी जे भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजना सब चलाओल जा रहल अछि, जाहि में से एकटा कौशल विकास योजना सेहो अछि। ई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा चलाओल जा रहल एकटा प्रमुख कौशल प्रमाणन योजना अछि आ एकर मुख्य उद्देश्य देश के युवा लोकन के उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान केनाइ अछि, जाहि सँ ओ नीक आजीविका कमा सकथि। आ ई योजना मुख्य रूप सँ ओहि युवा पर केन्द्रित अछि जे कम पढ़ लिखल छथि आ जे विद्यालय छोड़ि देने छथि।
0: आ देखियो आर्थिक सहायता सेहो देल जाइए, एहिमे कोर्स सफलतापूर्वक जब पूरा कऽ लै छी और मूल्यांकन पास केला के बाद सरकार के दिस से छात्र के लोकन के आर्थिक सहायता देल जाइत अछि। मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट सेहो भेटैए, प्रशिक्षण पूरा भेला के बाद एकटा सरकारी सर्टिफिकेट देल जाइए।

0: विकास योजना सेहो अछि। ई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार द्वारा चलाओल जा रहल एकटा प्रमुख कौशल प्रमाणन योजना अछि आ एकर मुख्य उद्देश्य देश के युवा लोकन के उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान केनाइ अछि, जाहि सँ ओ नीक आजीविका कमा सकथि। आ ई योजना मुख्य रूप सँ ओहि युवा पर केन्द्रित अछि जे कम पढ़ लिखल छथि आ जे विद्यालय छोड़ि देने छथि।
1: आ देखियौ, आर्थिक सहायता सेहो देल जाइए, एहिमे कोर्स सफलतापूर्वक जब पूरा कऽ लै छी आओर मूल्यांकन पास केलाके बाद सरकारके दिससँ छात्रके लोकनिके आर्थिक सहायता देल जाइत अछि। मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट सेहो भेटैए। प्रशिक्षण पूरा भेलाके बाद एकटा सरकारी सर्टिफिकेट देल जाइए जे देश विदेश आओर प्राइवेट कम्पनीमे नौकरी पाबैमे मददगार होइए। देखियौ विजय भाई, अहाँके जनसंख्या जे यऽ ओ अपने आपमे समस्या नहि अछि। जँ जनसंख्याके हम अहाँके शिक्षण आओर प्रशिक्षणसँ जोड़ि दै छी, हुनका शिक्षित करै छी, प्रशिक्षित करै छी, तऽ ओ एकटा पैघ मानवीय संसाधनके रूपमे उभरै छथि जे बेसीसँ बेसी उत्पादन कऽ कऽ अपन समाज अपन राष्ट्रके दैत छथि। समाजक आ राष्ट्रक विकासमे अहाँके ओ सर्वांगीण योगदान करै छथि। तऽ आवश्यकता एहि गपके अछि कि जे जनसंख्या अछि आ ओहूमे युवा जनसंख्या अछि, हुनका पास ऊर्जा तऽ अछि, उत्साह तऽ अछि, तऽ हुनका जे हम शिक्षित बढ़िआँसँ कऽ दै छी आओर तकनीकी रूपसँ प्रशिक्षित कऽ दै छी तऽ ओ अहाँके बेसीसँ बेसी उत्पादन कऽ कऽ देता। आ हमर सबके देश जे यऽ ओ विश्वमे अहाँके एकटा प्रोडक्शन हबके रूपमे, उत्पादन केन्द्रके रूपमे उभरत जे विश्वमे बेसीसँ बेसी अहाँके उत्पादन करत, निर्यात करत। आ निर्यात आधारित जे अर्थव्यवस्था होइए ओ अहाँके बेसी छै से ओहिसँ विदेशी मुद्रा हमसब कमाइ छी। आ विदेशी मुद्राके भण्डार जे देशमे रहत तऽ बुझि लिअ कि देश आर्थिक रूपसँ सशक्त रहत।
0: अवश्य कि नहि। देखियौ गोपी भाई, ई जे अपने गप कहलियै तऽ एहिमे जे छै युवा लोकनिके प्रशिक्षणके बाद प्लेसमेंट सहायता सेहो प्रदान कयल जाइत अछि जे युवा लोकनिके नौकरी पयबामे मदद करैत अछि।
1: अच्छा, रोजगार मेला लगै छै।
0: रोजगार मेला अहाँके आर्थिक प्रोत्साहन जे अछि ओ PMKVY 4.0 के तहत सफल उम्मीदवार के मौद्रिक पुरस्कार सेहो देल जाइत अछि। एहिमे छात्रवृत्ति सेहो प्रदान कयल जाइत अछि। आ विविध कौशल क्षेत्र भेल जेना IT, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा, रिटेल, प्लम्बिंग आ कंस्ट्रक्शन जेना 30 बेसी क्षेत्रमे एकर कोर्स उपलब्ध अछि।
1: आ जँ कोनो युवा लोकनि अपन स्वयंके खुदके व्यवसाय शुरू करय चाहैत छथि तो ओहि योजनाके अन्तर्गत बैंकसँ आसानीसँ अहाँके लोन भेट जाइए। आ नव युगके तकनीक जे अहाँके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जे यऽ AI आओर रोबोटिक्स आब योजनाके उन्नत चरणमे युवाके आजुक जे माँगके अनुसार AI, कोडिंग, रोबोटिक्स जेहन आधुनिक कौशल सेहो सिखाएल जाइए ताकि ओ बदलैत समयमे कोन विकासके दरमे पाछू नहि रहैत, ककरोसँ आगू रहैत।
0: देखियौ गोपी भाई, जे लोक पहिनहिसँ कोनो कार्यमे कुशल छथि ओ अपन कौशलक मूल्यांकन आ प्रमाणीकरण करबा सकै छथि। इच्छुक उम्मीदवार स्किल इंडिया डिजिटल हब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सेहो नजदीकी केंद्र खोलि कर रजिस्ट्रेशन करबा सकै छथि।
1: तऽ विजय भाई, आगू हमसब गपशप करब, मुदा ओहिसँ पहिने हम देख रहल छी कि अहाँके गीतनाद सुनैके।
0: देखियौ गोपी भाई, आइ मंगल दिन सेहो अइ, तऽ मंगल दिन बजरंग बली के दिन अछि, तऽ हमरा लोकनि सुनी बजरंग बली के ई गीत स्वर छन्न श्याम बिहारी राय के।
1: सुनल जाय।

0: हाँ एखन हमसब श्याम बिहारी राय के स्वर में गीत सुने छलहुँ अहाँ महावीर बलशाली छी। वास्तव में जे महावीर जी छथि ओ बलशाली तो छलथि संगे संग अपूर्व कर्मयोगी छला। वो कहे छलथि कि राम काजू किए बिना मुही कहाँ विश्राम, कि जाबत तक राम के काज संपन्न नहीं कर लेब ताबत तक कोनो प्रकार के विश्राम जे वो हमरा लेल हराम है। तो जे कर्मयोगी व्यक्ति होइया वो ताबत तक अहाँ के चलित रहिए जाबत तक लक्ष्यक प्राप्ति वो नहीं कर लें। आ ओनाही छे से अहाँ के युवा लोकन छथि, आजुक जे युवा है वो अर्जुन के तरह लक्ष्य के प्राप्ति लेल सघन जे एकाग्रता हेबाक चाहिए से वो रखित आ ओ लक्ष्य के प्राप्ति जाबत तक नहीं भऽ जाइए ताबत तक नहीं वो रुकैया नहीं वो थकैया। तब भारत के खेल महाशक्ति बनाबे में युवा लोकन के बड़ पैघ योगदान है, किया तो खेल में ऊर्जा उत्साह के जरूरत हो बुझलहुँ। आ लक्ष्य के प्रति संधान के भाव हेबाक चाहिए, लक्ष्य के प्राप्ति लेल अहाँ के गहन एकाग्रता हेबाक चाहिए। तो युवा लोकन के अद्भुत योगदान छन। तो एहि विषय विखाय पर हम सब एक गोट भेंटवार्ता परिचर्चा सुनब, भारत को खेल महाशक्ति बनाने में युवाओं का योगदान। प्रतिभागी लोकन छथि नंदिनी झा, सुमित, प्राची झा, अभिनव चौधरी, अभिषेक आ वंदना सिंह।
1: आ संचालक छथि गोपी चंद्र झा आ कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता छथि असद दाऊद। तो सुनी हमरा लोकन ई परिचर्चा
0: सुनल जाए।
2: उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दर एक व्यापक रणनीति का आवश्यक 2036 ओलंपिक का ध्यान में रखे सरकार खेल महाशक्ति बने के लक्ष्य रखल हमारा लग कि युवा छे लोक सेवा के तैयारी कर रहा है आ अपन मौलिक विचार रख

0: छे तो इनका सो हम जानना चाहब कि युवा लोकन कोना योगदान करत कोन प्रकार योगदान करत कि भारत खेल में महाशक्ति बने। सबसे पहले हमरा लोग छे त आ के प्राची झा, त प्राची झा आ का आकाशवाणी के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आ के पिताश्री के नाम की है?
1: आनंद कुमार झा।
0: अच्छा, हम वहां से जानना चाहब कि भारत खेल में महाशक्ति बने अय लेल युवा कोन काज करे की करे, खेल महाशक्ति बने में युवा लोकन कोन प्रकार योगदान क सकते, तो हम आ के मौलिक विचार जानना चाहब।
1: नमस्कार अहाँ सबके, आई हम सब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करे ला एकत्रित भेल छिए, जे भारत के खेल महाशक्ति बनाबे में युवाओं के की भूमिका है। भारत एक युवा देश है जहाँ जनसंख्या के सबसे बड़का हिस्सा युवा के युवा वर्ग छथिन। यह युवा वर्ग हमर सबके सबसे बड़का ताकत है। अगर सही दिशा में और सही संसाधन प्रेरणा देल जाए तो ई भारत के नाम पूरा विश्व में प्रसिद्ध करथिन। और जेना कि अहाँ हम सब जाने छिए जे छोट छोट बच्चा सब जे छे स्कूल में जाए छे, तो ओत्ता सब बच्चा सब के हर स्कूल में खेल महोत्सव केल जा रहल छे। सरकारों द्वारा बहुत स्कीम सब जे होय छे से लेल गेले हन, जेना खेलो भारत इंडिया स्कीम छे से सब छे। और जे आसपास के लोग सब छथिन सेहो आब खेल में रुचि बढ़ा रहल छथिन, किए तऽ अभी बीमारियों सब बहुत बढ़ रहल छे और खेल सब मानसिक स्थिति जे छे से एक जगह रहे छे। और लोग सब अगर खेल के साथ बढ़िया रहते और आगे आगे बढ़त रहते तो देश जे छे अपने आप ही तरक्की के ओर बढ़त रहते। और
0: अच्छा, हमारे लोग दूसर प्रतिभागी छथि अभिनव चौधरी। अभिनव चौधरी, हम यहाँ से जानना चाहब कि खेल का बुनियादी ढांचा में कौन प्रकारे बदलाव कैल जाए कि भारत खेल का क्षेत्र में महाशक्ति बन के उभरे। पहले कहावत छल कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आ पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। आब ई कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, आ खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब। तो खेल कूद के माध्यम से हम देखे छे कि अहाँ का सर्वांगीण विकास होइए। तो भारत सरकार 2036 में खेल का ओलंपिक करावे का लक्ष्य रखलक है। आ ओ समय धर भारत का 10 प्रमुख खेल महाशक्ति के रूप में भारत को उभारे का भारत सरकार की इच्छा छे। तो हम अहाँ से जानना चाहब कि भारत खेल महाशक्ति कोना बने, भारत खेलक बुनियादी ढांचा में कौन प्रकारे बदलाव करा कि भारत खेलक क्षेत्र में महाशक्ति।
2: धन्यवाद। हम समक्ष एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर अपन विचार रख जा रहल छी, जय के देश अछि भारत के खेल महाशक्ति बनाबे में युवा योगदान। ई केवल विषय नहीं छै, खेल धर सीमित नहीं छै, बल्कि देशक गौरव, युवा शक्ति आ भविष्यक दिशा से युवा देश अछि। अतः जनसंख्या एक बहुत पैघ हिस्सा अछि, ई युवा शक्ति ऊर्जा और एक दिशा दिखाबैत अछि। तब भारत निश्चित रूप से खेल क्षेत्र में विश्व स्तर पर एक महाशक्ति बनल छै। आजक समय में खेल केवल मनोरंजन नहीं रहल, बल्कि एक पैसा, एक पहचान आ देश के सम्मान दिखावल एक माध्यम अछि। युवा सब में उत्साह, जोश आ कुछ किछ नया करबाक इच्छा रहित अछि। एक गुण खेल के सफलता लेल बहुत जरूरी अछि। जखन युवा अपन समय खेल कूद में लगाबैत अछि तऽ ओ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहित अछि और मानसिक रूप से सेहो मजबूत बनाबैत अछि। खेल अनुशासन, धैर्य, टीम वर्क आ नेतृत्व क्षमता सिखाबैत अछि, जे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी अछि। आइ भारतक युवा क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलेटिक्स जकर विभिन्न खेल में अपन प्रतिभा के प्रदर्शन कऽ रहल अछि। ओलंपिक, एशिया खेल आ अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ी पदक जीत कर देश के गौरवान्वित कऽ रहल छथि। ई सब संभव भेल अछि युवा खिलाड़ी सबक कठिन परिश्रम, संपूर्ण लगन से। सरकार सेहो खेल के बढ़ावा देबाक लेल अनेक योजना चला रहल छथि। खेलो इंडिया जकर कार्यक्रम युवा प्रतिभा के पहचान कर ओहो के सही परीक्षण और संसाधन प्रदान करैत अछि। एहि प्रकारक पहल से ग्रामीण आ छोट शहर के युवा सब सेहो अपन प्रतिभा के निखारा के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच रहल छथि। मगर केवल सरकारक प्रयास प्राप्त नहीं अछि, समाज और परिवारक सेहो जिम्मेदारी अछि के जे युवा सब के खेल में आगा बढ़ावा लेल प्रेरित करे। अक्सर देखल जाइत अछि कि माता पिता केवल पढ़ाई पर जोर दै छथिन और खेल के महत्व कम देल जाइत अछि, लेकिन एखन के समय में खेल एगो बढ़िया कैरियर के ऑप्शन अछि। खेल के माध्यम से देश में एकता और भाईचारा सेहो बढ़त अछि। जखन हम सब एकजुट भ के अपन देश के समर्थन करै छी तऽ राष्ट्रीय एकता मजबूत होइत अछि। खेल केवल जीत और हार तक सीमित नहीं अछि, बल्कि एक भावना अछि जे देश के जोड़ल राखै छै।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के। आब हमारा लोग छथि अहाँ के नंदिनी झा। तो नंदिनी झा, हम अहाँ से जानना चाहब कि युवा लोकन की करत कि भारत खेल में महाशक्ति बने, क्या युवा लोकन में अथाह ऊर्जा होते और नवाचार के माध्यम से नव तकनीक

0: माध्यम सँ अपन विकासक मार्ग प्रशस्त करैत छै।
1: तऽ हम अहाँसँ जानऽ चाहब कि युवा लोकनिक योगदान कोन प्रकारे भऽ सकैए कि भारत खेलमे महाशक्ति।
2: अहाँ एकदम सही गप। भारत के वैश्विक स्तर पर खेल महाशक्ति बनबऽ मे युवा के भूमिका सबसँ निर्णायक छै। देश के लगभग 65% आबादी युवा छै। यह ऊर्जा, अनुशासन आ जुनून भारत के आगू लऽ कऽ जा सकै छै। युवा के खेलकूद में जतेक अधिक भागीदारी हेतै ओतेक बेहतर प्रतिभा सामने हेतै। गाँव से लेकर शहर तक युवा के खेल में भागीदारी भेनाई बहुत जरूरी छै। युवा सब सक्रिय रूप से भागीदारी लेथिन खेल में तो नया नया जो टैलेंट छै से सामने उभर कर अयतै। जेना नीरज चोपड़ा भेलखिन, पीवी सिंह, अपन भारत के रत्न वैभव सूर्यवंशी, लक्ष्य सेन, तो ये सब जे छथिन पिछला दशक में युवा सब के बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत छथिन। आ जे खेलकूद होइ छै, किछ लोग सोचै छथिन कि खेलकूद केवल मेडल तक सीमित होइ छै, लेकिन ओ केवल मेडल तक सीमित नहीं होइ छै। अपन स्वास्थ्य के नीक राखै में ओ इहु काज में जे छै खेलकूद के बहुत बड़ा भागीदारी होइ छै। आ खेलकूद से एक टा टीम स्पिरिट सेहो इनकलकेट होइ छै और अनुशासन सेहो बढ़ै छै। युवा जखन नियमित रूप से खेलथिन तो शारीरिक आ मानसिक दुनू रूप से ओ जे छथिन बहुत ज्यादा मजबूत रहत। आइ काल्हि जे युवा सब छथिन से नया नया तकनीक के इस्तेमाल सेहो करै छथिन, नया नया टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कऽ कऽ अपन प्रदर्शन के आरो बेहतर कऽ रहल छथिन। जेना एकटा ऐप होइ छै ओकर नाम छै स्ट्रावा। स्ट्रावा पर जे छथिन युवा सब जतेक लाइक किलोमीटर्स दौड़ रहल छथिन ओ काउंट भऽ जाइ छै आर मतलब कोन टेक्निक से ओ दौड़ रहल छथिन सेहो सब स्ट्रावा पर बतायल जाइ छै। ताहिसँ जे छै प्रदर्शन आरो बेटर होइ छै। ओहिके बाद पहले एकटा मेंटालिटी रहे कि जे खेल कूद होइ छै ओकरा एकटा सुरक्षित करियर नहीं मानल जाइ छलै, ओकरा एकटा पास टाइम के रूप में देखल जाइ छलै। लेकिन आइ हम ई देख रहल छियै आइ काल्हि के समय में कि जे खेल कूद छै एकटा इमर्जिंग करियर अपॉर्चुनिटी छै आर एहिमे सरकारों के बहुत बड़ा भूमिका छै। सरकार जे छै अलग अलग लेवल पर, यूनिवर्सिटी के लेवल पर, स्कूल के लेवल पर अलग अलग प्रतियोगिता के अथी कऽ रहल छै, प्रतियोगिता के होस्ट कऽ रहल छै। जेना एकटा खेलो इंडिया गेम्स होइ छै, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पिछला बेर राजस्थान में भेल रहे, ओहिमे जे छै तीन टा यूनिवर्सिटी जाहिमे से एकटा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी छलै, एकटा पंजाब यूनिवर्सिटी छलै, तो ई सब जे छलै टॉप पर रहे। तो ऐसा जे छै युवा के अंदर खेल कूद के चाहत आरो बढ़े छै। ओहिके बाद युवा जे छथिन युवा अपन अगल बगल में सेहो खेल कूद के माहौल बना सकै छथिन। जेना अपन कॉलोनी में कोनो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेनाइ, तो ऐसा जे छै ऐसा सोशल स्किल सेहो ओकरो विकास होइ छै। ओहिके बाद युवा जखन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जेथिन और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपन भारत के प्रतिनिधित्व करथिन, तखन जे छै भारत के परचम खेल कूद में एकदम बुलंद भऽ जेतै। जेना आइ काल्हि नंबर वन पर बेसी काल चाइने रहै छै, लेकिन अगर भारत के युवा आगू जेतिन खेल कूद में तो भारतो नंबर वन पर आबि सकै छै, बहुत पोटेंशियल छै।
1: बहुत नीक अहाँ कहलहुँ, उचित गप कहलहुँ। वास्तव में जो युवा जग जायत तो निश्चित रूप से अपन ऊर्जा का उपयोग खेल के क्षेत्र में कर सके छै तो भारत के महाशक्ति बना सके। आप हमरा लग छै अहाँके वंदना सिंह। तो वंदना सिंह अहाँके पिताश्री के नाम की है? कौशल किशोर सिंह। तो अहाँ से हम जानना चाहब कि भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बनाए एहि लेल युवा लोकनि की उपाय करे, कोन काज करे, कोना योगदान दैत कि भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति।
3: नमस्कार, हम वंदना अहाँ सबके बीच एकटा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भारत के खेल महाशक्ति बनाबे में युवा सबके योगदान के बारे में अपन कुछ विचार विमर्श रखे ला चाहे छी। जेना कि अहाँ सब जाने छिए भारत एक युवा देश छै, एता आबादी के बहुत पैघ हिस्सा युवा सब के छै। जे युवा अपन ऊर्जा, मेहनत आ समर्पण खेल दिशा में लगावे तो भारत खेल के महाशक्ति बनब के सपना जरूर पूरा भ सके छै। पहिन के समय में खेल के सिर्फ मनोरंजन मानल जाय छलै, लेकिन आइ खेल एक करियर बनी गोल छै। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, एथलीट जैसन खेल में भारतीय खिलाड़ी दुनिया भर में अपन पहचान बना रहल। ए सफलता के पाछू युवा सब के कठिन परिश्रम आ लगन छुपल छै। युवा सब के योगदान बहुत तरह से हो सके छै। पहिल, नियमित अभ्यास आ अनुशासन, बिना मेहनत किछु संभव नै छै। दोसर, स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाव, सही खान पान आ फिटनेस पर ध्यान दे। तेसर, देश नाम रोशन करे के भावना सिर्फ अपन लेल नहीं बल्कि देश लेल खेलब। सरकार सेहो खेलो इंडिया जैसन योजना युवा सब के प्रोत्साहित कर रहल छै। असली ताकत युवा सबक भीतर छुपल उत्साह आ मेहनत छै। हम सब के चाहिए जे हम मोबाइल आ समय के बर्बादी से दूर रही, खेल में सक्रिय भाग लिए, स्कूल आ कॉलेज स्तर पर खेल में महत्व बुझी, अपन प्रतिभा के निखार

0: कारण जरूर छै। अतः हम अंत में हम ई कहब चाहे छी जे जता युवा जागत ओ देश आगे बढ़त। आइए कुछ जे युवा ठान ले तो भारत के खेल महाशक्ति बनय में केहो नहीं रोक सके छै। धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बदना सिंह जी, अहाँ बड़ सारगर्भित जानकारी देलौं कि युवा लोकिन कोन प्रकार योगदान कऽ सकै छथि भारत के खेल क्षेत्र में महाशक्ति बनाबे में। अब हमरा लोग एकटा और प्रतिभागी छै आयुष भारद्वाज। आयुष भारद्वाज जी, अहाँ के पिताश्री के नाम की है?
2: विभूति शंकर चौधरी।
1: अच्छा, अहाँ की कह रहल छी?
2: हम ऑनर्स
1: कर चुकल छी।
2: अभी हम कंपटीशन मतलब
1: अच्छा प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर रहल छी। प्रतियोगी परीक्षा में कोन प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर रहल छी?
2: बैंक एसएससी सब के।
1: अच्छा, बैंक का स्टाफ सिलेक्शन। अच्छा अच्छा, तो हम आयुष जी अहाँ से जानना चाहब कि भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बना, ये तो हमर सबक इच्छा है, इच्छा कोना पूरा है, युवा लोकिन कोना योगदान करे, कौन प्रकार योगदान करे, कौन प्रकार के नवाचार करे, कौन नव तकनीक का आने थो कि भारत खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बना। हम अ क्षेत्र में अहाँ के विचार जानना चाहब कि भारत खेल के क्षेत्र में कोना अग्रणी राष्ट्र।
2: नमस्कार, हम आयुष वर्धा छी। भारत के अगर आबे वाला ओलंपिक में अगर डोमिनेट करे के है तो अहाँ के गांव घर से ही स्कूल से ही भारत के बच्चा सब के अपन टैलेंट के निखारे ला सरकार के बहुत सारा योजना अपन चलावल जाए है। और साथ ही साथ ये जरूरी है कि हमर सब के स्कूल सब के अपन कंपटीशन या रीजन में ये सब के बढ़ावा दे के चाहिए ताकि बढ़िया कोच और बढ़िया अहाँ के स्पॉन्सर हो के चाहिए ताकि टैलेंट निखारल जाए के चाहिए और बच्चा सब ओके अपन मनोरंजन के लिए ना अहाँ अपन टैलेंट के निखारे ला और देश के गौरवान्वित करे ला मतलब अहाँ के प्राउड फील करावे के लिए देश के लिए और खुद के लिए अपन माँ बाप के लिए। तो अहाँ के खेलों में अहाँ मतलब जा सके अहाँ टीम वर्क अहाँ अपना सके छे और साथ ही साथ अहाँ अपन कोच के या अपन जो मेंटर या उनका से अपन सलाह लो के अहाँ अपन टैलेंट के निखार सके। और साथ ही साथ अगर अहाँ के मतलब एहन नहीं है कि अहाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलियो या अहाँ सिर्फ किस दिन मतलब किस उम्र ले तक अहाँ खेले छे, बहुत सबके अपन मानसिकता हो अहाँ कि इस सब में आगे मतलब फ्यूचर नहीं छे या किस भी, लेकिन हम देख सके छे बहुत सारा एहन देश छे जना चाइना भेले साउथ कोरिया भेले इस सब में अहाँ सबके स्कूल में ही अपन सबके कंपटीशन निकाले ला स्कूल में अपन कंपटीशन हो एक से दोसर से अपन ही क्लास में या अपन बच्चे सब में कंपटीशन करावल जाए छे ताकि भविष्य में हो सके राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अहाँ के अपन निखार सके छे टैलेंट। और साथ ही साथ सरकार के ये बढ़ावा दे के चाहिए कि स्कूल सब में और जिला सब में या राज्य स्तर पे अपन सबके कंपटीशन का बढ़ावा दे के चाहिए ताकि बच्चा सब अपन ओत जाके खेले कूदे और अपन टैलेंट के दिखावे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ कह चाहे छे कि निचला स्तर पर खेल कूद के बढ़ावा देल जाए, विद्यालय स्तर पर महाविद्यालय स्तर पर, तो ऐसे छे से खेल का जो बुनियादी ढांचा है वो मजबूत होत। अब हमारा लोग छे तो अहाँ के एक और प्रतियोगी अभिषेक मिश्रा जी। तो अभिषेक मिश्रा जी, अहाँ के पिताश्री के नाम की है?
3: अजय कुमार मिश्रा।
1: अजय कुमार मिश्रा, अहाँ कौन प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर रहा छी?
3: अखन हम वही बैंकिंग एसएससी रेलवे एकरे सब के तैयारी कर।
1: एकर सब के तैयारी कर। तो अहाँ से हम जानना चाहब अभिषेक जी कि भारत खेल कूद में महाशक्ति बना, ये भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2026 के जो ओलंपिक हो वाला है वो भारत में है आ तबत धर भारत जैसे खेल के 10 जो प्रमुख महाशक्ति है वह भारतों का नाम शामिल है, तो इसमें युवा लोकन की भूमिका अहाँ देख रहा जी, युवा लोकन कौन प्रकार काज करें, उनकर विजन की हेबा के चाहिए, उनकर कल्पना की हेबा के चाहिए, उनकर लक्ष्य की हेबा के चाहिए कि भारत खेल के क्षेत्र में अग्नि राष्ट्र बने, प्रमुख राष्ट्र बने। तो हम अहाँ का किछ मौलिक विचार जानना चाहब।
4: पहल अहाँ सबके नमस्कार। आजू कतौ के युवा मोबाइल आ गेमिंग में व्यस्त छते, तो मुदा हमर सबके मैदान में उतरे के पसीना बहा पड़त, फिट इंडिया तखने सफल हो जब हम सब फिट रहब। कहल जाल छले कि पढ़ब लिखब तो बनब नवाब, खेलब कूदब तो होब खराब, मुदा अबध समय में ई बात बदल गेल छ। युवा सब खेल के खेल के सिर्फ समय पास नहीं बल्कि एकटा नीक करियर रूप में देखबक चाहिए। देश के महाशक्ति बनाबे में हमर देश के महाशक्ति बनाबे के लेल युवा शक्ति के खेल से जोड़ब के अर्थ छै नशा से दूरी। जखने हमर युवा स्वस्थ रहब तखने देश के भविष्य सेहो स्वस्थ रहत। मैदान हमरा अनुशासन और संस्कार सिखाबत छै। हमर मिथिलांचल बिहार के गाम गाम में प्रतिभा छुपल छै। हमर युवा जब ठान लेत तो कुश्ती हो या क्रिकेट हर जगह नाम रोशन के सकत छै। आजकल के सरकार खेलब लेल कतौ के योजना मैदान बना रहे

0: छै। हम युवा के जिम्मेदारी छै कि ओही सुविधा के पूरा लाभ उठाबी आ दूसरों के प्रोत्साहित करी। अंत में बस इतने कहब कि खेल हमरा सबके हारी के जीतब आ मिलजुल के रहब सिखाबे छै। आउ हम सब मिल के संकल्प ली कि खेलब जीतब आ भारत के मान बढ़ाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, अहाँ बड़ अपन अमूल्य विचार व्यक्त कयलहुँ, एहि लेल अहाँके कोटिश धन्यवाद। कतेक प्रतिभागी भाग लेने, उनका सबके भाग ले लेल कोटिश धन्यवाद।
2: गोपी भाई, एखन हमरा लोकन बाह्य ध्वन्यांकर पर आधारित एकटा परिचर्चा सुन रहल छलहुँ, भारत को खेल महाशक्ति बनाने में युवाओं का योगदान। प्रतिभागी छला नंदिनी झा, सुमित, प्राची झा, अभिनव चौधरी, अभिषेक, वंदना सिंह। एकर संचालक गोपी चंद्र झा आ प्रस्तुतकर्ता असद दाऊद।
3: बड़ निक छै से अहाँके ई परिचर्चा छल कि भारत के खेल महाशक्ति बनाबे में युवा लोकन कोन प्रकारी योगदान कऽ रहल छै। देखियो, अपना सबके समय में जो हमर सबके पिताश्री छलथि, बाबूजी छलथि, कहै छलथि कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। लेकिन आब तो खेल कूद में विजय भए एते अहाँके उन्नत कैरियर छै कि शुरुए से जे प्राथमिक विद्यालय जे अछि ओही समय से छै से बच्चा के खेल के प्रति आकर्षित करबाक चाही, खेले लेल सुविधा देबाक चाही, अवसर देबाक चाही, ताकि छै से ओ बच्चा खेल में अहाँके राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाए आ देश के नाम छै से रोशन करे। तो बहुत नीक ई परिचर्चा छल। आ देखियो विजय भाई, ई जे अहाँके बदलैत जे मौसम अछि, एहिमे आहार विहार खान पान पर ध्यान देबाक चाही आ अनावश्यक रौदमे नहि निकलबाक चाही। जँ बेसी जरूरी काज यऽ तऽ रौदमे निकलू, मुदा खान पान पर ध्यान दिअ, आहार विहार पर ध्यान दिअ आ बेसी से बेसी शीतल जल पीबू, किया तऽ जल के कमी जे अछि ओ एहि समय मे बेसी भऽ जाइए, बुझलहुँ?
2: आवश्यक
3: हँ, तऽ बेसी से बेसी जल पीबाक चाही। आ जखन बाहर निकली तऽ कोनो छै से सूती कपड़ा से माथा छै से झाँपि तैपि ली,
2: माथ पर जे छै से गमछा जे छै से राखि ली।
3: आ एहिके संगे छै से गाम घर के जे समय अछि ओ सम्पन्न हेबा पर अछि। आ हमसब खेती पथारी के कार्यक्रम खेती गृहस्थी दिस से ली, तऽ खेती गृहस्थी कार्यक्रम में किसान भाई लोकनि के हार्दिक स्वागत अछि। तऽ केना की खेती बाड़ी भऽ रहल छै विजय भाई, से कहियो।
2: गोपी भाई, आइ हमरा लोकनि खाद एवं उर्वरक के समुचित प्रयोग एहि विषय पर गपशप करब, जाहिसँ किसान भाई लोकनि के एहि प्रयोगसँ बेसी सँ बेसी लाभ हेतनि। तऽ गोपी भाई,
3: सबसँ पहिने जे खाद पर गप करब, ओहिसँ पहिने माटिके जाँच कोना है, किया तऽ खेती बाड़ी जे करी तऽ सबसँ पहिने छै से माटिक जाँच केनाइ बड़ आवश्यक अछि, किया तऽ माटिमे कोन तत्वके कमी अछि, जिंकके कमी अछि कि सल्फेटके कमी यऽ, हँ कि अहाँके छै से नाइट्रोजनके कमी यऽ, तऽ माटिमे कोन तत्वके कमी अछि ई जाँचसँ पता चलि जाइए। आ ओकर बाद ओहि अहाँ अपना हिसाबसँ ओकर बाद जैविक खाद, रासायनिक खाद के जो उपयोग करै छी से करू। तऽ माटिके जाँच सबसँ पहिने जरूरी अछि, माटिके जाँच कऽ ली आ ओकर बाद खूब अहाँके गहीर जोताइ करी। आ गहीर जोताइ कऽ कऽ पाटा कऽ कऽ आ किछु दिन छै जे खेतके छोड़ि दी, ताकि रौद जे लागत तऽ ओ अन्दरमे जे कीड़ा मकोड़ा यऽ जे माटिके हानि पहुँचाबैए ओ समाप्त भऽ जायत। ओकर बाद छै से अहाँके खेती बाड़ी करी।
2: बड़ नीक गप कहलियै गोपी भाई। देखियौ गोपी भाई, खेती में खाद आ उर्वरक के सही आ संतुलित प्रयोग कम लागत में बेसी उत्पादन प्राप्त करबा आ माटिक उर्वरता बनाए रखबाक लेल अनिवार्य अछि। उर्वरक खादक मतलब अछि फसल के ओतबे पोषण देनाय जतबा ओकरा सही समय पर चाही। खाद आ उर्वरक
3: समय और मात्रा, सही समय पर दियो, उचित मात्रा दियो, नहीं बेसी दियो नहीं कम दियो।
2: तो खाद आ उर्वरक के समुचित प्रयोग मुख्य बिंदु जना अछि, पहिल जना माटिक परीक्षण अपने कहलिए। तो गोपी भाई, खाद डलबा से पहिने माटिक जांच कराबी, जाहिसँ ई पता चले कि माटि में कोन पोषक तत्वक कमी अछि आ कोन प्रकारक खादक आवश्यकता अछि। तकरा अछि संतुलित उपयोग, केवल यूरिया वा नाइट्रोजन उर्वरक पर निर्भर नहि रही, नाइट्रोजन, फास्फोरस आ पोटासक संतुलन बनायल राखी, बुझलियै?
3: और
2: तकरा बाद भेल अहाँके जैविक आ रासायनिक मिश्रण। तऽ रासायनिक उर्वरक के संग संग कार्बनिक खाद, गोबरक खाद, कम्पोस्टक प्रयोग करी।
3: आ देखियौ, अहाँके जे कम्पोस्टके प्रयोग कहलियै, ई बड़ माटिके अहाँके लाभ

0: दैया आ जैविक खादमे जेना गोबर का खाद भेल, कम्पोस्ट भेल, हरियर खादमे जेना ढैचा के हमसब छै से अहाँके घास उगाबै छी आ फेर ओकरा माटि के तौर मे दाबि देलहुँ। तऽ एकर मुख्य उपयोग जे अछि कि माटि के जल धारण क्षमता के ई बढ़ाबैए, माटि के जे पीएच मान अछि ओकरा ओ संतुलित राखैए और सूक्ष्म जीव के गतिविधि में सुधार करैत अछि। आ प्रयोग विधि की अछि विजय भाई, तो एक बौ या रोपे से पहिने खेतक तैयारी के समय माटि में एक नीक जना मिला दी ताकि जैसे माटि का ई बेसी लाभ पहुँचाबे।
1: गोपी भाई देखियो जे एक सही समय पर प्रयोग करी, फास्फोरस आ पोटास के बेसल मात्रा बौक समय माटि में डाली, नाइट्रोजन के 2 या 3 किस्त में दी, खराब फसिल में नाइट्रोजन उर्वरक देवक बाद हल्लुक गुराई करी एक।
0: अच्छा,
1: अगर सही तरीका से जो प्रयोग है वो खादक फसिल के जड़ के पास दी, नहीं कि ऊपर से छिड़की एक। बीया आ उर्वरक के एक संग नहीं मिलाबी, ऐसा अंकुरण कम हो सकते।
0: अच्छा अच्छा,
1: पत्ती पर उर्वरक नहीं डाली किएक तो ऐसा पत्ती जड़ सकते। तो ई भेल एकर सावधानी भेल, जना अत्यधिक उपयोग से बची, जरूरत से बेसी खाद माटि के ताकत कम कर सकते अछि, ओस में प्रयोग नहीं करी एक। जखन फसिल पर ओस पड़ित हो तो नाइट्रोजन खाद नहीं डाली।
0: आ खाद में अहाँके जो कारखाना में रासायनिक रूप से या खनिज से तैयार कल जाते वो पोषक तत्व से भरपूर होते हैं, जना उदाहरण भेल यूरिया भेल, DAP भेल, नैनो उर्वरक भेल, नैनो यूरिया मुख्य उपयोग में भेल कि फसिल के तुरंत और एक विशिष्ट मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास उपलब्ध कराबित है। आ एक प्रयोग विधि जो है विजय भाई, बौ करे से पहिने का समय ओका बेसल डोज के रूप में और खरीफ फसल में आवश्यकता अनुसार एक छिड़काव या जड़ के लग में जाकर एक उपयोग करी। आ प्रयोग करे से पहले कहबे के लिए मुख्य सावधानी में कि माटिक जाँच कर ली, बीया और खाद जो या कखनो बीया और रासायनिक खाद जो या एक साथ मिला कर खेत में नहीं दी, बुझलहुँ। रासायनिक खाद बीया एक साथ मिला के नहीं दी। अच्छा। आ बीया के उपचारित कह के खेत में दी ताकि बीया छे से अहाँ स्वस्थ रह तखने ना फसल स्वस्थ है।
1: उपचारित कह दी
0: उपचारित कह के आ मौसम के ध्यान निश्चित रूप जब कहबे के लिए अहाँ के ओस पड़े या बरखा के समय नाइट्रोजन वाला खाद के छिड़काव करे से बचबा के चाहिए हमरा सबके। आ नैनो तकनीक जो है कि आजुक समय में कृषि में रासायनिक खाद का भार कम करे के लिए नैनो यूरिया नैनो DAP के छिड़काव के प्रोत्साहित कल जा रहा है। अमे कि अहाँ कम खाद में बेसी से बेसी उपजा हैत और एकदम छे से अहाँ वही उपजा के बेच के निक कैचा कमा सके। आ जब निक कैचा कमायब तो गीत नाद सुने के तो मन करबे कर, तखन मन हरकित रह
1: मन हरकित तो गावे गीत।
0: हाँ, लेकिन एहिठाम गीत नहीं गायब, गीत अपने सब सुन
1: सुन।
0: हाँ
1: तो सुनी हमारा लोकन एक गीत स्वर छन अरविंद कुमार झा के, सुन जान
0: सुनी गीत।

0: बटो ही रह जा हमरे गाम, कतेक नीक गीत छल अरविंद कुमार झा के स्वर में। वास्तव में विजय भाई, अपना सबके जे मिथिलांचल के संस्कृति अछि, एहिमे जकरा बिल्कुल नहि जानै छी, आ बटोही अछि आ दरवाजा पर आबि गेल तऽ ओकरा छै से जल देलहुँ, पैर धोबै लेल नाश्ता पुछलहुँ, शरबत पुछलहुँ, सत्तू पुछलहुँ, आ जँ बहुत थकल अछि तऽ ओकरा आराम करैके लेल सेहो छै से चौकी पर देलहुँ कि ओहिठमा अहाँ आराम करू। तऽ एहिठामके जे संस्कृति अछि, अतिथि देवो भव, बुझलहुँ, जे हमरा एहिठाम आबैए ओ अहाँके देवताके समान अछि, आ हुनक स्वागत पूर्ण समर्पण भावके साथ हेबाक चाही। आ इएह मानवीय जीवनके इएह गरिमा थिक, मानवके जीवनक इएह सार्थकता अछि कि हम दोसरके सङ्गे कतेक छै से अहाँके नीक व्यवहार करै छी।
1: अवश्य
0: चिन्तन जे हेबाक चाही ओ सकारात्मक हेबाक चाही। आब देखियौ, छै से ओनाहि नीक खेतीबाड़ीके लेल आवश्यक अछि मौसम सूचना। अगर मौसम पूर्वानुमान हमरा सबके भऽ जाइए तऽ ओहिके अनुसार हमसब खेतीबाड़ी करब, आ एहिसँ हैत कि उपजा नीक हैत, आ कोनो प्रकारके जे आशंका रहत कि छै से कि सुखाड़ पड़त या

0: बेसी वर्षा हैत तो ओहिसँ पहिने छै से तैयारी कऽ लेब, एहिसँ नुकसान कमसँ कम हैत। तऽ मौसम सूचना जे अछि, मौसम पूर्वानुमान,
1: आइ जे अछि गोपी भाई, आब हमरा लोकनि किसान भाई लोकनिके आजुक मौसम जानकारी दऽ दियनि। तऽ गोपी भाई, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभागके सहयोगसँ जारी 16-20 मई 2026 धरिक मौसम पूर्वानुमानक अनुसार पूर्वानुमान अवधिक दौरान उत्तर बिहारके अनेक जिलामे गरजवला मेघ बनबाक सम्भावना अछि। एकरा चलते कतेको स्थान पर हल्लुक वर्षा भऽ सकैत अछि। तेज हवा के संग वर्षा के संभावना के आसपास बेसी अछि। कतौ कतौ बिजली गिरबाक संभावना अछि।
0: आ अधिकतम तापमान जे यऽ ओ 32-33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहि सकैए, आ जखन कि न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के लगपास रहि सकैए।
1: आ एकर गोपी भाई, सापेक्ष आर्द्रता सुबह मे 70-75% तथा दोपहरिया मे 20-25% रहबाक अनुमान अछि।
0: आ पूर्वानुमान अवधि मे औसतन 14-20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से पूर्वा हवा चले के संभावना अछि।
1: तो गोपी भाई, ई छल मौसम पूर्वानुमान। आप किसान भाई लोकन के समसामयिक सुझाव सेहो दऽ दियौ।
0: अब देखियौ, जैसे विजय भाई एकबार देखबे केलहुँ हँ कि 2-4 दिन पहिने छै से कति नीक वर्षा भेल, आ बराबर छै से अहाँके एक वर्षा होइत रहल, तऽ विगत वर्षासँ खेतमे जे नमी या आवश्यक नमी ओ आबि गेल अछि। तऽ किसान भाई धानके नर्सरी हेतु नर्सरीमे सरल गोबरक खादके उपयोग करैत, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफलमे रोपाइ हेतु 800-1000 वर्ग मीटर क्षेत्रफलमे बीया गिराबैत, नर्सरीमे क्यारीके चौड़ाइ 1.25 से 1.5 मीटर आ लंबाई सुविधा अनुसार राखी, आ बीया के व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करी, देर से पाके वाला किस्म के नर्सरी मे ओकरा उपयोग कऽ सकै छी, 25 मई से लगा सकै छी ओकरा। आ पूर्वानुमान अवधि मे वर्षा के संभावना के देखैत किसान भाई लोकनि के सलाह देल जाइत अछि कि तीमन तरकारी के खेती से खेत से जल निकासी के उचित प्रबंध कऽ ली, उचित व्यवस्था कऽ ली,
1: किया
0: तऽ जल निकासी जे नहि हैत तऽ अहाँके तीमन तरकारी के फसिल जे होइए कोमल होइए,
1: कोमल
0: लत्ती सब ओकर सड़ऽ लागत छै से, आ कटाई कयल गेल फसिल के सुरक्षित भंडारण कऽ ली।
1: भंडारण कऽ ली,
0: हाँ, जे फसल अहाँ काटि के रखलियै हैं तऽ ओकर भंडारण करबै ने।
1: अच्छा,
0: आ भंडारण एकदम सुरक्षित भंडारण हेबाक चाही।
1: बड़ नीक बात कहलियै अपने।
0: रौद मे बढ़िया से सुखा लिया अनाज के, आ सुखा के ओकरा छै से भंडारण करियौ, नीम के पात ओहिमे दऽ दियौ,
1: नीम के पात सेहो
0: दऽ दियौ ताकि ओहिमे कीड़ा मकोड़ा नहि लागे।
1: अच्छा,
0: आ खेत मे काज करे के दौरान बिजली गिरे से बचाव हेतु आवश्यक सावधानी राखी। देखी कि जखन आकाश मे मेघ लागल यऽ आ मेघ गरज रहल यऽ तखन खेत मे नहि जेबै विजय भाई, बुझलहुँ। आ खरीफ मकई के बौक लेल खेत के तैयारी एखने से शुरू कऽ दी। खेत के जोताई मे 10-15 टन गोबरक सरल खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करबा के चाहिए। आ खरीफ मकई के बाव जे करी वो 25 मई से करी, आ हरियर खाद के लिए सनई और ढैचा के बाव सेहो करी।
1: ढैचा के बाव ना,
0: आ आदि जे अछि ओकर बाव करे के समय आबि गेल अछि, एहि लेल किसान भाई आदि के बाव 15 मई से शुरू कऽ देत। तब अदरक के मरान आ नदिया किस्म जे अछि ओ उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित अछि। आ खेतक जोताई में 25-30 टन गोबरक सरल खाद, नेत्रजन 30-40 किलोग्राम, अस्फुर 50 किलोग्राम, पोटास 80-100 किलोग्राम, जिंक सल्फेट अहाँ के 20-25 किलोग्राम, आ बोरेक्स 10-12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करवा।
1: 10-12 किलोग्राम प्रति,
0: हाँ, 10-12 किलो
1: बोरिक,
0: हाँ। आ आदि के लेल बिया दर्जे राखी ओ 18-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर राखी, आ बिया प्रकंड के जे आकार हेबाक चाही ओ 20-30 ग्राम हेबाक चाही, जाहिमे 3-4 मे स्वस्थ कली हुए। आ रोपे के दूरी जे राखी ओ 30 सेंटीमीटर लाम आ 30 सेंटीमीटर चौड़गर रखबाक चाही। आ नीक उपज के लेल रीडोमिल दवाई के 0.2% घोल से उपचारित बिया के बाव करी। तो ई सब जे गप के ध्यान में रखब तो उपजा एकदम अहाँ के बहुत नीक जे होय हेबे करत। आर हरिद के जे अछि ओ राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली उत्तर किस्म उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित अछि। आ खेत के जोताई में 25-30 टन गोबरक सरल खाद,

0: नेत्रजन 60 सँ 75 किलोग्राम, स्फुर 50 सँ 60 ग्राम, पोटास 100 सँ 120 किलोग्राम आ जिंक सल्फेट 20 सँ 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार
1: 20 सँ 25 किलोग्राम
0: प्रति हेबाक चाहिए। और हरद के लिए बिया दर जे राखी ओ 20 सँ 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर राखी। आ बिया प्रकंद का आकार कते राखी 30 सँ 35 ग्राम,
1: 30 सँ 35 ग्राम
0: जैमे 4 सँ 5 कली हुए। आ संगे संग रोपाई के दूरी जे राखी ओ 30 सेंटीमीटर लाम आ 20 सेंटीमीटर चौड़गर रखवा के चाहिए। आ गहीर जे करबे ओ 5 सँ 6 सेंटीमीटर रख
1: 5 सँ 6 सेंटीमीटर।
0: आ नीक उपजा के लिए 2.5 ग्राम अहाँ के डाइथेन एम 45.1% कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बिया के दर से घोल बना के ओम आधा घंटा तक उपचारित केला के बाद बाव करी। कीड़ा रोग व्याधि मूंग उड़ीद में नियमित रूप से निगरानी करी कहते नहीं देखबे कर छी अपना सबके दलहन के फसिल जो हुआ से उत्पादन कम हो बाहर से मंगाब पड़े तेलहन आ दलहन हम सब से निर्भर आत्मनिर्भर नहीं बाहर से हमें मंगाब पड़े तो एकर जे खेती करी सावधानी से करी आ बेसी से बेसी अहाँ के खेती एकर हेबा के चाही। एहि लेल सरकार अहाँ के बहुत तरह के वित्तीय सहायता दऽ रहल अछि, प्रशिक्षण दऽ रहल यऽ, खाद बिया दऽ रहल छथि,
1: बिया सेहो दऽ रहल छथि।
0: हँ तऽ कीट एवं रोग व्याधि से मूँग आ उड़ीद में नियमित रूप से निगरानी करैत रही। हम फसिल में जो उज्जर माछी होइए ओ एक रस चूसक कीट होइए ओहिके द्वारा छै से अहाँ के ओ की करैए कि गाछ के छै से अहाँ पर बैसल रहैए आ गाछ के पूरा रस चूस लैए आ गाछ के पियर कऽ दैए। तऽ एकर शुरुआती लक्षण देख कर की करी कि दवाई के उपयोग करी ओहिमे इमिडाक्लोप्रिड जे अछि ओ 17.5 mg/3 मिलीलीटर प्रति लीटर जल के दर से घोर बना कर ओका घोल बना दिए
1: जल के घोल बना कर दिए ना
0: छिड़काव करी तखने छै से अहाँ के माने फसिल जे हैत ओ कीड़ा मकोड़ा से बचत।
1: अच्छा अच्छा
0: आ देखियो विजय भाई हम तो देखलो अहाँ के पोरका साल की 2 गो महीस पोसने रही अहाँ महीसक दूधो अहाँ छै से एक लोटा पियने रही। हाँ फुलही लोटा में याद है ना मन याद ना आ चाहियो पियने कते माने सोहनगर चाय रहे लकड़ी के अथी पर चूल्हा पर वहाँ बनेने रही
1: महीष के बुझियो किछ बीमारी धर लेलकै।
0: अच्छा अच्छा
1: ते कारण से जो ओकरा कने अखन देख रेख में लागल छी देख रेख में।
0: आ महीष के की करै छी ओकरा छै से भोर में घूर तूर करै छी कि नहीं?
1: हाँ जाड़ में तक घूर करै छी।
0: हाँ गर्मी में नहीं करी छे गर्मियों में घूर करवा क्या तो देखे नहीं छे कते गामों घर पर कते मच्छर भ गए मच्छर जे काटत अहाँ का तो ऐसे छे से गाय महीस बीमार फैल जाइए। तो भोरों में घूर हेबा के चाही। अच्छा जैठम अहाँ का माल जाल जैठम ओकर बथान या तो ओहिठाम जल जमाव नहीं हेबा के चाही। ओकर बथान के बराबर साफ करते रहियौ ओकर जे अहाँ के मूत्र भेल या जे अथी भेल गोबर भेल ओहिठाम से हटा देबा के चाही। और गर्मी के समय में ओकर आहार विहार पर सेहो ध्यान देबाक चाही। आब अपने सब देख लिया कि दिन भर में जहाँ पहले 7-8 गिलास जल पीबै छलौं हँ आब एहन भऽ जाए कि 12-15 गिलास जल पी लै छी। तो जखन हमरा सबके प्यास बेसी लागैए तो स्वाभाविक छै यौ कि मालो जाल के तो प्यास लागै छै।
1: हमरा गाम पर तो नदी है ओ नदी में महीष के जाके पानि पिया दै छै।
0: हाँ हाँ
1: जकरा नहि छै नदी तो अपन बगल में जे पोखरि छै ओहो में पिया दै छथिन।
0: तो आर संगे संग छै से नून को उचित मात्रा देबाक चाही बुझलिए। नूनक जे उचित मात्रा देबे ऐसे की होइए कि मालजाल छै से स्वस्थ रहिए
1: स्वस्थ रहिए।
0: हाँ आर दाना छै से बेसी देबाक चाही एक समय में छै से दाना बेसी कहे के मतलब ये कि दाना एहन दियौ जे पुष्ट दाना आ की छै से अहाँ के आहार विहार में बेसी हेबाक तऽ एहि समय में मालजाल में कमजोरी आबि जाइए बुझलहुँ। आ गाय में एहि समय छै से अहाँके प्रजनन संबंधी सेहो बीमारी चलि आबैए गाय में। ऐसा की होइए कि ओकर दूध उत्पादन प्रभावित भऽ जाइए आ जे ओकर बछड़ा अछि ओकरा पैदा करै के क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करैत अछि। तऽ एहि बीमारी के मुख्य कारण अछि कि गर्मी के समय में भोजन मालजाल के कमि गेल ओते ध्यान नहि पड़ल लोक देलक छै से तऽ कुपोषण भऽ गेल हार्मोनल असंतुलन भऽ गेल बैक्टीरिया आ वायरस के संक्रमण सेहो होइए।
1: सेहो होइए
0: किया तऽ आब तऽ गर्मी के बाद वर्षा होयत

0: वर्षाक समय बुझबे करै छी कि अहाँके संक्रमण बेसी होइए। आब तऽ प्रमुख जे प्रजनन संबंधी बीमारी अछि ओ अछि अहाँके ब्रुसेलोसिस। कारण जे अछि कि ब्रुसेला एबॉर्ट्स नामक बैक्टीरिया से होयवला ई अत्यंत संक्रामक बीमारी अछि। लक्षण की यऽ तऽ गर्भावस्था के अंतिम महीना में छठा से नवा महीना में अचानक गर्भपात भऽ जेनाइ आ जड़ प्लेसेंटा के रुकनाइ आ बछड़ा के कमजोर भऽ जेनाइ, तऽ एहि के लेल जरूरी अछि कि ओकर आहार विहार खानपान पर ध्यान दिया। जब कोनो प्रकार के बीमारी है तऽ तुरंत छै से जे पशु चिकित्सक अछि ओकरा से देखाबी। तऽ ई सब जे गप के ध्यान में रखब तऽ खेती बाड़ी जे हैत अहाँके नीक जेना हैत, माल जाल के पोषण नीक जेना हैत आ दूध बेच के छै से अपना नीक कैचा कमायब। तऽ देखियौ विजय भाई, खेती गृहस्थी के जे समय अछि ओ आब छै से अहाँके सम्पन्न भऽ रहल यऽ, तऽ किया तऽ हमसब खेती गृहस्थी कार्यक्रम के समेटी आ किसान भाई से आगे।
1: तऽ नमस्कार गोपी भाई।
0: नमस्कार विजय भाई।

ये था खेती गृहस्थी, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। अगला प्रसारण कुछ ही क्षणों में आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
1: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
2: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
1: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
2: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222250042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
1: शुभ वाणी,
2: लाभ वाणी,
0: आकाशवाणी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले से राज्यव्यापी अभियान का किया शुभारंभ। राज्य में भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर पार्टी करेगी आंदोलन। और राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए नबीनगर एनटीपीसी परियोजना का होगा विस्तार। 800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आज से पंचायत स्तर पर राज्यव्यापी सहयोग शिविर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्वयं सारण जिले के डुमरी बुजुर्ग पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर राज्यव्यापी अभियान का उद्घाटन किया। श्री चौधरी ने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतों का समाधान अधिकतम 30 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर का आयोजन प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को किया जाएगा।
1: और ये कार्यक्रम दो बार महीने में पंचायतों के स्तर शिविर लगेगा और दो बार, पहली मंगलवार और तीसरी मंगलवार को। आपके सहयोग के लिए सरकार जारी है, चाहे वो अंचल का काम हो, शिक्षा विभाग का काम हो, चाहे वो ब्लॉक का हो या थाना का काम हो, जिसमें भी रुकावट है वो 30 दिन में नहीं करेगा तो उसके पदाधिकारी को निलंबित करने का काम हमारी सरकार करेगा।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सहयोग शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की प्रगति की मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से सीधी निगरानी की जाएगी। उन्होंने बताया कि जनता की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1100 और सहयोग पोर्टल भी क्रियाशील कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने पटना के दानापुर अनुमंडल के सरारी पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन SM समेत अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे। बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बरौनी प्रखंड अंतर्गत भरत उच्च विद्यालय पिपरा देवस में सहयोग शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर तेघड़ा के विधायक रजनीश कुमार, जिला पदाधिकारी श्रीकांत

शास्त्री, पुलिस अधीक्षक मनीष समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इधर दरभंगा जिले में 24 स्थानों पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह पथ निर्माण मंत्री कुमार शैलेंद्र ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कटिहार में आयोजित सहयोग शिविर के माध्यम से 2975 शिकायतों का निष्पादन किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री सह कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने सदर प्रखंड के भवाड़ा पंचायत में सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। वहीं अरवल जिले के करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में जिले के प्रभारी मंत्री सह पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शिविर का उद्घाटन किया। अन्य जिलों में भी विभिन्न पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। सुपौल जिले के प्रभारी सह योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सदर प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल होकर आम जनों की समस्याओं और शिकायतों को सुनने के लिए शिविर के निष्पादन के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बसडीहा स्कूल मैदान में प्रभारी मंत्री रमा निषाद ने सहयोग शिविर

0: मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने सदर प्रखंड अंतर्गत पंचायत सरकार भवन में आयोजित सहयोग शिविर में शामिल होकर आम जनों की समस्याओं और शिकायतों को सुनने के लिए शिविर के निष्पादन के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। औरंगाबाद जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत बसडीहा स्कूल मैदान में प्रभारी मंत्री रमा निषाद ने सहयोग शिविर का उद्घाटन किया। बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। इसके साथ ही न्यायाधिकरण में 5 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने आज पत्रकारों से बातचीत में बताया कि आम लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने और भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए यह निर्णय लिया गया है। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार केवल बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि राजद महिलाओं के मुद्दे को लेकर सड़क से सदन तक आंदोलन करेगा।
1: लगातार ये सरकार महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करती है, जो सच्चाई है बिहार की। अपराधी जो है हमारी माताओं बहनों पर बेटियों पर कहर बनकर के टूटे हैं, इसमें सम्राट चौधरी जी की सरकार पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रही है। प्रशासन कहीं नहीं नजर आ रहा है और ये गंभीर समस्या बन गई है बिहार के लिए, और खास तौर पे जो आम बिहारी है वो बहुत चिंता में है।
0: बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने लोहार जाति को फिर से अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाने के विषय को लेकर बिहार राज्य लोहार समन्वय समिति के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की। समिति ने विधानसभा अध्यक्ष को इस संबंध में दस्तावेज सौंपते हुए सहयोग का आग्रह किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जुड़े इस मामले में संसद के माध्यम से ही पहल संभव है। श्री कुमार ने कहा कि दस्तावेजों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकार से पत्राचार किया जाएगा। औरंगाबाद जिले के नबीनगर में स्थित एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर परियोजना का विस्तार किया जाएगा। कंपनी के परियोजना प्रमुख एलके बेहरा ने प्रेस वार्ता में बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए बिजली की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसे पूरा करने के लिए नबीनगर परियोजना के स्टेज 2 के तहत 800 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की जा रही हैं।
2: ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का कल्याण में आएगा, बिहार देश का हित में ही आएगा। ये बिजली तो अपना बाहर देश को तो नहीं जा रहा है, हम लोग देश में ही बिजली के लिए हम लोग का जो इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ेगा तो उसी का पाई किसी न किसी का पे बैक होता है। उसी तरह का हम लोग का जो ये पावर प्लांट होने के कारण जो लोग रोजगार मिल रहा है वो सर्कुलर इकोनॉमी ही कंट्रीब्यूट कर रहा है।
0: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
3: इधर आइए, इधर
4: इधर।
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612225042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभवाणी,
3: आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने विभिन्न कानूनी मंचों पर विचाराधीन मामलों का समयबद्ध निपटान सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। श्री मांडविया ने नई दिल्ली में पत्रकार

0: संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि निधि आपके निकट कार्यक्रम के तहत मामलों की पहचान कर उनके निपटारे की प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि ईपीएफओ व्हाट्सएप अपनाने की योजना बना रहा है ताकि संपर्क सुविधा को बढ़ाया जा सके। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने ई फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ कल देश भर में हड़ताल की घोषणा की है। बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट संघ ने भी हड़ताल का समर्थन किया है। संघ के अध्यक्ष प्रसन्न कुमार सिंह ने कहा कि 20 मई को प्रदेश की दवा दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कंपनियां नकली, नशीली और अवैध दवाओं की बिक्री कर रही हैं, जिससे समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। दवा विक्रेताओं ने ई फार्मेसी प्लेटफॉर्म पर अंकुश की मांग को लेकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबी क्यूल झाझा तीसरी रेल लाइन परियोजना को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि हावड़ा दिल्ली मार्ग पर क्षमता बढ़ाने के लिए 962 करोड़ रुपए की लागत से इस रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के पूरा हो जाने से इस अति व्यस्त रेलखंड पर यात्रियों और मालगाड़ियों की आवाजाही अधिक सुगम और समयबद्ध हो सकेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इससे हावड़ा दिल्ली मार्ग पर परिचालन क्षमता बढ़ेगी और क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को मजबूती मिलेगी। रेलवे ने पटना और उड़ीसा के खोरधा रोड जंक्शन के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की परिचालन अवधि में विस्तार किया है। पटना खोरधा रोड स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार की सुबह 8:45 पर पटना जंक्शन से खुलेगी और अगले दिन 3:35 पर खोरधा रोड पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को खोरधा रोड से दोपहर 3:15 पर खुलकर अगले दिन सुबह 10:45 पर पटना पहुंचेगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड संयुक्त परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। समिति के द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 8 जून से 22 जून तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। परीक्षा के लिए सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में केंद्र बनाए जाएंगे। बोर्ड ने कहा है कि अभ्यर्थी 28 मई से प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। समिति की वेबसाइट form.bsab.deled.com से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज भभुआ और रोहतास जिले में लू के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान गया जी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि रोहतास, भभुआ, बक्सर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। वहीं चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बनने के कारण राज्य के उत्तरी भागों में मौसम में परिवर्तन की संभावना है। इस दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी, सुपौल, अररिया समेत राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व भागों में आंधी बारिश हो सकती है।
1: दिनांक 20 मई राज्य के उत्तर पूर्व एवं उत्तर मध्य भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर भीषण गर्मी के मद्देनजर कैमूर जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को 23 मई तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने इस संबंध में आज आदेश जारी किया। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। राजधानी पटना में अब पेट्रोल का मूल्य 110.02 रुपये प्रति लीटर और डीजल का मूल्य 94.97 रुपये प्रति लीटर हो गया है। सारण पुलिस ने नशा मुक्त सारण अभियान के तहत जिले के विभिन्न भागों में छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी विदेशी शराब जब्त की। इस संबंध में 14 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। शिवहर जिले में आयोजित भाजपा के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आज समापन हो गया। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे समापन सत्र में शामिल हुए। सुपौल जिले के बलुआ स्थित पुनर्वास स्कूल में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के तहत मेडिकल जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 6 से 7 वर्ष के बच्चों में संक्रमण की स्थिति के आकलन के लिए TAS1 जांच की गई। सुपौल

0: कोलकाता के बीरपुर में भारत नेपाल सीमा के समीप एसएसबी जवानों ने जांच अभियान के दौरान एक नाबालिग लड़की को मानव तस्करों से मुक्त करा लिया। जांच अभियान के दौरान भारी मात्रा में नेपाली शराब और गांजा के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेखपुरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत मेहूस गांव में संचालित वस्त्र निर्माण केंद्र में कार्यरत मजदूरों को विकसित भारत योजना और पीएफ योजना से जोड़ा जाएगा। जिलाधिकारी शेखर आनंद ने आज इस वस्त्र निर्माण इकाई के निरीक्षण के दौरान यह निर्देश दिए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज से सहयोग शिविर की शुरुआत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सारण जिले से राज्यव्यापी अभियान का किया शुभारंभ। राज्य में भूमि संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए बिहार भूमि न्यायाधिकरण के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के मुद्दे पर पार्टी करेगी आंदोलन। और राज्य में औद्योगिक विकास को देखते हुए नबीनगर एनटीपीसी परियोजना का होगा विस्तार। 8-800 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई जाएंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है अररिया जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।
5: अररिया जिले में आम लोगों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। जिले के 12 पंचायतों में इसका भव्य शुभारंभ जिला पदाधिकारी विनोद तुहन ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को शिविरों के सफल संचालन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री दुहन ने कहा कि जन शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निवारण के उद्देश्य से प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को नियमित रूप से इस शिविर का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिविरों में केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी आम लोगों को दी जा रही है, ताकि समाज के अंतिम पायदान तक अधिक से अधिक लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है और अब तक लगभग 71.45% कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणनक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारियां एकत्र कर रहे हैं। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणनक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। इधर जिले में संभावित बाढ़ और सुखाड़ की पूर्व तैयारी को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परमान सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को लेकर विभिन्न विभागों की तैयारी की विस्तृत समीक्षा की गई। जिले के फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने अमृतसर न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस एक्सप्रेस के परिचालन से सीमांचल क्षेत्र में रेल विकास को नई गति मिली है।
6: प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। लगातार हमारे जिले में नई ट्रेनों का सौगात 6 महीना में मिलते रहता है और आने वाला दिन में और भी कई ट्रेनों का सौगात हमारे जिला को मिलने वाला है।
5: अररिया व्यवहार न्यायालय

0: में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुंजन पांडे और जिलाधिकारी विनोद दुहन ने संयुक्त रूप से लोक अदालत का उद्घाटन किया। इस दौरान ट्रैफिक चालानों के निष्पादन को लेकर भारी भीड़ उमड़ी। लोक अदालत में लगभग 1227 मामलों का आपसी सहमति के आधार पर ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया, जिनमें 148 ट्रैफिक चालान शामिल हैं। अररिया जिले में बीते दिनों नागरिक सुरक्षा अभियान के तहत ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिले के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में शाम 7 बजे से 7:15 तक बिजली बंद कर ब्लैकआउट किया गया। इस दौरान चौक चौराहों पर सायरन बजाकर हवाई हमले की प्रारंभिक चेतावनी दी गई, जिसके बाद नागरिकों और संबंधित एजेंसियों ने निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया। जिलेवासियों ने निर्धारित अवधि तक घरों, प्रतिष्ठानों और अन्य संस्थानों की रोशनी बंद रखकर आपातकालीन तैयारी में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। जिला मुख्यालय स्थित नियोजनालय संयुक्त श्रम भवन परिसर में एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया। इस जॉब कैंप में कई पदों के लिए आवेदन लिए गए। इस दौरान निजी कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। निर्धारित योग्यता रखने वाले जिले के सैकड़ों युवाओं ने जॉब कैंप में भाग लिया। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी की ओर से ऑफर लेटर प्रदान किया गया। जिला पदाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में चमकी बुखार, दिमागी बुखार की रोकथाम और जन जागरूकता को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान सदर अस्पताल में 10 बेड का पीकू वार्ड, अनुमंडलीय अस्पताल फॉरबिसगंज में 5 बेड का वार्ड तथा सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चमकी बुखार, दिमागी बुखार के मरीजों के लिए 2-2 बेड आरक्षित किए गए हैं। जिलाधिकारी ने जीविका और आंगनबाड़ी कर्मियों के माध्यम से चमकी बुखार से बचाव को लेकर जन जागरूकता फैलाने का निर्देश दिए। साथ ही पशुपालन विभाग को बड़े सूरों को रिहायशी इलाकों में दूर रखने के भी निर्देश दिए। अररिया जिले में वट सावित्री पूजा का पर्व पारंपरिक आस्था के साथ मनाया गया। इस दौरान अखंड सुहाग की कामना को लेकर सुहागिन महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। सुबह से ही शहर के विभिन्न मंदिरों और वट वृक्षों के आसपास बड़ी संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना के लिए पहुंची और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ पूजा की। महिलाओं ने वट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधकर पति की दीर्घायु की कामना की।
1: अभी आप सुन रहे थे अररिया जिले की हलचल, इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता गौतम सिंह सहगल।
2: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं फिल्म प्रेम रतन धन पायो का यह गीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम रतन धन पायो का यह गीत शान एवं साथी की आवाज़ में। बोल थे इरशाद कामिल के और संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म प्रेम रतन धन पायो का यह गीत सुनिए अन्वेषा विनीत सिंह एवं हर्षदीप कौर की आवाज़ में। बोल हैं हर्षदीप कौर के और संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का है।

अब सुनिए फिल्म प्रेम रोग का यह गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल हैं संतोष आनंद के और संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

उदित नारायण एवं साधना सरगम के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

नमस्कार कार्यक्रम सिंगरहार सुनिहार समस्त गोटे के स्वागतक संग हम छी माला झा। सोम से शुक्र दिन धरि प्रसारित हुआ वाला एहि कार्यक्रम में अपने लोगन साहित्य से संबंधित विविध विषय पर चर्चा सुने छी, ताहू पर सो मैथिली साहित्य पर। आई गद्य साहित्यक जो गप कैल जाए तो एकर क्षेत्र असीमित अछि। कथा छोट व पैघ, खिस्सा पिहानी दुनू, निबंध, जीवनी, यात्रा साहित्य आ उपन्यास लेखन। उपन्यास गद्य साहित्यक एकटा एहन विधा अछि जतः कोनो गपक तथ्यक सम्पूर्णताक संग कहबाक अवसर रहैत अछि। अखन धरि उपन्यास लेखन मे कतेको लेखक लेखिका अपन महत्वपूर्ण योगदान देने छथि, जाहिमे से एकटा बड्ड प्रसिद्ध लेखिका छली नीरजा रेणु। आई ए पुण्यात्मा के पुण्यतिथि छन, आज के दिन ए लोक से विदा भ गेल छली। पिछला बरख 2025 के 19 मई जाय दिन साहित्य जगत में अपूर्णीय क्षति भेल अछि। शत शत नमन। नीरजा रेणु आई अपन सभक मध्य नहीं छथि, मुदा हुनक रचना, हुनक लेखनी, हुनक उपन्यास आ कथा सतत अमर अजर रहत। कामाख्या देवी जे नीरजा रेणु नाम से सेहो सुविख्यात

0: छलथि। 2003 ईस्वी में हिनक कथा संग्रह रितम्भरा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत कयल गेल अछि। सय से बेसी कथा विभिन्न पत्र पत्रिका में प्रकाशित भेल अछि। पोथीक रूप में सबसे पहिल कथा संग्रह थिक धार पियासल। मैथिली कथा धारा जे साहित्य अकादमी नव दिल्ली से प्रकाशित भेल छल, तकर संपादन आ स्वतंत्रताक पश्चात मैथिली कथाक 15 प्रतिनिधित्व कथाक संपादन केने छथि। हिंदी में सेहो एकटा कथा संग्रह प्रकाशित छनि प्रतिच्छवि। धार पियासल कथा संग्रह में लेखिकाक भाषाक स्वाभाविक प्रवाह, सरल अभिव्यक्ति आ कतौ कतौ अनुपम उपमा यथा सूर्यक किरण ननैदक उल्हन जका हुनका तिख लागि गेलनि। चोटकल गाल, आँखि लग झुर्री, खंडहरक स्मृति जगा रहल छल। एहि पोथीक 16 कथा में स्वानुभूतिक रूप, रस, गंध, स्पर्श न्यूनाधिक भेटत, जाहि कारणे स्त्रीलोकनिक परिवेश आ मनः स्थितिक चित्रण संवेदनशील आ विश्वसनीयताक संग लेखिका केने छथि। हिनक कथा में जीवनक यथार्थ पृष्ठभूमिक आकलन सत्यता पर आधारित अछि। निर्जा रेणुक स्त्रीक टीस, वेदना संवेदना, कष्ट, हृदयता, भावुकता, शोषण, उत्पीड़न, परित्याग, प्रदूषण, घर्षणक मर्मांत कथा व्यथा पाठकक हृदय के झकझोरि, सहृदय के मोम सदृश घमादेमी पूर्णतः समर्थ अछि। हुनक स्मृति में आओ सुने छी एकटा कथा, शीर्षक अछि दादी।
1: कथाक शीर्षक भेल दादी। आइ फेर संतुक कानब सुन कान ठाड़ भ गेल। संतु हमर पड़ोसी चौधरी जी के पोता, देखबा में दुब्बर दानर, पिंड श्याम वर्ण, तेजगर स्वभाव, बोल बड़ मधुर, वयस 10 वा 11 बरखक। चौधरी जी टाटा कंपनी में कार्यरत छलाह। रिटायर कलाके बाद गामे आबि गेलाह। एकटा पुत्र छथिन काली, काली विवेकी, पढ़वा में तेज, मुदा कोनो सरकारी नौकरी नहीं भेट सकलन आरक्षणक विधानक कारणे। ई ब्राह्मण थिकाह, से इंटरव्यू नीके भला पर पर्याप्त क्षमता प्रदर्शनों पर नीक नौकरी अर्थात सरकारी नौकरी नहीं भेट सकलन। गाम में अपन जे 2-4 कट्ठा जमीन छलन तकरा तामी कोरी तरकारी उपजाब लगला, मुदा जहिया जहिया कोदारि खुरपी के काज करथि तहिया तहिया देहक हाथक दर्द बढ़ जाइत छलन। कहियो कहियो जोर सेहो भऽ जाइत रहन। नन्ना से पोथी कलमक संग रहलन। ई कोदारि कुरहरिक दुनिया तो देखने नहीं रहथि। तो हम कहा लागल रही जे संतु के कानब सुन कान ठाड़ भ गेल। काली के बेटा भला संतु, ठाकुर जी के जमाए काली के मेधा शक्ति देखि ठाकुर जी के निश्चय भ गेल रहन जे ई व्यक्ति एकटा नीक पद पर स्थापित हेता। आ ओ हुनकर नौकरी से पहिने ही काली के जमाए बना लेलन। पढ़वेक समय में बेटी निस्सू के हेतु ओ बड़ नीक बर चुनलन। कुल शील आचार विचार सबटा उत्तम। खूब धूमधाम से निस्सुक विवाह देवू ठाकुर कालीनाथ चौधरी से करोलखिन। काली चकिया गामक निवासी छलाह। ओ पिता के सेवा निवृत्तिक बाद में गामे में रह लगला। ई गाम में रहब कनिया के हेत अपग्रहण छलन। से अपन 5 वर्षक पुत्र के सबसे बेसी महग स्कूल में जे चकिया से 15 किलोमीटर दूर छले ताहि में नाम लिखवा दिलखिन। स्कूलक बस 5 बजे भोर में NH पर अबै छले। ई मुख्य सड़क चकिया से 0.5 किलोमीटर दूर पर छे। संतु के 4 बजे भोर में उठा के तैयार कयल जाय छले। बच्चा के कानब सुनी दादी के रोइया ठाड़ भ जात रहे। बच्चा के डेरा धमका नींद तोड़ल जात छले। पिता काली साइकिल से बस स्टैंड धरि बच्चा के पहुँचा दैत छलखिन। 3:30 बजे धरि छुट्टी होते रहे। संतु 4 बजे धरि घर आपस आबि जाय छल। अबैत देरी भोर

जान आ लगले भोजने काल में प्रश्नक झड़ी की सब पढ़ल हैं देखो कापी। दादी के अंशों हाथ लगलन एक दिन ठोक दिल्छन एखने तो आलिस बच्चा स्कूल से सासुक एतबे बाजब छन कि पुतोह गरजल गलखिन ई चुप रहत अपन बेटा के तो घर बैसल छिन अब हमरो सिरे। सास के मन भेलन बहुत किछ कहबाक मुदा चुप्पे रहली छोट सा मुँह नहीं लगायब बच्चा छैक धर बोत गर। ओही दिन हलसेत पुलसेत स्कूल से आबि गेल रहे पापा हमरा 86% नंबर भेटल अछि। माय दौड़ के बाहर एलखिन किया के 100% किया के ना आँख गुड़ पिता बच्चा दिस तकलन संतु कानन सुख भग माय दिस तकलक मायक दृष्टि बर्फक चट्टान सन कठोर आ सर्द रहे बच्चा कानय लागल छल। दादी अपन कोठली से बाजय लगली हो स्कूल से एते दिन फलसेट करय लगे छे बच्चा दौड़ के दादी लग आबि जात अछि। बच्चा के माय घीच डेंगाबे लगे छैक आँखि गुड़ गुड़ जरा आयब अपशब्द कहि अपमानित करब माता पिता के नित्यक चर्चा भ गेल रहे। बच्चा के खूब सभ्य अनुशिष्ट आ उच्च कैरियर के हेतु सावधानी जरूरी छैक माता पिता कहब रहे। संतु आब राति भर जगैत छल मायक सोझा में किताब कापी हाथ में ल मुड़ी नीचा करैत छल आ जखन ओ दुनू अपन कोठली में ऊपर जात रहे त बच्चा टीवी खोल दैत छल। दादी कखनो के पोता के घर में जरैत लैत देखबा लेल हुलकी मारे छले त पोता आँखि गुड़ के कहैत छल अहाँ एत से जाओ। संतु के मुस्कुरेनाइ खत्म भेल जा रहल छले लॉकडाउनक समय रहे मेघ टिपिर टिपिर बरस रहल छले हमरा नींद भेल जा रहल छल तराक तराक खट खट खूब जोर से आवाज भले बुझ पड़ल जे मारी पीट तोड़ फोड़ भ रहल छै पड़ोसिया के घर सटले अछि की भ रहल छै। डर आ उत्सुकता बढ़ गेल कतबो लॉकडाउन छै तैयो देख आबी जे संतु एते कान किएक रहल अछि। दरवाजा धरि गेलहुँ तँ संतु के दादी ग्रिलक ताला खोललनि हम लग गेलियनि ओ थर थरैत छलीह कहल लगली आइ काल्हि टी वी उठा के पटकि देलकै बच्चाक लती खराब भेल जाइ छै से कहैत अछि पढ़ाई चौपट भ जतै से माय बापक एक मत छै आओर ओम्हर संतु के देह में जना पांच मर्दक दम आबि गेल रहे ड्रेसिंग टेबल खिड़की केबाड़ सबटा तोड़ैत पीटैत बिहाल छल जोर जोर से कानी रहल छथि हमर टी वी तोड़ि देलनि पापा स्कूल नहीं जाओ ककरो से बाजू नहि दोस्त सब नहि बनाओ कोरोना छै कोरोना छै आ संतु कनैत कनैत चिकरि रहल छल पुनः हिचकऽ लागल छल। बच्चा हिचकैत हिचकैत कखन चुप भेल से नहि बुझलियै संतु के दादी से गप सप होइत रहल बुझलियै जे ओ कोनो रोग से ग्रस्त अछि मनोचिकित्सक कहैत छथिन जे एकरा नीक जकाँ आराम आ समय पर भोजनक आवश्यकता छै किछु औखत सेहो देल गेलै। आइ दुर्गा पूजा के षष्ठी तिथि छियै बेलनौती आइये हेतै षष्ठी से दशमी धरि गामक बुतरुक सभक हाज मेला देखब आरती गायब फूल लोढ़ब भरि भरि फूलडाली मंदिर पहुँचायब ई टहल टिकोरा करैत रहल अछि। बुजगरी जी सबके अपन अपन काजक भार दऽ देने छथिन मुनमा रितेश अभिनव आ संतुक बैसक आओर छौड़ा सब हलसैत फुलसैत अंगना आब दादी से पुछलकनि बहुत दिन से संतुके नहीं देखे छियनि हाँ ओ अपन पीसी लग गेल छथि। दादी उदास होइत बजलिए कहिया ओता एकटा बच्चा पुछलकनि एखन अबै में देरी छनि दू मासक बादे कहब तो दसवीं में नहीं रहला नहीं दादी के छोट सन उत्तर छल। आ हम सब साँझक आरती संतुक सँ गबैत छी दुर्गा जी के मंदिर में एकटा बच्चा बाजल एक बेर ओ संग नहीं रहत दुर्गा जी के कहियो जे अगिला दसवीं में संग रहे। दादी के आँखि में नोर आबि गेल रहन मन कोनादन करय लगलन अपन कोठली आबि टी वी खोल समाचार देखय लगल बहुत बच्चा के ठक भुसिया के ओ इकट्ठा कने रहे के धर्म परिवर्तन कऽ देबा लेल कहैत रहे लोभ देने रहे कि जे तोरा नौकरी भ जतो बहुत बढ़िया। दादी के मन टंगले रहे पोता कतौ अछि की करैया से केओ नहि कहि रहल छै ओ तऽ भुसिये संतु के मित्र के कहने रहथिन जे संतु पीसी लग गेला है बात सत्य तऽ ई रहे कि जे हुनका बुझले नहि रहनि जे बच्चा कतौ गेल छै आब ओ जमाना नहीं छै जे धियापुता पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कयल जाए सब स्वतंत्र भिन्न दादी।

0: ऑक्सीडेटेड छ, दादा दादी ऑक्सीडेटेड गैप ऑफ जेनरेशन, ई शब्द सब दादी पहिने सुनने नहीं रहे थे। आप बात बात में सुनैत सुनैत बुझऽ लगलखिन हैं। आ एम्हर ई समाचार सब एकाएक मेघक टिक कर आकाश के झाँपि दिलकै, मेघ सँ आकाश आक्रांत भ गेल रहैक। ये टीवी बंद करो, मेघ गरजैया, पतिक स्वर सुनि संतुक दादी टीवी बंद कऽ देलनि। मेघक गर्जन बढ़ि गेल छलै, केबाड़ खिड़की बंद कऽ ओछान पर ओंघरा गेलै।
1: दादी एहि कथाकर शीर्षक छल जे निश्चय निर्जा रेणुक पूर्व प्रसारित कथापाठ छल, वास्तवमे बड्ड मार्मिक छल। कामाख्या देवी मूलतः नवटोल गाम मधुबनीके छलथि। जन्म 11 अक्टूबर 1945 के भेल छलनि आ सासुर बिट्ठो। हिनक दोसर कथा संग्रह रितम्भरा तकनीकक शैलीमे अछि। लालित्य गुणसँ परिपूर्ण एहि पोथीमे 18 गोट कथा अछि, ताहिमे कौआ आ सुत वालीक कथा बेस चर्चित भेल अछि। कौआमे लेखिका कोनो पत्रिकामे एकटा विश्व सुन्दरीक चित्र देखि बाजि उठै छथि जे एहिसँ बेसी सुन्नरि तँ गामक मुँगिया अछि, जकरा भरि पोख भोजनो नहि भेटैत छैक। एकर परतर ई की देह उघरी सब कऽ सकतै। तहिना सुइती वालीमे सांस्कृतिक अंतर अछि। साउस मैथिलाइन आ पुतोह पंजाबीन, तें विषम स्थिति घरमे सदिखन बनल रहैत अछि आ अंतमे बुधियारे की अंत होइत छैक। कहबाक प्रयोजन नहि जे घटना सभक संयोजन पात्र सभक चयन आ स्थान सभक निरूपण करबामे सिद्धस्त निर्जा रेणुक लेखनी एकटा विराटता के सहज के रखने अछि।

0: अरविंद कुमार झा के स्वर में सुन रहल छलहुँ ई गीत। देशक रक्षा जतौ सिपाही सब करै छथि, ओतै समाजक दशा आ दिशाक विकास में कलमक सिपाही अमिट योगदान दैत रहल छथि। आई विशेष रूप से ओहि पुण्यात्मा के स्मरण कऽ रहल छी जिनक कलम में, लेखनी में अद्भुत शक्ति छल, जे हृदय के स्पर्श कऽ जाइत अछि। हिनक कथा एक क्षणक सुख में मानव जीवनक तनुक सन स्थितिक मर्म स्पर्शी अनुभव व्यक्त भेल अछि। एहि कथा में सजीव चरित्र चित्रण, रोचक कथोपकथन, संतुलित कथानक, घटनाक संयोजन उत्कृष्ट रीति सँ उपनिबद्ध अछि। कथा साहित्य उपन्यास लेखनक संगे संग मैथिली आलोचना साहित्य में सेहो नीरजा रेणुक अमिट योगदान रहल अछि। दू महाकविक दृष्टि भेद तुलनात्मक समालोचना थिक, जाहिमे विद्यापति ओ कालिदासक तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कयल गेल अछि। एकर अतिरिक्त नीरजा रेणुक गौरी शंकर काव्य सामाजिक पृष्ठभूमि 1982 में, गाथा सप्तशती आ आर्य सप्तशती में विरह वर्णन, तंत्रनाथ झा अभिनंदन ग्रंथ तुलनात्मक आलोचनाक कोटि में परिगणित कयल जा सकैत अछि। नीरजा रेणुक मैथिली कथा धाराक भूमिका में जीवनक कथा, नैतिक मूल्य, चिंतन, सामाजिक परिवेश समेत और कतेको रचना सँ कथा साहित्यक इतिहासक बड़ पांडित्यपूर्ण विवेचन विश्लेषण विदुषी केने छथि। साहित्यकार रमानंद झा रमन के वक्तव्य छनि जे ओ मैथिली भाषा में महिला विदुषी परम्पराक मजबूत हस्ताक्षर छली। हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करैत सुनी विनीत कुमार ठाकुर आ नीरजा रेणुक मध्य भेल गपशप के किछ अंश जे निश्चय पूर्व प्रसारित अछि।
1: डॉक्टर कामख्या देवी जे नीरजा रेणु के नाम से मैथिली में लेखन कर रहल छथि आ हिनक कथा अपने सब सुनहु हैब आकाशवाणी दरभंगा से सेहो प्रसारित कैटा कथा भेल अछि, त हिनका से आब गप करै छी। सरिसब पाही बगल में ई बिठो गाम अछि, त एहि गामक निवासी भेला पर केहन अनुभव करै छी?
2: एहि ठाम ई हमर ससुर भेल आ जहिया हम एलहुँ तहिया तऽ बड्ड पर्दा छलैए, तऽ बहुत पर्दामे हमसब रहै छलहुँ हँ, जतेक कनिया ओहि समयमे आयल छलखिन हँ सब। लेकिन हमर घर पर पोथी सब छलै हँ, हमर ससुरके राखल कीनल, हिनको कीनल छलनि हँ। तऽ आब की करू, मोन अँगनाइ छलै हँ, तऽ पोथी सब देखै छलियै अलमारी खोलि खोलि के। एहिठाम संस्कृतके छलै, ईसब संस्कृतक विद्वान छथिन, ताहिमे मेघदूत छलैए, लेकिन संस्कृत सिखलहुँ नहि बच्चासँ, अंग्रेजी सिखलहुँ। तऽ एहिमे मेघदूत जे भेटल ओकर हिंदी व्याख्या छलैए, ओ बड्ड बढ़िआँसँ व्याख्या कयने रहथिन, तऽ ओहिमे बड्ड नीक लागल। शाकुंतलम छलैए, ओ बहुत नीक लागल। रघुवंश छलैए, सबटा जे छलैए संस्कृतके पोथी एहिठाम, से हिंदी ओकर अनुवाद, हिंदी व्याख्या, तऽ हमरा संस्कृत काव्य दिस पढ़ैके रुचि भेल एतऽ। लेकिन कतबो कोशिश कयलहुँ तऽ संस्कृत भाषा हम नहि सीख सकलहुँ। ओ बच्चासँ जे संस्कार रहै छै ओहिमे बेसी अवगत होइ छै, तऽ पढ़ै छी, ओहिपर हम लेखो लिखलहुँ बहुत रास काव्यपर, थीसिस सेहो ओहीपर लिखलहुँ हँ। लेकिन भाषा हमरा से बाजऽ आ लिखऽ संस्कृत से नहि आयल, तकर हमरा कचोट अछि। आ एहिठाम एक दोसरसँ बड़ बढ़िआँ जकाँ सबसँ मिलल छै, सब छलैए, आब सब कटल कटल भऽ गेलैए, सब तऽ बाहर बाहर सब गेलखिन हँ, तऽ थोड़े कटल जकाँ।
1: तऽ ई जे एकटा कटावके अपने बात कयलहुँ जे जुड़ाव रहै छलैए पहिने, ओ जे एखन बदलि रहल अछि समय, ओकरा सङ्ग सङ्ग ई जे दूरी बढ़ि रहल अछि, अपने जे कथा रचना करै छियै ओहिमे ओकर संकेत, ओकर वर्णन रहैत अछि?
2: देखियौ, एतऽ तऽ हम बेसी

0: दिन रहबे नहि केलहुँ। आरम्भमे हम बेसी काल रहै छलियै यऽ नैहरमे, आ बैसल बैसल की करू तऽ अपन कैरियर बना लेलहुँ। तैँ एकर बाद फेर हिनकर जहन नौकरी भेलनि तखन इलाहाबादमे रहलहुँ, तऽ इलाहाबादमे 32 बरख रहलहुँ। ओहूठाम हमरा पोथी सब खूब भेटल, ई गंगानाथ झा विद्यापति जाहिमे ई काज करैत रहथि ओकर छलैए, से बहुत विशाल पुस्तकालय ओ छलैए, आ सब चिन्है छलथि। कोनो पोथीके उपलब्ध करेबामे हमरा से कोइ बाधा नहि कयलनि, हमरा खूब पोथी सब। लाइब्रेरी जाइ छलहुँ हँ, लगै छलै जेना बड़का मन्दिरमे आबि गेलहुँ हँ, तते बढ़िआँ ओहिठाम छै। एकटा छलैए लाइब्रेरी जयकान्त मिश्रके, तऽ डॉक्टर जयकान्त मिश्र बहुत हमरा मानितो छलै, हमर आलेख सब पढ़ै छलै हँ, मिथिला मिहिरमे छपल छलै, तऽ बहुत प्रोत्साहितो कयलनि। आ हुनका मैथिली समितिके एकटा खूब पैघ लाइब्रेरी छलनि हँ। तऽ इलाहाबाद हमरा सब दूटा सुख बड्ड भेल, पोथीके आर गंगा स्नानके। तऽ हप्तामे कम से कम तऽ एक दिन हम जाइते छलहुँ हँ, दुइयो दिन चल जाइ छलहुँ हँ। ओहिठामक हमरा बहुत नीक लागल। जखन रिटायरमेंट भेलनि हिनकर तऽ गामके प्रति बेसी मोह छलनि हँ, तऽ निर्णय कयलहुँ हमसब जे एके ठाम रहब, आ बुढ़ारीमे तऽ एतेक दम नहि रहै छै जे ओतौ जाय आ ओतौ रहै, ताहि दुआरे गाम चल अयलहुँ, आब एतय रहै छी आ एतय नीक लगैए।
1: गामके जे परिवेश होइत अछि ओ तऽ सदिखनसँ नीक रहल अछि, नहि कोनो बनावटीपन, नहि कोनो तरहक कृत्रिमता, तऽ नीक तऽ लगबाक चाही।
0: एहिठाम देखलियै जे वायु जल ईसब जतेक शुद्ध भेटै छै ततेक तऽ कतौ हम कहै छी भारते टा मने विश्वमे एतेक शुद्ध वायु एतेक नीक जल की माटि भेटब दुर्लभ छै। तखन तऽ हमरा सबके नहि, एहि दुआरे हमरा सबके उपलब्ध तऽ ओतबा भइए गेलै हँ, ओहि लए तऽ कीनऽ नहि पड़ै छै। सड़क बनलैए, आब तऽ हवाई जहाजके सेहो सुविधा दरभंगामे भऽ गेलैए, तऽ हमरा ओहिठाम नीक लगैए। आ अहाँ ई कहब जे प्रेरणा भेटल हमरा इलाहाबादसँ, आनन्द भवन छै, आनन्द भवन छै जतय मोतीलाल नेहरू जे बनौने छथिन, जहिया हम गेलहुँ 1972 से ओम्हर बाटे जे हम अबैत रही शहर, अल्लाहपुरमे डेरा रहै, शहर अबैत रही तऽ एकदमसँ तेहन जंगल रहै जे हिंस पशु सब ओहिठाम। तऽ हम कहलियै जे जखन मोतीलाल नेहरू जे आइ तऽ एतेक भयंकर जंगल छै, आ जहिया मोतीलाल नेहरू किन्ने हेता तहिया कतेक, तऽ ओहिसँ तऽ नीक हमरा अपन गाम अछि, ओहिठाम तऽ बसल छै, तऽ हम किया अपन घर छोड़ू। आर तऽ सबटा भऽ गेलैए, शहर बनि गेलैए, लेकिन जहिया हम ओतबे 30-32 बरखके, आब तऽ 60 बरख भऽ गेलैए हमर जहियाके गप कहै छी, तऽ लेकिन ओ जखन ओहिमे बैसि गेला आ ओहिठाम शानदार छै, खूब प्रतिष्ठित छै, मोहल्ला बनि गेलै, तऽ गाममे तऽ सहजे बनि जेतै, लोकसभ छै हे, सड़क छै हे, ओतेक जंगल नहि छै। तऽ हमरा ओहो एकटा एहिठामक माटि पानि आ एकटा हुनकर जे सोच, मोतीलाल नेहरूके जे सोच छलनि हँ से, तऽ ओ दुनू टाइम लए कऽ हमरा भेल गामेमे रही। हिनकर सबसँ बेसी पहिने हिनकर रुचि सेहो।
1: आगू बढ़ैमे तऽ पूरा परिवारक सङ्ग होइत अछि, तऽ अखन जे छै अखन लेखन कते चलैया?
0: लेखन ओ नियमित रूपे हमरा कहियो नहि रहल, हम जखन खाली रहलहुँ तखन छलै हँ, तऽ किछु किछु एखनो लिख रहल छी, लेकिन अधखिज्जू अइ, बहुत रास चीज पूरा नहि होइए, तकर कचोटो होइए, कनि व्यास बढ़ि गेलै। तऽ पहिने छलै हँ जे लिखै छलहुँ हँ, आ जे नहि पूरा भऽ सकल से रातिमे कऽ लै छलहुँ हँ। आब हमरा दम नहि अछि जे रातिमे जागिके ओ जकरा विचार आ रहल छै लिखल, तऽ बहुत पछुआ गेलहुँ हँ, किछु किछु लिखल अइ, कतहु कतहु छिड़िया लै सएह।
2: विनीत कुमार ठाकुर आ निर्जा रेडूके मध्य भेल गपसपके किछु अंश अपने लोकनि सुनि रहल छलहुँ, जे निश्चय पूर्व प्रसारित छल। आकाशवाणी दरभंगा दिस एहि कार्यक्रमक माध्यमे पुण्यात्माके पुनः शत शत नमन करैत अपने लोकनिसँ आज्ञा चाहै छी। नमस्कार।

0: अभी आप मैथिली कार्यक्रम सिंहहार सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। रात्रि के 8:45 होने ही वाले हैं। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण

0: समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यो बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता है।

देखा जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की यह दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश यानी मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस

0: सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour.

0: talks to protect human life, Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शिमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तिजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी और भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तिजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि तरफेन का एक वाज़ह और मुत्तहिदा मौकिफ है, जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है।
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के वज़ीरे आज़म ने जमहूरियत की अपनी मुश्तरका अकदार, उसूलों पर मबनी आलमी निज़ाम और आज की बदलती हुई दुनिया में कसीर सतही इदारों में इस्लाहात की फौरी

में आवारा कुत्तों को किसी दूसरे मकाम पर ले जाने और उनकी नसबंदी करने से मुतालिक अदालत के इससे पहले के फैसले को वापस लेने की दरख्वास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि वकार के साथ जिंदगी गुजारने का हक आजादी के साथ चलने फिरने के हक का भी अहाता करता है, जिसमें कुत्तों के काटने से होने वाले नुकसान का खतरा न हो। मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज जुमेरात को फाल्टा असेंबली हलके के लिए होने वाले जिमनी इंतखाबात से अपने कागजात नामजदगी वापस लेने का ऐलान किया है। जनाब खान ने एक बयान में कहा कि उनका ये फैसला खित्ते में अमन और तरक्की बनाने की गरज से लिया गया है और उन्होंने बीजेपी की क्यादत वाली नई सरकार की जानिब से फाल्टा के लिए ऐलान किए गए खसूसी पैकेज का खैर मकदम किया। एक बयान में तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जहांगीर खान के नाम वापस लेने का फैसला उनका अपना निजी फैसला है और ये पार्टी का फैसला नहीं है। अब जबकि खान इंतखाबी मैदान से बाहर हो गए हैं तो अब मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार दीबांशु पांडा, कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुलरजाक मुल्ला और सीपीआईएम के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी के दरमियान है। रूस ने तस्दीक की है कि भारत की सदारत में इस बरस नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत करेंगे। जनूबी अफ्रीका में रूसी सिफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक पोस्ट में पुतिन के एक अहम सेक्रेटरी यूरी योशाकोव के हवाले से कहा कि रूस के सदर 12 और 13 सितंबर को मुनक्किद होने वाले इस समिट में हिस्सा लेंगे। एक साल से भी कम अरसे में जनाब पुतिन का भारत का ये दूसरा दौरा होगा। वो पिछली मरतबा 23वीं भारत रूस सालाना समिट में शिरकत के लिए नई दिल्ली आए थे, जो दिसंबर 2025 में हुई थी। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने जुमेरात तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रात के वक्त गर्मी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने कल के लिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में बहुत शदीद गर्मी की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जनूब मगरबी बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, साहली आंध्र प्रदेश, यानम, मराठवाड़ा और ओडिशा में भी गर्मी में तेजी आने का इम्कान है। इस दौरान मौसमियात के महकमे ने इस माह की 21 तारीख तक अंडमान और निकोबार जजायर, तमिलनाडु, पुडुचेरी, क्राइकल, केरलम, माहे और लक्षद्वीप में शदीद बारिश की पेशगोई की है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC ने तालीमी साल 2026-27 के लिए उर्दू जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए दरखास्तें तलब की हैं। ऑनलाइन दाखिले का अमल शुरू हो चुका है और ख्वाहिशमंद तलबा इदारे की सरकारी वेबसाइट के जरिए 26 मई तक दरखास्त दे सकते हैं। इंस्टीट्यूट के मुताबिक दाखिले के लिए एंट्रेंस इम्तिहान 1 जून को नई दिल्ली में IIMC के हेडक्वार्टर्स में होगा। किसी भी मंजूरशुदा यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर्स डिग्री हासिल कर चुके ग्रेजुएट तलबा इस कोर्स के लिए दरखास्त दे सकते हैं। फाइनल ईयर या सेमेस्टर का इम्तिहान दे रहे तलबा भी दाखिले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। अफगानिस्तान के साथ एक क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक रोजा बैन अलाक़वामी मैचों की आइंदा घरेलू सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। शुभमन गिल टीम के कप्तान रहेंगे और KL राहुल को नायब कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल ODI टीम के भी कप्तान रहेंगे, जबकि सुरेश अय्यर नायब कप्तान बनाए गए हैं। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और ऑलराउंडर खिलाड़ी जडेजा को आराम दिया गया है। स्पिन गेंदबाज मानव सुथर और गेंदबाज गुरनूर बरार अपना पहला टेस्ट मैच खेलेंगे, जबकि प्रिंस यादव को पहली मरतबा ODI टीम में शामिल किया गया है। टेस्ट मैच 6 जून से मुलानपुर में खेला जाएगा। इसके बाद 14 जून से धर्मशाला, लखनऊ और चेन्नई में ODI मैच खेले जाएंगे। IPL क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान मैच जारी है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 221 रन का निशाना रखा है। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वजीर आजम ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने NEET UG के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज़ के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शिमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई भी की है।
और क्रिकेट

0: क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविधा कार्यक्रम, इसके अंतर्गत सुनिए हिंदी में वार्ता। वार्ता का विषय है समाज निर्माण में सकारात्मक सोच।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सभ्य समाज के निर्माण में उसके सकारात्मक सोच की भूमिका अहम होती है। आज के आधुनिक युग में हम सभी असहिष्णु होते जा रहे हैं। बढ़ते भौतिकवाद और सिकुड़ते सरोकार के इस युग में किसी को किसी से बहुत खास मतलब नहीं रहा है। हम और हमारा समाज लकीर के फकीर होते जा रहे हैं। कभी कभी इसकी परिणति सौहार्द के ताने बाने उधेड़ते हुए दिखाई देने लगती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में बढ़ती असहिष्णुता हमें चौंकाती भी है, यह हमें डराती भी है। अपने क्षुद्र हितों के लिए कई बार इस असहिष्णुता का खामियाजा गंभीर हो जाता है। हमारी सोच का विज्ञान भी अजीब है। किसी नकारात्मक प्रक्रिया पर वह तुरंत तवज्जो देता है, अमल करता है, लेकिन 100 अच्छाइयों सकारात्मक प्रक्रियाओं से वह जानबूझकर अनजान बना रहता है। समाज में रोजाना अनेक घटनाएं घटती हैं जिनमें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ती है। हमारे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द, एकता और सहिष्णुता की परम आवश्यकता है। कुछ लोग एक दूसरे के मनोभावों को अपने हित में इस्तेमाल करने की कला बखूबी जानते हैं। ऐसे में देश की सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव बनाए रखने और इसके पीछे खड़े तत्वों की पहचान हम सब के लिए बड़ा मुद्दा है। सभ्य समाज नकारात्मकता से नहीं सकारात्मकता के पैरों से चलकर ही खड़ा होता है। ख्वाब देखने के लिए नींद चाहिए। नींद तभी आएगी जब मन शांत हो। नकारात्मकता न सोती है न सोने देती है। भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति अपनी मिसाल खुद इसलिए है कि इसकी सहिष्णुता जीती और जीने देती है। अनेकता में एकता की ऐसी मनमोहक निरंतरता शायद ही कहीं और देखने को मिले। यही देश की ताकत है, यही इसकी पहचान, व्यवहार और किरदार है। इस पर चोट पड़ती है तो दिल दुखना स्वाभाविक है। भारतीय समाज की गहरी मानसिकता को उजागर कर देश को गौरवान्वित करने की आवश्यकता समय की मांग है। नकारात्मकता पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकती, पर सकारात्मकता को छोड़ना भी नहीं चाहिए। मगर अच्छाई और सच्चाई की लकीर को इतना बड़ा कर देने का प्रयत्न जरूर किया जाना चाहिए कि बुराई की लकीर अपने अस्तित्व से शर्माने लगे। हमेशा से भारतीय समाज की चार खूबियां रही हैं: सामाजिक व सांस्कृतिक बाहुल्य, अनेकता में एकता, सभी को अपने में समेट लेने की शक्ति और वैचारिक व अपनी विश्व दृष्टि के अनुसार जिंदगी गुजारने की स्वतंत्रता। यदि इस दृष्टिकोण से हम देखें तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय में असहनशीलता और संकीर्णता बढ़ी है। हमारी सामाजिक सहिष्णुता बहुलवादी चरित्र और भाईचारे की सदियों पुरानी परंपरा रही है। आज हमारे समाज में असहनशीलता

और वैचारिक एवं आस्था कहीं से भी मेल नहीं खाते। समाज और देश में बढ़ती असहिष्णुता हमारे हजारों साल के अतीत और संस्कृति के विपरीत हैं। यहाँ तक कि ऋग्वेद में भारतीय समाज की मिश्रित संरचना और बहुलवादी चरित्र का जिक्र है। हमारे देश की संस्कृति सदियों के सम्मिलन और एकीकरण से विकसित हुई है। आज का समाज हमेशा नकारात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करता है। अपने साथ नहीं रहने

के सम्मिलन और एकीकरण से विकसित हुई है। आज का समाज हमेशा नकारात्मक सोच का प्रतिनिधित्व करता है। अपने साथ नहीं रहने वाले को लोग अपना विरोधी ही समझने लगे हैं। तर्कशील भारतीय समाज वाद विवाद अथवा तर्क वितर्क के बजाय असहिष्णु होता जा रहा है। ऐसी सोच और प्रवृत्ति सभ्य समाज के लिए घातक और चरित्र संरक्षण में मुख्य बाधक है। हम जिस समाज में जन्म लेते पढ़ते और अंत में अलविदा कहते हैं, उस समाज में हमें तय अनुशासन का पालन करना पड़ता है। जन्म से मरण तक हमारा जीवन अनुशासन से बंधा होता है। आज हमारे समाज का वातावरण बड़ी तेजी से दूषित व समाज विरोधी होता जा रहा है। सभ्य समाज के निर्माण में हर धर्म और जाति का अहम योगदान होता है। समाज का निर्माण किसी जाति या धर्म विशेष से नहीं, बल्कि सभी धर्मों और जातियों से बनता है। ईश्वर ने मात्र एक दुनिया बनाई, पर हमने अपने स्वार्थ के कारण भारत, जापान, अमेरिका, ईरान, इराक आदि बना डाले। ईश्वर ने मात्र एक मानव जाति का निर्माण किया, पर हमने अपने निहित स्वार्थ की खातिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन आदि धर्मों में स्वयं को बांट लिया। आज भी हमारे समाज में सभ्य लोगों की कमी नहीं है। अनेक सकारात्मक सोच समाज को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। समाज में जो भी सामूहिक कार्य होते हैं, उनमें समाज के सकारात्मक सोच वाले लोगों की भूमिका अहम होती है। हम समाज में रहते हुए नित्य प्रति अपनी नई नई घटनाओं से रूबरू होते हैं। नकारात्मक सोच और प्रवृत्ति के लोगों से समाज को काफ़ी हानि होती है। वहीं सकारात्मक प्रकृति के लोगों की भूमिका से हमारा समाज सभ्य और खुशहाल बनता है। आदर्श समाज के रूप में हमारी प्रशंसा होती है। नकारात्मक सोच ने हमारे समाज को काफ़ी नुकसान भी पहुंचाया है। समाज में होने वाले लड़ाई झगड़े को समाज में मिल बैठकर सुलझाने की बजाय कोर्ट कचहरी तक ले जाने में नकारात्मक सोच हावी हो जाता है। आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर पड़ जाते हैं। यदि हमारे समाज में सकारात्मक सोच को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा जाए, तो हम भी विकास के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। घृणा और असहिष्णुता का वातावरण हमारे सभ्य समाज के विकास में रुकावट डालता है। आज का समाज आधुनिक धुन में संकुचित होता जा रहा है, और इस भागदौड़ की जिंदगी में किसी से किसी को कोई मतलब भी नहीं रहता। हर व्यक्ति एकल परिवार के रूप में अपनी दुनिया बसा रहा है। यहाँ भी सकारात्मक सोच का घोर अभाव है। नकारात्मक और असहिष्णु सोच के कारण ही संयुक्त परिवार का विघटन जारी है। घर से लेकर संसद तक सकारात्मक सोच की कमी के कारण ही कार्य प्रणाली प्रभावित हुई है। हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, यदि उस पर खूब विचार करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। महात्मा गांधी का कहना है कि हिंसा का एक रूप असहिष्णुता है और लोकतांत्रिक भावनाओं के विकास में रोड़ा है। असहिष्णुता की बढ़ती प्रवृत्ति और भय का माहौल हमारे समाज को खोखला बना रहा है। सकारात्मक सोच से हम दूर भाग रहे हैं। असहिष्णुता और नकारात्मकता का प्लेग तेजी से समाज और देश में फैल रहा है। सहनशीलता का घोर अभाव देखा जा रहा है। अदृश्यता के कारण ही अज्ञानता का जन्म होता है। भारत का राष्ट्रीय जीवन का आधार सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक है। हमने सकारात्मक सोच का त्याग कर विकास की अंधी दौर में सब कुछ पाने के बावजूद उन तत्वों को खो दिया है जो राष्ट्र की आत्मा है। भाषाई और जातीय विद्वेष ने हमारे सकारात्मक सोच को विखंडित किया है। अमीरी गरीबी की गहरी खाई इसे निगल रहा है। सामाजिक असमानता हमारे बीच वैमनस्यता का विष बो रही है। आज हमारे समाज और राष्ट्र में

0: बुद्धिजीवियों एवं श्रमजीवियों में कोई तालमेल नहीं है। आज नकारात्मक सोचने व्यक्ति परिवार और समाज के बीच का संबंध को तोड़ने का काम किया है। ज्ञान और कर्म के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। हमारी इच्छा शक्ति कमजोर हुई है। हमने संस्कृति के विरुद्ध कार्य किया है। इसके बावजूद हमने सकारात्मक सोच के बल पर समाज और राष्ट्र को उजान्वित करने की भरपूर कोशिश की है। भारत एक शक्ति है। भारत राष्ट्रों का गुरु है। भारत के सकारात्मक सोच की शक्ति ने विश्व को मार्गदर्शित किया है। हमारे समाज में जातिगत विषमता अनेक रूपों में उभरी है। आज के वर्तमान समाज में सकारात्मक सोच का घोर अभाव है। इसी कारण हमारा समाज विघटन के कगार पर पहुंच गया है। आज भी हमारा समाज गंभीर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पिछड़ेपन का शिकार है। आज मजबूत समाज के निर्माण में नकारात्मकता को त्याग कर सकारात्मक सोच को अपनाना समय की मांग है। सर्वप्रथम हमें चरित्रवान नागरिकों के गढ़ने की आवश्यकता है। चरित्रवान और सकारात्मक सोच वाले नागरिक ही किसी भी समाज और राष्ट्र के निर्माण में बुनियाद से लेकर गुंबद तक के निर्माण में सहायक होते हैं। इसके लिए उनके अंदर सकारात्मक सोच को विकसित करने की आवश्यकता है। समाज में संपन्नता लाने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाने की सख्त जरूरत है। तभी हमारा समाज और राष्ट्र विश्व पटल पर अग्रणी साबित होगा। अब समय की मांग है कि हम समाज और राष्ट्र के निर्माण में नकारात्मक सोच को त्याग कर सकारात्मक सोच के साथ अपनी ऊर्जा को भलीभांति लगाएं। अंत में यह कहा जा सकता है, यदि हम सभ्य समाज के निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाना चाहते हैं तो हर हाल में सकारात्मक सोच का दामन पकड़ना ही होगा। तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित होकर देश दुनिया में समाज का नाम रोशन करेगी। इस प्रकार सभ्य समाज के निर्माण में सकारात्मक सोच की भूमिका अहम है। हमें हर पल सकारात्मक सोच अपनाने की सख्त जरूरत है।
1: अभी आप हिंदी वार्ता सुन रहे थे। वार्ता का विषय था समाज निर्माण में सकारात्मक सोच की भूमिका। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

0: बलते उठ जाओ कि एकता इजोतक पहिल किरण संग फुलाय लगैत अछि, फूल प्रकृति में घोराय लगैत अछि, ऊर्जा आबा वाला काल लेल
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
2: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नै हैत तो खेती नै हैत, आ खेती जँ नै हैत उपजा नै हैत तो हमरा लोकनि खायब की।
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
5: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
6: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
5: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यार किया तो डरना क्या का यह गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, बोल थे समीर के और संगीत निर्देशन जतिन ललित का था। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति जुनून फिल्म का यह गीत सुनिए अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, बोल हैं सुरेंद्र साथी के और संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है।

अब सुनिए सड़क फिल्म का यह गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, बोल हैं समीर एवं सुरेंद्र साथी के, संगीत निर्देशन रोविन भट्ट का है।

0: अब सुनिए सरक फिल्म का यह गीत अनुराधा पौडवाल एवं कुमार सानू की आवाज में।
1: बोल हैं समीर एवं सुरेंद्र साथी के और संगीत निर्देशन रोविन भट्ट का है।

अभी आप सुन रहे थे सरक फिल्म का यह गीत अनुराधा पौडवाल एवं कुमार सानू की आवाज में। इसी गीत के साथ एक फनकार कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। वक्त हो चला है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। फिल्म का नाम है बैजू बावरा।

0: बोल थे शकील बदायूनी के और संगीत निर्देशन नौशाद का था।
1: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति फिल्म जाल का यह गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में।

अब सुनिए सिलसिला फिल्म का यह गीत किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की आवाज़ में, बोल हैं जावेद अख्तर के और संगीत निर्देशन शिव हरी का है।

कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाते हैं संगम फिल्म का यह गीत मुकेश की आवाज़ में, बोल हैं हसरत जयपुरी के और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का है।

0: मुकेश के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की। कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
3: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन

0: टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
0: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। ENTA and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the 3rd India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
0: 10 वर्षों में हमारा